नमस्कार, FM एक सौ 2.7 मेगाहर्ट्ज़ ते ई आकाशवाणी जलंधर केंद्र दा FM रेनबो चैनल है। अज शुक्रवार है, शक संवत 1948 दे आषाढ़ महीने दी 12 तारीख, तद अनुसार ईस्वी सन 2026 दे जुलाई महीने दी 3 तारीख है। इस वेले सवेर दे 5:58 हो रहे ने। साडी अज दी सभा हुण शुरू हुंदी है। FM रेनबो अपने सारे श्रोतियां दा निघा स्वागत करता है।

एफएम बैंड 102.7 मेगाहर्ट्ज़ थी आकाशवाणी जलंधर का रेनबो चैनल है। इस वेले साडी स्टूडियो की कड़ी मुताबक 6 बज गए ने ते लो हुण सुनो साडे इस मीटर ते प्रसारित होण वाले अज दे खास प्रोग्राम ते उन्हां दा प्रसारण समा। हुण तो थोड़ी देर बाद तुसी सरवण करोगे भगती रस्ता प्रोग्राम वंदना ठीक 6:05 ते। ਸੱਤ:02 ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਸਾਡੇ ਮਾਰਨਿੰਗ ਇਨਫੋਟੇਨਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਜਲੰਧਰ। ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਰਟਬੀਟ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੌਂਗਸ ਨਾਲ ਐਨਰਜੈਟਿਕ ਬਣਾਏਗਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਡੀ ਟੱਪਾ 8:40 ਤੇ। ਠੀਕ 9:02 ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਦਿਲ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬੀ।

गुड मॉर्निंग, मेरे साथ मिलके बोलो तो गुड मॉर्निंग। तो सिटी उनकी था 102.7 मेगाहर्ट्ज़ से, मैं तो हड़ी अपनी दोस्त, तो मैं हैक्टिव प्रोग्राम एंजॉय कर रही हूँ जी। गुड मॉर्निंग जलंधर। और मेरी गल ध्यान ना सुनो, सोचो जरा रात का समय है ते सड़क ते पूरा हनेरा है ते तुसी अपने घर वाल जा रहे हो, ते सब तो वड्डा डर की होवेगा? एक्सीडेंट दा होवेगा, कोई बंदा ना आ जाए या फिर कोई अनहोनी ना हो जाए, किसी भी तरीके दी घटना जेड़ी है वो घट सकती है। तो दोस्तों जलंधर दे जेड़े अर्बन स्टेट फेस वन दे वसनीक पिछले एक महीने तो इसे मुश्किल दा जेड़ा सामना कर रहे हैं। इलाके दियां स्ट्रीट लाइट्स बंद हो गई ने, जिस करके रात दे समय पूरा एरिया हनेरे विच डुबिया होया है। तो तुसी इस गल का ध्यान रखना है कि चौपाटी तो इलैक्ट्रिसिटी ऑफिस होंदे हुए डायमंड वेन्यू वाल जाने वाली जिहड़ी रोड है उत्थे काफ़ी ज़्यादा हनेरा होएगा रात नूं। तुसी जदों भी जाओगे उस एरिया तो तुसी सांभ के जाना है, संभल के जाना है, ताकि तुहाडे नाल कोई प्रॉब्लम जिहड़ी है वो ना हो जाए। तो जेकर तुहाडे एरिया दे विच भी लाइट बंद है या फिर तुसी कोई कंप्लेंट करना चाहते हो तो लोकल रेजिडेंट्स ने कई बार यह मुद्दा उठाया भी है, तो तुसी आप भी इस गल ते ध्यान दे सकते हो। तो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जलंधर हेल्पलाइन का जिहड़ा नंबर है 01812242411, तो टोल फ्री जिहड़ा नंबर है 1800180001720072। तो तुसी ईमेल वे ते भी कंप्लेंट कर सकते हो, complaints.mcj@gmail.com। तो पंजाब पब्लिक ग्रीवियंस पोर्टल जान या फिर तुसी एम सेवा एप्लीकेशन दे जरिए भी कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हो। तो एक गल तो मैं कहना भूल ही गई, रोशनी सिर्फ सड़क ही नहीं, बिल्कुल जी साड़ी जिहड़ी सुरक्षा है उन्हों भी रोशन करती है। सो समय जिहड़ा है लंघता जा रहा है, तो समस्या जिहड़ी है वधदी जा रही है। तो जेकर समस्या नज़र

दिल पे जख्म खाते हैं, जान से गुजरते हैं, दर्द सिर्फ इतना है कि हम लेट उठते हैं। दूसरी उनकी ताजी 102.7 मेगाहर्ट्ज़ से, ते 103.6 मेगाहर्ट्ज़ से। मैं तो हड्डी अपनी दोस्त महक, ते प्रोग्राम एंजॉय कर रहे हो। गुड मॉर्निंग जलंधर।

0: सुबह की ताजी हवा, पेड़ों की सरसराहट और चिड़ियों की मीठी आवाज। सोचिए अगर एक दिन ये सब खामोश हो जाए तो हमारी जिंदगी कैसी होगी। जंगल सिर्फ हमसे ऑक्सीजन, यानी कि जंगल सिर्फ हमें ऑक्सीजन नहीं देते बल्कि हमारे आने वाले कल की भी उम्मीद है। और इसी उम्मीद को और मजबूत बनाने के लिए देश भर में मनाया जा रहा है वन महोत्सव वीक। आपने ट्यून इन किया 102.7 मेगाहर्ट्ज़ पर, मैं आपकी दोस्त महक और प्रोग्राम एंजॉय कर रहे हो गुड मॉर्निंग जलंधर। आज हमारे साथ जुड़े हैं खास मेहमान जो हर दिन प्रकृति और जंगलों की सुरक्षा के लिए काम करते हैं, जिनका नाम है पुनीत खन्ना, जो काफी सारी संस्थाओं के साथ भी काम कर चुके हैं, हर साल लाखों पेड़ लगाते हैं और अब हमारे साथ कॉल पर जुड़ गए हैं। चलो करते हैं उनसे बात। हेलो।
1: हाँ जी, नमस्कार जी।
0: सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जलंधर में।
1: धन्यवाद जी।
0: सर जैसे कि आपको पता है कि वन महोत्सव चल रहा है और आज इस फेस्टिवल ऑफ ट्रीज का तीसरा दिन है, सो पुनीत जी सबसे पहला मेरे आपसे यही सवाल है कि हमारे जो दोस्त हैं, लिसनर्स हैं, वन महोत्सव वीक की शुरुआत किस सोच के साथ हुई और आज ये कितना रेलिवेंस है इसके बारे में बताइए।
1: जी

0: देखिए, वन महोत्सव की जो सोच है वो लगभग अगर हम देखें तो 70-80 साल पहले जब ये पहली बार मनाया गया, जो पहला सप्ताह होता है जुलाई का,
1: जी
0: इसे वन महोत्सव बनाया जाता है, ठीक
1: जी
0: है। तो अगर 1950 में डॉक्टर के एम मुंशी जी के द्वारा ये सोच के साथ इसको शुरू किया गया, तो जैसा नाम से ही पता लगता है कि ग्रीन बेल्ट को, वनों को, पेड़ों को बढ़ाने के लिए शुरू किया गया,
1: जी
0: ताकि लोग एक त्योहार की तरह मनाए, सेंसिटाइज हो। और इसमें ऐसा बिल्कुल उद्देश्य नहीं था कि सिर्फ 7 दिन ही पेड़ लगे, इन 7 दिनों में एक जन चेतना को बढ़ाया जाए, जन जागृति को बढ़ाया जाए, ताकि वर्ष भर लोग पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य कर सके।
1: जी और पुनीत सर, आपने वन महोत्सव की इम्पोर्टेंस बताई, लेकिन एक क्वेश्चन मेरे जहन में आ रहा है कि हम में से बहुत लोग पेड़ तो लगा देते हैं पर कुछ दिन बाद भूल जाते हैं, तो क्या सिर्फ पेड़ लगाना ही काफी है?
0: ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। देखिए, पेड़ जो छोटे पौधे होते हैं ना, वो भी बच्चों की तरह है। जैसे हमारे
1: जी
0: घर में कोई बच्चा जन्म लेता है, जैसे वो जन्म लेता है हम उसे ना तो किसी विद्यालय में भेज देते हैं, ना ही उसे किसी काम के लिए भेज देते हैं, धीरे धीरे उस बच्चे को पालते हैं, पोसते हैं, बड़ा करते हैं,
1: जी
0: ठीक है। 3 साल तक बच्चा जब विद्यालय जाने के लिए नहीं उतना बड़ा हो पाता, तो हर छोटी छोटी बात का माता पिता, घर वाले सभी ध्यान रखते हैं ना। इसी तरह से वो पौधे हैं, उनमें भी जान है। हम एक बात हमेशा कहते हैं कि देखो, सिंपल सी विज्ञान है इसमें, कि जब हम सांस लेते हैं हमें ऑक्सीजन चाहिए होती है,
1: हाँ
0: ऑक्सीजन
1: जी
0: हमें पौधों से मिलती है, ठीक है। और जब हम छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वो पौधे लेते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे जीवन के वो पूरक हैं, तो उनको भी कम से कम 2-3 साल तक, जब आप कोई पौधा लगाओ तो उसको 3 साल तक उसकी सेवा करो, उसको खाद पानी डालो, उसका ध्यान रखो, तभी वो कल को बड़ा पेड़ बन जाएगा। क्योंकि जो पौधे को पेड़ बनने के लिए कम से कम 8-10 साल का समय लगता ही लगता है।
1: जी और जब एक पौधा संभालने में कभी कभी इतना टाइम लगता है, और कई बार ऐसा होता है कि हम चूक भी जाते हैं, जैसे मैंने पहले बोला कि भूल जाते हैं कई लोग, तो आप लोग तो पूरे फॉरेस्ट और हजारों पेड़ों के, जैसे आपने पहले भी बताया था कि लाखों पेड़ आप लगाते हैं हर साल, तो इतने बड़े एरिया और इतने सारे पेड़ों की देखभाल करना कितना चैलेंजिंग होता है?
0: मैम देखिए, जैसे हम वर्ष में चाहे हजारों पेड़ लगाए चाहे लाखों लगाए,
1: जी
0: हम शुरू से इतने वर्षों से हमारी जो सोसाइटी है, संकल्प वेलफेयर सोसाइटी, और कई अभियानों में जैसे हरियाणा पंजाब अभियान है, पर्यावरण संरक्षण गतिविधियां, कई चीजों से जुड़े हुए हैं, कई संस्थाओं से, तो उसमें हम हमेशा ये ध्यान में रखते हैं कि पालक निश्चित करके पेड़ लगाया जाए। अब हमारे माध्यम से पेड़ लगे एक या लगे 1 लाख,
1: जी
0: पालक निश्चित तो करते हैं। पालक का अर्थ है कि उसको पालने पोसने वाला। अगर मान लो आप किसी विद्यालय के प्रमुख प्रधानाचार्य हो, आपने अपने विद्यालय में पेड़ लगवाने हैं, आप हमसे संपर्क करते हैं, हम जाते हैं, हमारे जो वॉलंटियर्स हैं वहाँ जाएंगे, विजिट करेंगे, देखेंगे यहाँ पानी की व्यवस्था है, बाउंड्री वॉल कवर्ड है, ट्री गार्ड की आवश्यकता तो नहीं है, तो ये सारी चीजें चेक करते हो, फिर हर साल जाके एक बार चेक भी करते हैं, फॉलोअप भी करते हैं, ताकि वहाँ पे पेड़ पौधे पड़ रहे हैं। हम सिर्फ इसलिए पेड़ नहीं लगवाते, एक पेड़ लगाया उसके साथ फोटो खींची और उसको भूल गए, हम इसलिए लगवाते हैं क्योंकि हमारे जीवन के लिए पेड़ आवश्यक है, और कहीं पर भी लगवाने से पहले पालक वहां पे निश्चित करते हैं।
1: जी तो जैसे सर आपने बोला कि जीवन के लिए पेड़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमें खाना मिलता है, ऑक्सीजन मिलती है, और आजकल गर्मी ने काफ़ी ज़्यादा अपना रिकॉर्ड ही तोड़ दिया है, पहले से ज़्यादा गर्मी महसूस हो रही है, और कई जगह पे तो जो व्हीकल्स हैं उनके टायर हो गए या फिर सड़क हो गई है वो भी बहुत ज़्यादा पिघल रही है, और लोगों का बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया, तो क्या बढ़ती गर्मी में सबसे बड़ा रीज़न ये है कि पेड़ों की जो कटाई है या पेड़ों की जो कमी हो रही है वो सीधा गर्मी पे या फिर एनवायरनमेंट पे इफेक्ट डाल रही है?
0: बिल्कुल, आपने ये बिल्कुल ठीक कहा, पेड़ों की कटाई इसमें बहुत बड़ा कारण है। ग्लोबल वार्मिंग के बारे में हम सभी कितने वर्षों से पढ़ रहे हैं,
1: जी
0: सुन रहे हैं, अभी पूरे भारत को तो छोड़ दीजिए, पूरा विश्व अभी इस आपदा को झेल रहा है। यूरोप में गर्मी, इस बार हीट वेव चली तो कितना वहां पे प्रलय मच गया सारा, ठीक है ना।
1: हाँ
0: तो हम ये कहते हैं कि पेड़ जो है, क्योंकि जो कार्बन एमिशन है उसको रोकने के लिए, उसको अब्सॉर्ब करने के लिए पेड़ बहुत बड़ा कारण है। तो अगर हम आज आप धूप में खड़े हो, टेम्परेचर अगर तापमान 45 डिग्री है, आप एक पेड़ के नीचे छाव में खड़े हो जाओगे तो आपको वहाँ पे कम से कम 5-7 डिग्री कम टेम्परेचर वहाँ पे मिलेगा, उससे आपको राहत मिल जाती है। तो ये एक प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, आप तो देख सकते हो चीज के लिए। और इसी तरह से हमें अगर पेड़ों की संख्या कम होती जाएगी तो धीरे धीरे हीट वेव और आएंगी, कल को सन बर्न्स होंगे, स्किन कैंसर होंगे, ये सब चीजें और बढ़ेंगी। तो इसीलिए इसे युद्ध स्तर पर

0: तो कहते हैं कि पेड़ को लगवाना चाहिए, उनको संभालना चाहिए।
1: बिल्कुल, और मुझे लगता है यही कारण है कि आज हम फैन एसी पे इतना ज़्यादा डिपेंड हो गए हैं, और पहले के टाइम पे जैसे पेड़ों के नीचे ही छाँव में गर्मियों में बैठा जाता था। तो काफ़ी कुछ चेंज हो गया है। और सर, अगर स्कूल का कोई स्टूडेंट है या हमारा कोई लिसनर है इन्वायरमेंट के लिए कुछ करना चाहे, तो वो अगर घर बैठे कौन सी सबसे छोटी से छोटी शुरुआत जो है वो कर सकता है?
0: देखिए, अगर घर बैठे कोई लिसनर है, कोई स्टूडेंट है, अगर शुरू करना चाहे, अपने घर पे ही शुरू करना चाहिए। अपने घर को हरित घर बनाने का प्रयास करना चाहिए। अब
1: जी
0: हरित घर क्या होता है? हरा भरा घर। अपने घर में पानी का संरक्षण करो, छोटा सा पंछी घर लगा लो, कम से कम 5 पौधे जरूर लगाओ। अगर ज्यादा जगह है, समय है, तो आप घर में आप छोटी सी किचन गार्डनिंग कर सकते हो। घर के कचरे की खाद बना लो, और उसके बाद जो 6-6 महीनों की सब्जियों के बीज हैं, वो 100 रुपए की एक किट मिल जाती है, तो सब्जियां घर से उगा के देखो, ऑर्गेनिक सब्जियां खाओ। तो इस तरह से बहुत कुछ कर सकते हैं। और सबसे आसान कार्य मैं बताता हूँ जो कर सकते हैं, अभी अभी के समय में जामुन और आम
1: जी
0: दोनों चीज, एक हम दोनों फल हम खा रहे हैं घरों, फल खाते हैं, उसके बाद उसमें क्या बचती है, उसकी गुठली बचती है।
1: गुठली
0: तो ये
1: बचती है।
0: गुठली, हाँ, तो ये गुठली चैलेंज हमने आगे चलाया था। अभी बीजारोपण से वृक्षारोपण देश भर में एक बहुत अच्छा अभियान चल रहा है। तो
1: जी
0: उसमें क्या करना है कि उस गुठली को आपने धोना है, सुखाना है, फिर उसको जर्मिनेट करके उसको एक दूध का लिफाफा जो घर में आता है उसको भी नहीं फेंकना, उसमें आपने उस बीज को लगा देना है। धीरे धीरे आप देखोगे जब बच्चा ये काम करेगा तो उसको दिखेगा, जो पहली बार वो अंकुरित होगा तो उस बच्चे में आपको वो मुस्कुराहट दिखेगी और उसका एक लगाव प्रकृति के साथ हो जाएगा। जब वो धीरे धीरे अंकुरित होगा तो पौधे का रूप लेना शुरू हो जाएगा। जब वो पौधा छोटा सा पौधा बनेगा तो वो बच्चे की और जुड़ाव होगा उससे। एक बार अगर आपने अपने परिवार में जो स्टूडेंट्स हैं, कोई भी कर सकता है वैसे, तो ये जो बीजों का संग्रहण करना शुरू कर दिया, उसके बाद उसको बीजारोपण से वृक्षारोपण की प्रक्रिया के साथ जोड़ दिया, और उसको ऐसा नहीं है कि आपने आज बीज लगाया और कल को जाके उस पेड़ पर लगा देना, ऐसा नहीं होता। जैसे जामुन का बीज है आपने
1: जी
0: लगाया, वो जामुन के पौधे को आप दूध के लिफाफे में 1 साल तक अपने घर में संग्रहण करें उसका, उसको थोड़ा थोड़ा आप पानी देते रहें। 1 वर्ष में तो आप देखोगे कि वो पौधा जो है 1 से 2 फीट का हो जाता है। तब वो पौधा जमीन पे लगने के लिए और फल को पेड़ बनने के लिए तैयार हो जाता है, फिर आप उसको वहां लगा सकते हैं। तो इसे हम घर घर नर्सरी भी कहते हैं, हरियावल नर्सरी भी कहते हैं, कि आपके घर में ऐसे आप 100 पौधे तो छोटी सी जगह में अपनी छत में तैयार कर सकते हैं। तो
1: यानी
0: बहुत सरल प्रक्रिया है जो हम अपने घर में कर सकते हैं। और जामुन का और आम का पौधा बड़ी आसानी से तैयार भी हो जाता है। तो कल को आपको ये लगे कि आपने कहाँ लगाने, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। बहुत सारी संस्थाएं काम करती हैं, लोग पौधे ढूंढते हैं, जगहें, तो जिनके पास जगह है उनको पौधे चाहिए होते हैं, जिनके पास पौधे हैं वो जगह ढूंढते हैं। तो हम हमेशा से कोशिश करते हैं कि कड़ी बने। हम ये काम अपने नाम के लिए नहीं करते, हम इसलिए करते हैं कि पर्यावरण का जमीनी स्तर पर संरक्षण हो सके।
1: बिल्कुल सर। और सर, एक मिथ भी है जो शायद क्लियर करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। लोग कहते हैं कि एक आदमी के एक पेड़ लगाने से क्या ही फर्क पड़ जाएगा, तो आप इस पर क्या कहना चाहोगे सर?
0: ये बिल्कुल आपने ठीक बात की। देखिए, फर्क पड़ता है। जब हम अपने आप से कोई काम शुरू करते हैं ना, शिकायतें तो सबको है,
1: जी
0: भगवान से भी शिकायत है। इंसान सुखी वो है जो हल पे काम करता है, ठीक है। अब लोग ये कहते हैं आपको मिलेंगे कि सरकार ये नहीं करती, ये वो नहीं करते, सिस्टम ये नहीं करता। तो सिस्टम क्या है? सिस्टम हम सभी हैं। हम कहते हैं कि हर व्यक्ति वर्ष में कम से कम एक पेड़ लगाए। अब हमारा देश इतना बड़ा देश है, 150 करोड़ के लगभग की आबादी है, तो सोचिए अगर एक पेड़ हर व्यक्ति लगाना शुरू कर जाए तो 150 करोड़ पेड़ तो इसी तरह से लग जाएंगे।
1: बिल्कुल,
0: और वो पलेंगे भी, क्योंकि आप हो सकता है आप अकेले हजारों पेड़ लगा के अकेले नहीं पाल सकते, पर आप जब 1000 लोग साथ में जोड़ लेते हैं तो 1000 पेड़ पड़ जाते हैं।
1: बिल्कुल, मतलब बूंद बूंद से है जो घड़ा वो भर
0: घड़ा
1: ही
0: भरेगा।
1: जाएगा।
0: बिल्कुल ठीक है,
1: और
0: बिल्कुल सही कहा आपने।
1: सर, जाते जाते गुड मॉर्निंग जलंधर प्रोग्राम के जो सारे लिसनर्स हैं जो आपको सुन रहे हैं, उन्हें आप क्या मैसेज देना चाहोगे कि वो आज ही पेड़ लगाएं या किसी पेड़ को आज बचाएं, ये फैसला आज वो लें, तो उन्हें क्या मैसेज आप देना चाहोगे?
0: देखिए, हम गुरुओं पीरों की धरती पंजाब में, तो
1: जी
0: हम सबने गुरबानी में ये सुना है, पवन गुरु पानी पिता माता धरत महत्व दिवस रात दुई दया खेले सकल जगत। भगवान कृष्ण ने गीता में बहुत बार वर्णन आया वृक्षों का, नवग्रह वाटिका हो, पंचवटी हो, इन सब का वर्णन है, ठीक है। इवन कुरान में भी अगर आप देखो तो वहां पर भी पौधों का पूरा पूरा कुरान वाटिका का वर्णन है, हर जगह वर्णन है। तो हमें इस सीजन में, अब बरसात कल हो गई है, शुरुआत

0: हो गया है पूरा, वन
1: जी
0: महोत्सव हम सभी बना रहे हैं, पर वन महोत्सव में कोशिश ये रहनी चाहिए कि हमें इस जो रेनी सीजन है जुलाई अगस्त सितंबर का, इस मौसम में अधिक से अधिक पेड़ पालक निश्चित करके लगाएं, क्योंकि तो जब इस मौसम में हम वृक्ष लगाएंगे, पौधे लगाएंगे, तो उनका बचने का, पलने का, बढ़ने का जो जितना भी है, एक बहुत अच्छी सी प्रक्रिया भी चलती है, और वो कल को अच्छे पेड़ भी बनेंगे और ग्रीन कवर भी बढ़ेगा, और ये जो गर्मी का प्रकोप है इतना बढ़ता जा रहा है, हम सभी चाहे तो मिलकर इसे ठीक कर सकते हैं, अकेले किसी से नहीं होगा, और इसे अभी युद्ध स्तर से करना पड़ेगा। कोई पंजाब में अगर हम बात करें तो आज ग्रीन कवर केवल 4% बचा है, तो हमें इसे 22% करना है, तो ये अपने आप नहीं होगा, हमें सरकार का, सिस्टम का सहयोग भी करना चाहिए, सभी संस्थाओं को साथ आना चाहिए, विद्यार्थियों को, बच्चों को, बुजुर्गों को, महिलाओं को, सबको साथ में आके काम करना चाहिए, और एक एक पेड़ लगाएं। जैसे पंजाब की आबादी आज 3 से 4 करोड़ है, तो कम से कम हम अपने पंजाब को हरियावल पंजाब बना सकते हैं इस तरह से, ये संकल्प को हम सभी मिलकर निभा सकते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा सर आपने, और मुझे लगता है कि पेड़ लगाने से ही आधे से ज्यादा जो प्रॉब्लम्स हैं वो वहीं खत्म हो जाती हैं।
0: बिल्कुल ठीक कहा आपने, इससे मृदा अपरदन भी रुकती है, बाढ़ें भी रुकेंगी, पेड़ एक बहुत बड़े इको साइकिल का एक अभिन्न अंग है
1: जी। और पुनीत खन्ना जी, गुड मॉर्निंग जलंधर प्रोग्राम में आपने इतनी ज़रूरी और दिलचस्प बातें हमारे साथ, हमारे लिसनर्स के साथ शेयर की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि इस बातचीत से हमारे जो लिसनर्स हैं उनके दिमागों में, उनके जहन में ये बात ज़रूर बैठी होगी कि पेड़ कितने ज़्यादा ज़रूरी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी, आपने कीमती समय दिया। तो दोस्तों ये थे पुनीत खन्ना जी, और क्योंकि हरियाली अगर होगी, देखो ज़िंदगी खुशहाल होगी, और अब इसी पॉजिटिविटी के साथ हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। आई होप पेड़ लगाने से हमारे दिल को भी सुकून मिलेगा और हमारी सोच, हमारा इन्वायरमेंट, सब कुछ खूबसूरत हो जाएगा। तो चलो खूबसूरत सा गीत सुनते हैं और मिलते हैं गीत के उस पार। प्रोग्राम एंजॉय कर रहे हो, गुड मॉर्निंग जलंधर।

जी हाँ दोस्तों, तुसी ट्यून कीता 102.7 मेगाहर्ट्ज़ ते। मैं तुहाडी अपनी दोस्त महक ते प्रोग्राम स्टार्ट हो गया है जी, दिल अपना पंजाबी। आओ पंजाब फिर पंजाब दे पंजाबीयत दीआं बातां पाउंदे आ। तुहाडी कलम साडा मंच, तुहाडी रचना ते साडी पहचान होएगी। अपनी लिखी हुई कोई भी कविता, शायरी अते गीत लिख के या बोल के तुसी गा के सानू भेज सकदे हो। दिल दीआं गल्लां दुनिया तक पहुँचा सकदे हो। देखो यारो, पंजाबी विरसे नाल जुड़ियां होईयां ना अपनिया मिठिया यादा भी तुसी साडे नाल सांझी कर सकते हो। लेकिन फिलहाल अज दा टॉपिक बहुत ही खास है, क्योंकि अज मैं तुहाडे तो पुछांगी कि रुखां दी इंपोर्टेंस की है, ते तुसी अपनी बचपन दीआं यादा भी साडे नाल सांझी कर सकते हो। भावें वह रुखां दे नाल होवे, भावें वह कोई सियाणी गल होवे, किसी तरीके का चुटकुला जिहड़ा है जिहड़ा तुहानू बहुत ज़्यादा पसंद है, वह भी तुसी साडे नाल सांझा कर सकते हो। तो होर मैं भी तुहाडे लई कुछ कहावतां कुछ गल्लां जरूर लैके आई हाँ। लेकिन हाँ, पहला सुनते हैं गीत, तो तुसी नंबर नोट डाउन कर लो, तुसी तैयारी कर लो फटाफट, अपने जिहड़ी रिकॉर्डिंग्स हैं जिहड़ियां ऑडियोज़ ने वह रिकॉर्ड कर लो, तो मेरे नाल छेती छेती सांझा करो। तो चलो जी, नंबर नोट डाउन कर लो, 9855101027।

भाई आ जाएंगे सावन में, भीगते भीगते ही आ जाएंगे। आकाशवाणी एफएम रेनबो ते प्रोग्राम चल रहे, थोड़ा अपना गीत बहार आरजे गरिमा दे नाल। वैसे सावन एना आया नहीं है हले, आई मीन हले तो आएगा। एंड फिलहाल की जी बारिश होंगी है, सरप्राइज दिंदी है ना सानू, जो भी इन्होंने दिनों में आ रही है वो बहुत सारी नमी अपने नाल लैके आती है। एंड बट एनी वे इस मौसम की गल क्यों करिए, बिकॉज कहते हैं कि ठंड ठंड के बारे जिनी गल करो उन्नी ज़्यादा फील होने लग जाती है, तो गर्मी के बारे जिनी गल करो वह उन्नी ज़्यादा सानू परेशान कर लग जाती है। सो आप परेशान नहीं होना, आप बहुत ही प्यारे प्यारे ठंडे ठंडे मिठे मिठे गाने जो ने इंजॉय करने ने थोड़े अपने प्रोग्राम गीत बहार के ऑनली ऑन एफ एम रेनबो विद मी आरजे गरिमा। सो फिलहाल तो इंजॉय करोगे एक गाना जो कि बहुत ही अमेजिंग है। स्टे ट्यून्ड।

उषा उत्थुपन रेखा भारद्वाज ना है बहुत ही अमेजिंग गाना तुम इंजॉय किया फ्रॉम फिल्म सात खून माफ प्रोग्राम चल रहा है गीत बहार विद मी आरजे गरिमा लियोन एफएम रेनबो सो बहुत ही अमेजिंग मैं फिल्म तो नहीं कहूंगी बिकॉज प्रियंका चोपड़ा की फिल्म सी सात खून माफ एंड बहुत ही लंबी फिल्म लगी क्योंकि जो फिल्म बोरिंग होती है वो लंबी लगती है पर जो अलग अलग करैक्टर्स मतलब निभाए प्रियंका चोपड़ा ने एक ही फिल्म दे विच ना वो काबिले तारीफ सी इस तो पहला भी एक फिल्म सी यू नो प्रियंका चोपड़ा दी जिदे विच उन्होंने बहुत सारिया मतलब अलग अलग अवतार अपने जिहड़े ग्रैप किए थे फिल्म दे विच एंड वो फिल्म सी व्हाट्स योर राशि फिलहाल जो आप इस फिल्म की गल करिए सात खून माफ की एक्चुअली जो जिस दिन फिल्म रिलीज हुई सी मतलब जिस दिन या उस दिन के आले दुआले की सीगा कि एक बहुत वड्डा मैच सीगा ओके सो बहुत वड्डा मैच सीगा इंडिया दा क्रिकेट मैच ओके सो की होया कि कुछ इंडियन क्रिकेट प्लेयर्स जिहड़े सीगे जो कि मैच नहीं खेल रहे सीगे सात खून माफ देखण दे लई गए उन्होंने फिल्म बहुत बोरिंग लग रही सी पर अचानक इंडियन क्रिकेट टीम ने क्रीज के उत्ते कुछ बहुत वधिया करना शुरू कर दिता तो सारी की सारी टीम दौड़ी मैच देखने लिए और मैच इंडिया जितया सीगा सो इंडिया दे जिहड़े लोग ने बच गए सी ए सात खून माफ फिल्म देखन तो पर मैच जित गए सी मैच की खुशी बहुत वक्री सीगी सो ए कुछ पुरानिया मैमरीज होंदिया ने गानिया दे नाल फिल्म दे नाल कनैक्टेड जो होईयां होंदिया ने बहुत यू नो फ्लैशबैक दे विच बहुत टाइम पहला वो याद रह जांदियां ने कि हाँ इस दिन इदा होया सी जो ए फिल्म रिलीज हुई सी तो सारी जिंदगी विच की चलता पिया सीगा जो ये गाने ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਪਏ ਸੀ ਆਪਾਂ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ ਸੋ ਯੈਸ ਗਾਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੇਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਫਿਰ ਰੇਨਬੋ 'ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੀਤ ਬਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲਾ ਗਾਣਾ ਆਪਾਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਰਜੇ ਗਰੀਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਟੇ ਟਿਊਨਡ

करीना कपूर एंड अभिषेक बच्चन की डेब्यू फिल्म रिफ्यूजी तो एक गाना इंजॉय किया आकाशवाणी एफ एम रेनबो से प्रोग्राम चल रहा गीत बहार एंड आर जे गरिमा है तुहाड़े नाल सो यस गीत बहार प्रोग्राम दे विच नेक्स्ट गाना आप प्ले करिए उस तो पहला रिफ्यूजी के बारे थोड़ी जी गल कर लें एक्चुअली करीना कपूर तो अभिषेक बच्चन की जी डेब्यू फिल्म है रिफ्यूजी इस फिल्म तो पहला ना करीना कपूर ऑलरेडी कहो ना प्यार है फिल्म साइन कर बैठी सी कर चुकी सी तो काफ़ी सारे सीन्स जोड़े ने भी शूट कर लिते थे कहो ना प्यार फिल्म के सो कहो ना प्यार है ऋतिक रोशन की फिल्म से बहुत व्डे पैमाने पर लॉन्च किया जा रहा है अपने मुंडे राकेश रोशन द्वारा सो इस करके करीना कपूर लग्या भी डायरेक्टर का मुंडा है इनू ही सही लाइमलाइट मिलेगी मैं कितने जावांगी तो दूजे तरफ जो यू नो एक्टर का मुंडा यानी कि अमिताभ बच्चन के बेटे अभिषेक बच्चन जो है उन्हें नाल फिल्म करने करीना कपूर इस करके फायदा लग गया कि क्योंकि उन्हें फादर थोड़ी ना डायरैक्ट करते पे ने आई मीन अमिताभ बच्चन आप थोड़ी ना डायरैक्ट करते पे ने फिल्म सो बस इस करके स्विच कर लिया करीना कपूर ने एंड रिफ्यूजी फिल्म तो डेब्यू किया एंड आई मतलब बहुत सारे जो लोग ने यही कहते हैं कि बहुत ही राइट डिसीजन करीना कपूर का उस टाइम बॉलीवुड में कदम रखना अभिषेक बच्चन के नाल फ्रॉम फिल्म रिफ्यूजी बिकॉज जेकर वह कहो ना प्यार है फिल्म कर लेंदी तो ऑफकोर्स लाइमलाइट तो नहीं मिलती एंड अमीशा पटेल वर्गी मतलब जिनी को अमीशा पटेल लाइमलाइट मिली इन द मूवी एंड आफ्टर द मूवी बस उन्नी को ही मिलती सो चलो जो भी है वधिया होया एंड फिलहाल अमीशा पटेल भी बहुत ही अपनी उस मासूमियत दे करके हुण तक जानी जाती है सो इस करके कहो ना प्यार है फिल्म आप जो याद ही किया है तो वह ही गाना आप सुन लीए इन प्रोग्राम गीत बहार 102.7 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी एफ एम रेनबो ते विद मी आर जे गरिमा स्टे ट्यून्ड

well, जी जे यही सवाल क्वेश्चन पेपर दे आ जाए कि हो जाता है कैसे प्यार, इन्हें सॉल्व करके दसो, तब मामला काफ़ी संजीदा हो जाएगा, बिकॉज़ कोई इस सवाल का आंसर दे नहीं सकता। हाँ, शायरा ने बहुत कुछ किया है, पर फिर भी एक कॉमन जो आंसर है कोई भी नहीं आज तक दे सकिया, मतलब नहीं कोई सेम पेज पर आके। हर एक दा अपना अपना एक कह सकते हैं कि थॉट है, अपना अपनी एक्सप्लेनेशन है कि क्यों हो जाता है, बट एक्चुअली जो ये रहस्य है ना, कोई डिकोड नहीं कर पाया आज तक। एक्चुअली आकाशवाणी एफ एम रेनबो ते प्रोग्राम चल रहे, थोड़ा अपना गीत बहार आरजे गरिमा दे नाल, एक गाना तुसीं इंजॉय कीता फ्रॉम फिल्म यलगार 1992 दी हिंदी क्राइम एक्शन मूवी, एंड फिरोज खान ने इस फिल्म नूं डायरेक्ट कीता सीगा। सो काफ़ी मतलब मल्टी स्टारर फिल्म सीगी, एंड मल्टी स्टार फिल्म के मनीषा कोयराला भी सी, एंड ऑफकोर्स संजय दत्त भी सी, एंड फिरोज खान आप भी सी। सो बेसिकली बहुत बड़े बड़े स्टार्स ने रिजेक्ट किया इस फिल्म में, शाहरुख खान ने, आमिर खान ने, सलमान खान ने, एंड बाद विक्की अरोड़ा दे हाथ रोल आया इस फिल्म के। सो काफ़ी अच्छी है मल्टी स्टार फिल्म सी। सो बेसिकली इस फिल्म के बारे आप ज़्यादा गल नहीं करते, बिकॉज गीत बहार प्रोग्राम के रह गए कुछ 9 मिनट, मैं कि थोड़े गीत होर प्ले कर लीए, क्योंकि गीतों के नाल ही तो सजदा है ना प्रोग्राम। सो आकाशवाणी एफ एम रेनबो ते प्रोग्राम सुनते रहो, एंड ऑफकोर्स आरजे गरिमा के नाल बने रहो। अलका याग्निक एंड उदित नारायण जी की आवाज़ दे विच दिस अमेजिंग सॉन्ग।

102.7 megahertz akashwani fm rainbow teji geet bahar program de vich gaana enjoy kita tusi rj garima tode naal hai e gaana bahut hi amazing I mean bahut hi o gaane jehde ne and movies matlab is film de vich Pretty Zinta and Mahima Chaudhary Arjun Rampal sige and Rekha V sige and this multi starrer film jo hai na मतलब बहुत ही अमेजिंग एंड उस टाइम दे गाने दिल है तुम्हारा इस फिल्म का नाम सीगा मैंने याद नहीं आ रहा सी यस दिल है तुम्हारा उस द मूवी सो या व्हाट अ मूवी इट वाज एंड प्रीटी ज़िंटा द ब्यूटी ओ माय गॉड वो तो हूं तक मेंटेन्ड है जी एंड सच अ ब्यूटीफुल एक्ट्रेस शी इज प्रीटी ज़िंटा चलो जी प्रोग्राम का आखिरी गाना जरा आप इंजॉय करिए उस तो बाद फिर नेक्स्ट प्रोग्राम्स का कारवा भी अगे वधाना है आरजे गरिमा नाल बने रहो ऑन द एफएम रेनबो फिलहाल गीत बहार प्रोग्राम दे विच चेन्नई

0: 102.7 मेगाहर्ट्ज़ का आकाशवाणी एफएम रेनबो तेजी प्रोग्राम चल रहे थोड़ा अपना पंजाबी तड़का। हेलो
1: हेलो सत श्री अकाल मैम।
0: सत श्री अकाल जी, कौन बोल रहे हो?
1: ए मैम सोनू बोल रहे हैं जी, पिंड कुका तलवंडी डिस्ट्रिक्ट कपूरथला तों जी।
0: कपूरथले तो सोनू जी, की हाल ने तुहाडे?
1: मैडम हाल चाल बहुत अच्छे मैम, तुसी सुनाओ, तुसी किवें हो मैम?
0: आपां वधिया एकदम, चढ़दी कला, गर्मी बहुत है फिर भी चढ़दी कला।
1: हां जी हां जी मैडम, साडे इत्थे बदल हो जांदा कदी कदी ते कदी गर्मी हो जांदी, इदां चल रहा 10 दिन तों।
0: अरे वाह क्या बात है, बहुत ही इंपोर्टेंट शॉप है जिंदगी विच, मोबाइल कितना जरूरी है सबनु पता है।
1: मैं 2-3 साल दे विच कोई 300-400 एफएम सेल कर चुका मैम।
0: की कर चुके हो? क्या बात है, मतलब एक हुंदे ने कुछ लोग कार विच सुनदे ने, कुछ लोग स्पेशली रसोई विच अपने काम ते रेडियो लगा के जो सुनदे ने ना, ओ हुंदे ने साडे बहुत ही ज्यादा अजीज।

0: हाँ भाई सजना इतना खूबसूरत होवे ता तकिया ता बिल्कुल नजर नहीं पार दी। आकाशवाणी एफएम रेनबो ते प्रोग्राम चल रहा जी तो हाड़ा अपना पंजाबी तड़का विद मी आरजे गरिमा एंड सारे नेक्स्ट कॉलर दे नाल आपां गलबात कर दिया। हेलो
1: नमस्कार जी, राकेश
0: नमस्कार जी कौन बोल रहे हो?
1: कुमार बिली चट्टे वाली तो जी। जी
0: शीश कुमार जी।
1: राकेश कुमार जी चट्टे
0: अच्छा राकेश जी कितों
1: वाली पिंड चट्टे वाली तो जी।
0: पिंड गेपे वाली।
1: हाँ जी मैम।
0: अच्छा ठीक है जी एंड होर की कर जो तुसी पहली बार कॉल लगाई है?
1: मैडम जी तभी नेवा लाई तो वैसे कभी कभी लगते होते मैं कहा लोगों की जानकारी भी लेनी चाहिए सलाह कितना दे तुसी।
0: अच्छा, ठीक है
1: हाँ जी
0: ऑल राइट।
1: हाँ जी
0: केड़ा गाना सुनोगे तुसी?
1: बब्बू मान का कोई भी वधिया लगदा सुनाउण लई।
0: ठीक है राकेश जी, बब्बू मान जी का गाना पहुंचे थोड़े तक, शुक्रिया कॉल करने लई।
1: ओके
0: सो जी 102.7 मेगा हर्ट्ज़ आकाशवाणी एफएम रेनबो ते गाना फिलहाल तुसी इंजॉय करो एंड उस तो बाद फिर पंजाबी तड़का प्रोग्राम विच नेक्स्ट कॉलेज दे नाल आपां गल्लबात करांगे। स्टे ट्यून्ड।

0: 102.7 MHz आकाशवाणी FM रेनबो ते प्रोग्राम चल रहा पंजाबी तड़का। हेलो
1: हेलो सत श्री अकाल मैडम।
0: सत श्री अकाल जी, कौन बोल रहे हो?
1: अर्जन सिंह, पिंड माले वाला जिला फिरोजपुर।
0: अर्जन जी कितों के क्या तुसी?
1: पिंड माले वाला जिला फिरोजपुर।
0: फिरोजपुर दे माले वाला जिला, ओके।
1: हाँ जी, हाँ जी।
0: अर्जन जी बहुत ज्यादा चिरा बाद कॉल लगाया, मेरे शो च पहली बारी कॉल लगा। अर्जन जी का फेवरेट गाना तुसी सुनो, बाकी इदा है कि इस गाने तो बाद एक छोटा जा कमर्शियल ब्रेक में लवांगी, तद तक तुसी कॉल लगाना बिल्कुल ना छड़ना, बिकॉज यू नेवर नो कि तुहाड़ी कॉल लग जाए, तुसी प्रोग्राम दे विच अपनी हाजरी भी लगाओ ते अपना फेवरेट गाना पंजाबी वाला भी सुनो। पंजाबी तड़का प्रोग्राम दे विच ए वाला गाना फिलहाल।

102.7 MHz ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ FM ਰੇਨਬੋ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਤੜਕਾ। ਹੈਲੋ, वो परवाह नहीं करते आने वाले तूफानों की। क्या बात है जी, कौन बोल रहे हो? जेएस मुल्तानी साहब, की हाल चाल? थोड़ा आवाज थोड़ी बहुत अनक्लियर आ रही है, पर फिर भी मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ। केड़ा गाना सुनोगे मुल्तानी जी? हैप्पी राय कोटी का गाना सुनने। ओके, ठीक है जी, थोड़ी आवाज़ बहुत डिम आ रही है, सो इस करके मैं फटाफट बगैर ज़्यादा गलबात किए गाना ही प्ले कर सकती हूँ उन्हें। तो शुक्रिया कॉल करने के लिए। शुक्रिया थोड़ा बहुत। ओके, सो जी मुल्तानी साहब, तो आप गाना लगा दिए, बिकॉज बहुत स्लो आवाज़, मतलब बहुत घट वॉल्यूम से आवाज़ आ रही सी, सो इट्स इंपॉर्टेंट कि आप उन्होंने फेवरेट जो सिंगर ने जो उन्होंने रिक्वेस्ट किया गाना हैप्पी राय कोटी जी का, कोई भी गाना किया उन्होंने कि सुना दो, सो आप गल बना लेनी है इस गाने के नाल। स्टे ट्यून टू FM रेनबो, प्रोग्राम पंजाबी तड़का चल रहा जी, आर जे गरिमा थोड़े नाल।

क्या गाना है ना ये गुली मता, वो तो क्या ही गाना है। आई जस्ट लव दिस सॉन्ग बाय श्रेया घोषाल एंड साद लमजरेड, एंड बहुत ही ब्यूटीफुल कोलैबोरेशन है, एंड जस्ट लव दिस गाना। फिलहाल होम स्वीट होम विच तुसी सुन रहे हो बहुत चंगी गल्ला मेरी यानी आरजे गरिमा वालों, एंड गाने भी नाल नाल सुन रहे हो। सो होम स्वीट होम विच फिलहाल आप गल करते पे सी लाइक कमर के बारे कि किस तरीके नाल आप अपनी कमर स्ट्रोंग रखिए, आप बिल्कुल अपने कमर में ज़्यादा यू नो तकल्लुफ ना दईए। सो जे तुसी चाहते हो कि सारी जी कमर है उस साल तक साथ दे, साडा तो अज ही छोटिया छोटिया आदतों अपनाओ। एक तो थोड़े थोड़े ब्रेक्स लेना जो तुम्हारा सिटिंग जॉब है सिटिंग वर्क है, थोड़े थोड़े ब्रेक्स लेना अपनी स्ट्रैचिंग करना। दूसरा जो तुम कुर्सी पर बैठे होंगे हो तो अपनी जी पिठ है वह सीधी रखो, जो पैर मतलब दोवें जो पैर ने जमीन पर टिकाओ, एंड लैपटॉप को अखा के लैवल पर रखो, नहीं तो सारी जी गर्दन है वह भी नाराज़ हो जाएगी तो कमर भी नाराज़ हो जाएगी। एंड रोज़ आप हल्की फुल्की वॉक करिए, इट्स वेरी इंपोर्टेंट। खाने हूँ सब तो इंपोर्टेंट चीज़ खाने में दालां पनीर सोया, इफ यू आर एगेटेरियन तो अंडा भी तुसी यूज़ कर सकते हो। नट्स यस ए बहुत ज़्यादा इना बहुत ही भरपूर मात्रा में प्रोटीन होंदा है, यह भोजन भी जरूर शामिल करो। मांसपेशियां मजबूत इस तरीके बनाया जा सकता है तो कमर से भी घट जरा प्रैशर है वह बनेगा। एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली योगा के कुछ पॉजेज इदा के होंगे ने, देखो अद्धा घंटा तुसी वॉक करो पर इस दे नाल नाल सिर्फ दो पॉजेज प्लैंक्स एंड दूसरा जो ब्रिज पॉज है वो जरूर करो। कोबरा पॉज हो गया, ब्रिज पॉज हो गया, प्लैंक, एक कोर एक्सरसाइज जिहड़ियां ने सारी कमर नू बहुत फायदा दिंदियां ने। एंड प्रॉपर सानू पता होना चाहिए कि वो आसन एक्चुअली करना किदा है, सो दैट सारी कमर देखो इन रिलैक्स भी होंगी है, स्ट्रोंग भी बनती है, एंड कमर जो है साला साल साडा साथ देगी, ता ही तो आप कॉन्फिडेंट रहांगे एंड बिल्कुल हैल्दी रहांगे। मोस्ट इंपोर्टेंटली एक गल जरूर याद रखो, जी कमर का दर्द दो हफ्तों तो वध तुहाडा कदी भी रह रहा है ज़्यादा सिटिंग जॉब करके या किसी भी रीज़न दे लई, तां फिर ऑफकोर्स बहुत जरूरी है कि अपने डॉक्टर आप नहीं बनना, जस्ट गो टू द डॉक्टर, असली डॉक्टर नू तुसी विखाओ, क्योंकि गूगल डॉक्टर या व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी तो कुछ नहीं समझ आता। यू शुड रियली विजिट अ डॉक्टर एंड तंदुरुस्त रहो, एक्टिव रहो, तो मुस्कुराते रहो, यही चाहती है थोड़ी अपनी आरजे गरिमा। फिलहाल प्रोग्राम होम स्वीट होम के हेल्थ तो साड़ी कमर के बारे इन्ना ही, एंड आई रियली विश कि हमेशा ही साड़ी जी कमर है साड़ी जी स्पाइन है प्रॉपर बैक है हमेशा ही स्ट्रोंग रहे, एंड बिकॉज इनिया सारिया जिम्मेदारियां ने साडे उत्ते साडे नाजुक कंध्या उत्ते। सो कंध्या ने तो जिम्मेदारियां चुकनिया ने, पर आप अपनी कमर नू अपनी बैक नू ज़्यादा तकल्लुफ क्यों दईए, अपना ध्यान रख्या करो एंड गाने जो ने सुनते रहा करो। हूँ फिलहाल अगला गाना जो है मैं प्ले कर दी हाँ प्रोग्राम होम स्वीट होम के सुनते रहो आकाशवाणी FM रेनबो।

मनी इज हनी इन मैनी वेज. मतलब कहना कि वो कॉन्फिडेंस दिंदा है ना जो तो अपना फाइनेंशियली किसी उत्ते डिपेंडेंट ना होइए. सो बेसिकली अज तेरे नाल गल करांगी अबाउट मैं मेहंदी. यस, हमारे हाथों की मेहंदी कमाई दा मौका है जी, मौका. लाइक मैं यूट्यूब पे देखती पी सी, एक लेडी जो है उन्हें अपना एक चैनल बनाया हुआ है एंड इन सोहनी सोहनी मेहंदी के डिजाइन जो है वो बना के अपनी प्रॉपर रील्स पाती है, शॉर्ट वीडियोज़ पाती है एंड इन्नी ज़्यादा फॉलोअर्स ने एंड इन्नी ज़्यादा डिमांड है. उनकी बुकिंग्स जुड़िया ने वो 4-4 महीने पहला बुकिंग्स करानी पैंदियां ने मेहंदी लगवाउण दे लई. सो इन्नी फेमस जो मेहंदी आर्टिस्ट है. सो आई वॉज थिंकिंग कि क्यों ना तुहानू इंस्पायर किया जाए कि जेकर किसी नूं मेहंदी लगाउण दा शौक हैगा है ना, तां फिर क्यों ना इस चीज़ नूं अपनी पछाण बना ली जाए. हत्थां दी मेहंदी सिर्फ रंग नहीं छड़दी, पछाण भी छड़ जाती है. जेकर मेहंदी लगाना पसंद है तां क्यों ना इस हुनर नूं कमाई दे विच बदलिया जाए. अजकल सिर्फ विआह शादी ते नहीं, तीज, करवा चौथ, ईद, बेबी शावर, कॉलेज फेस्ट, किटी पार्टीज तक दे विच, यस किटी पार्टीज तक दे विच मेहंदी आर्टिस्ट जो है उहदी खूब डिमांड रहिंदी है. हुण स्टार्ट कित्ता करिए. ऑबवियसली पहले अलग अलग डिजाइन रोज़ प्रैक्टिस करनी है अपने फ्रेंड्स के हत्थां ते, रिश्तेदारां के हत्थां ते, फ्री दे लगवाओ. पर वीडियो भी बनवाओ, वीडियो बनाओ, दी फोटोग्राफ्स क्लिक करो, प्रॉपर वीडियोस वगैरह, अपना एक छोटा सा पोर्टफोलियो बनाओ, फिर उन्हें व्हाट्सएप स्टेटस ते, रोज सोशल मीडिया ते अपना काम दिखाना शुरू करो. एंड कमाई की गल करिए तो शुरुआत दे विच एक हाथ दे उत्ते 300 to 500 rupees मिल जाते हैं. एंड बाकी विआह शादियों के तो बहुत वधिया, विआह शादियों के सीजन दे विच, ईवन फेस्टिवल्स के सीजन दे विच बहुत वधिया कमाई हो जाती है. जिदा जिदा थोड़ा नाम वधेगा तुहाडी फीस वधी चली जाएगी. तो याद रखो हुनर कदी छोटा नहीं हुंदा, बस उन्हूं मौका मिलना चाहिदा है. हो सकदा है कि आज जे तुसी किसी दे हाथ ते मेहंदी लगा रहे हो ना, ते कल नूं ओही लोग जो दे हाथ ते मेहंदी लगा रहे हो ओही फ्यूचर दे विच तुहाडी बुकिंग दे लई तरसे कि बई प्लीज़ बुकिंग दे दे, 4 महीने पहला बुकिंग करवाए कि बई मैनू मेहंदी लगानी है. सो यस, एक गाने तो बाद ना फिर मिलांगी मैं. मेहंदी दे इस शौक नूं किस तरीके नाल तुसी हुनर विच तब्दील करके एक बहुत बहुत वधिया अर्निंग जिहड़ी है वह कर सकते हो, इस प्रोसैस दे बारे गल आपां हले करांगे इस गाने तो बाद. स्टे ट्यून टू FM रेनबो.

सच में अमित कुमार लेजेंडरी किशोर कुमार के बेटे ने, इतने अच्छे अमित कुमार जी ने, द सीनियर सिंगर, अमेजिंग सिंगर, उन्होंने इतने सारे गाने हमें दिए ना कि हमें बड़े ही अच्छे लगते हैं सारे के सारे गाने। आकाशवाणी FM रेनबो ते प्रोग्राम चल रहा है तुहाडा अपना मिड डे मैलरीज विद मी RJ गरिमा। सो जी नेक्स्ट गाना जो है वो आप इंजॉय कर दिया, उस तो बाद फिर थोड़े नाल गल करांगे, कुछ खास फैक्ट्स जो ने उन्होंने बारे शेयर करांगे अमित कुमार जी के बारे जिन्हों का आप हैप्पी वाला बर्थडे। सो फिलहाल मूविंग ऑन टू दिस ट्रैक, ये आप फिलहाल सुन लें। स्टे ट्यून्ड टू FM रेनबो प्रोग्राम मिड डे मैलरीज़ बने रहो।

सो किना प्यारा गाना एंजॉय किया था तुसी आकाशवाणी एफएम रेनबो ते प्रोग्राम चल रहा है तो हाडा अपना मिड डे मैरिज। सो फिर से बात तो छिड़े गई ना, जब ऐसे प्यारे प्यारे जो गाने हैं हमारे दिल के तार छिड़ जाएंगे, ऐसे दिलकश जो गाने हैं हमें किसी और ही दुनिया में ले जाएंगे, तो फिर उदी उस गाने दी या उस फिल्म दी गल तो मैं छेड़ांगी ना। आफ्टरऑल मैं आरजे गरिमा वहाँ थोड़े अपने एफएम रेनबो ते। सो बहुत सारे प्यारे प्यारे गाने जरिए वो तो सजाती हाँ, पर नाल नाल उन्हें गाने के बारे गलबात ही करना होंगे। फिलहाल अज जिमें कि अमित कुमार द हैप्पी वाला बर्थडे है, फेमस इंडियन सिंगर एंड एक्टर एंड he is oldest son of a legendary bollywood singer kishore kumar de jo sab to bade bete ne so amit kumar jo ne unhone as a child actor debut kita si ga waise singing to pehla apne hi father de film de vich dur gagan ki chhaon mein ode vich child actor as a child actor unhone kaam kita so singing de vich unhone debut kita 11 saal di age de vich bahut hi famous song si ga aa chal ke tujhe theek hai so बहुत ही प्यारा गाना सीगा उदे विच अपना डेब्यू किया सीगा। सो 170 हिंदी गाने जिहड़े ने उन्होंने रिकॉर्ड किए विद

So, कितना प्यारा गाना है और ऐसे गाने सुनकर तो जमीन भी साथ में गाएगी और आसमां भी गाएगा और हम सब भी गा सकते हैं अपने मन में, और अगर आवाज़ अच्छी है तो गुनगुना सकते हैं। आकाशवाणी एफएम रेनबो पे प्रोग्राम चल रहा है थोड़ा अपना मिड डे मेलोडीज विद मी आरजे गरिमा। सो जी अमित कुमार दे इस गाने तो बाद नेक्स्ट जो गाना है उन्होंने फादर साहब किशोर कुमार दा मैं सुन लेने आए अलॉन्ग विद आशा भोसले जी, बिकॉज अंकल रॉबर्ट ने क्या बोला, मतलब अंकल रॉबर्ट क्या बोले ये जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है अभी अभी इन प्रोग्राम मिड डे मेलोडीज विद मी आरजे गरिमा ऑन एफएम रेनबो।

0: छोड़ो तुम क्या शादी करेगा, खाली टंडी आहे भरेगा, शादी तो वेल हमने किया था और बॉम्बे जानता
1: कैसे?
0: हम तो देखो दुनिया से लड़के, छोकरी का हाथ पकड़ के चर्च को सीधा लेकर पहुंचा और बॉम्बे जानता साला तुम तो खाली पीली साला तुम तो

सो फाइनली इस गाने ने डिकोड कर लिया, हमने डिकोड कर लिया कि अंकल रॉबर्ट क्या बोले कि हमको भी शादी करना मांगता। आकाशवाणी एफ एम रेनबो ते प्रोग्राम चल रहा जी तुहाड़ा अपना मिड डे मैरिज आरजे गरिमा दे नाल। फिलहाल ना मिड डे मैरिज दे विच टाइम हो गया है प्रादेशिक खबरां तां, हुण तो कुछ ही पलां तक तुसीं प्रादेशिक खबरां सुनोगे, उस बाद मिड डे मैरिज प्रोग्राम दा कारवां जारी रखेगी तुहाड़ी अपनी आरजे गरिमा। एंड यू स्टे ट्यून्ड टू एफ एम रेनबो।

0: क्या इमेजिनेशन है ना ये दक्कन की हसीना को लेकर इस गाने में, और लिखने वाले ने क्या खूब लिखा यार, दक्कन की हसीना। आकाशवाणी एफएम रेनबो दे प्रोग्राम चल रहा मिड डे मेलोडीज विद मी आरजे गरिमा। पर टाइम हो चुका है थोड़ा तो अलविदा लैंड दा, एंड लास्ट सॉन्ग अमित कुमार जी दी आवाज़ दे विच मैं प्ले करके जाऊँगी, बिकॉज आज उन्होंने हैप्पी वाला बर्थडे है। सो इस करके सो मुबारक दिन है, इस करके मुबारक सॉन्ग प्ले करके जा रही हूँ। सो दिस साइड आरजे गरिमा साइनिंग ऑफ, मिलेंगी तानू कल ऐसे टाइम, एंड फिलहाल आरजे Nish is there to take over the studio right now. So, apna rakho bahut sara khyal, apne aap ko karo bahut sara pyar, hasde vasde raho, te sunte raho FM Rainbow.
1: Kam se kam mere paniyo, mere boxing ko to bakhsh de.

हाँ जी हाँ जी हाँ जी FM रेनबो की हाल ने प्यारे सरोतेओ सत श्री अकाल प्यारे सरोतेओ। कहते ना जो तो पैर दिना धुप तो थोड़ी ढलती है ना, दिल किसी अपने की याद च धड़कता है। बस उस पलना 102.7 FM रेनबो ते सजदी है ना शायर दी महफिल। वेल देखो जी, वो ठिकाना है जिथे दर्द भी गजल बन जाता है, इतने खुशी भी नज़म बन के बुलों ते तर जाती है। इतने कागज़ कलम की लोड़ नहीं, बस दिल खोलो, क्योंकि अज हर दिल शायर है। इदा ही गल नहीं है कि कलम तो कागज़ नहीं खोलने, अपन बहुत लोड़ आ। लोड़ सब तो ज़्यादा है प्यार जुदाई यारी तनहाई हर जज्बे असी लफ्जा दी ना पोशाक पवा के थोड़े रूबरू करते हैं। दोस्तों, शायरी का रंग पता की है, दोपहर के 2 बजे ने दिल ने फिर आवाज़ दिती है, कहता है चल अज शायर बनीए, दर्द नू भी साज दिती है। लफ्ज मुक जान ता अखा पढ़ लवी, असी ता हर खामोशी च भी बोलते हाँ, दिल अज शायर है, सुनन वालेओ असी ता धड़कना नू तोलदे हाँ। इश्क जरूरी नहीं मुकम्मल होवे, इश्क जरूरी नहीं मुकम्मल होवे, अधूरा भी खूबसूरत हुंदा है। जिवें गालिब दी गजल अधूरी पर फिर भी हर दिल नूं छोंदा है। थोड़ी आवाज जिहड़ी है ना दोस्तों, और जिहड़ी लिखदे हैं ना तुसीं, उहदे तरीके नाल ही पहुँच जांदी। बस यह है कि थोड़ा आरज रमनीश उसनूं पढ़ूगा, ते तुसीं भी अपनी ना लिखी गजल नज़म शेयर जां कोई दिल जां टुट्टा सानूं भेज सकदे हो दोस्तों। असी उसनूं पढ़ांगे ते थोड़े नाम नाल थोड़ा नाम भी लवांगे। ते कई बार दिल दी ना गल कहन लई बस एक शेर काफ़ी हुंदा है। तू सुन जान सुनी कर, तू सुन जान सुनी कर, मेरा काम सी तेनूं सुनाउणा। बस यही है बस दोस्तों। ते तुसी अपनी जिहड़ी शायरी है, अपनी गज़ल नज़म कुछ भी लिखदे हो दोस्तों, तुसी इट्स वट्सएप नंबर ते सेंड कर दिओ। व्हाट्सएप नंबर है 9855101027। पंजाबी च भी सुन लो जी 9855101027। बस तुसी हुन दोस्तों तुहाडा हुन काम शुरू हो चुका है, ते मेरा भी काम शुरू हो चुका है वैसे दोस्तों। ते बस मैं उड़ीक कर रहा हाँ थोड़ियाँ शायरी दियाँ दोस्तों। ते उस तो पहला एक वधिया जी पेशकारी जगजीत सिंह जी की आवाज़ दे विच पेश कर दें दोस्तों।

क्याले सरोतियो की हाले वेल वेलकम बैक टू द शो ते बहुत बहुत स्वागत है साडा दोस्तों ते साडे सरोतियां ने बहुत सारियां फरमाइशां तां नहीं चलो पर सानू जिहड़ियां अपनियां

मौसम सुहाना है, आता नहीं है हमें इकरार करना, ना जाने कैसे सीख गए प्यार करना। रुकते ना थे दो पल कभी किसी के लिए, रुकते ना थे दो पल कभी किसी के लिए, न जाने कैसे सीख गए इंतजार करना। ओह क्या बात है जी। इसानू भेजा है किरण नरूला ग्रीन पार्क कपूरथला जो रवनीत सर जी ने फुल भेजे जा रहे ने, क्या बात है जी। उस तो साडे अलग सरोते एक नवे सरोते राहां ते पलकां दूर हो सातों, राहां ते पलकां दूर हो सातों, चलदियां साहां किते दूर हो सातों, दिला हो की जो नूर दूर हो सातों, दिला हंजू अंदर ओह मोहब्बत हो सातों। गोपी रेरू ने लिखा, तो एक होर भेजी इन्होंने, तेरे नाल मोहब्बत अजीब होई है, उठना बैना मेरे तो नसीब होई है, जद भी तक्का तेनू तो कोई चीज अजीज होई है, हुण हाल मैं अपना वेखदा ते तू मेरी तकदीर होई है। बा कमाल दोस्तों, बा कमाल दोस्तों। शायरी दा गजला दा सिलसिला चलता रहेगा, तो जिहड़ा अज साडा प्रोग्राम है ये अद्धे घंटे का होगा। उस तो बाद असी 2:30 के बाद असी स्पॉन्सर प्रोग्राम सुनांगे उमंग, पर उस तो पहला एक प्यारी जी पेशकारी तो बनती है दोस्तों, क्योंकि एक माहौल है ना जिहड़ा बनिया रहना चाहिए। लो जी अगली पेशकारी।

दोस्तों तुम सुन रहे हो प्रोग्राम दिला शायरे ते एफएम 102.7 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी जलंधर दा रेनबो चैनल है। दोस्तों साडे अगले स्रोते ने सानू भेजा है सोनू मलेरकोटला तो। इन्होंने प्यार दी सजना इन्हों का टॉपिक है, टाइटल है, उत्थे इन्होंने लिखे है कि प्यार सी सजना जंग नहीं सी, दिल चला सी तंग नहीं सी, औला बुरिया नजरां तो सी उंज दुनिया तो संग नहीं सी, मैं बुढ़िया तेरे नाल सी होना, जिस्मां दी बस मंग नहीं सी, अज भी तेरे शहर च रहना कोई तखत हजारे चंग नहीं सी, तेरे हाथ मैं जो पाया सी कड़ा गुरु दा वंग नहीं सी। चल मन लैने कि सानू इश्क विश्क दा टंग नहीं सी, हंजू वगणों डके सी मैं उवें ही अखा बंद नहीं सी, राजा तेरे बदलन तो है किस्मत तो मैं दंग नहीं सी। क्या बात है सर, क्या बात है जी, कमाल ही करती। सानू भेजा सी सोनू मलेर कोटला जी ने। उस तो बाद साडे एक होर सरोते है गए मुहम्मद मुजफ्फर अरमान पेंट। ओके जी, इन्होंने भेजा, इन्हों का टाइटल है जानते हो। कभी कभी मैं सोचता हूँ अगर तुम मेरी जिंदगी में नहीं होती तो शायद मैं मुस्कुराना भी भूल जाता। तुमने मुझे सिर्फ प्यार नहीं दिया, तुमने मुझे ये एहसास दिलाया कि किसी का अपना होना कितना कीमती होता है। इसलिए अगर कभी मैं गुस्सा कर दूं या मेरी बातों से तुम्हें दुख पहुंचे तो इतना जरूर याद रखना, मेरा गुस्सा कुछ पलों का ही हो सकता है लेकिन तुम्हारे लिए मेरा प्यार कभी कम नहीं होगा, क्योंकि तुम सिर्फ मेरी पत्नी नहीं हो, तुम मेरी दुआ, मेरी सुकून में और मेरी पूरी दुनिया हो। क्या बात है जी, तुसी लगदा तुसी अपनी प्रेमिका दी गल्ला ना तुसी मेरे तो पढ़ाती है सर, मैनू इदा फील हो रहा। वैसे कोई गल चंगी गल है, दसो जी तुसी रेडियो ते अपनी प्रेमिका दी जिहड़ी गल कर रहे हो पर उन्हां नू काश सुनदे हो तां बहुत ही वधिया होगा। वेल दोस्तों तुसी सुन रहे हो प्रोग्राम दिला शायर है ते मैं थोड़ा अपना आरजे दोस्त रमनीश। वेल प्रोग्राम बस 4 मिनट रह गए दोस्तों, तो एक जरूरी गल ये कहूँगा कि जरा 4 to 5 जो प्रोग्राम आएगा साढ़ा हैलो जलंधर जरूर जरूर इंजॉय करियो, पार्टिसिपेट करियो। एंड जरा हूँ तुम सुनोगे थोड़ी देर तक 2:30 से स्पॉन्सर प्रोग्राम उमंग, 3 to 4 तुम सुनोगे प्रोग्राम रेडियो डॉक्टर, तो जरा सा प्रोग्राम 4 to 5 हैलो जलंधर वो तो आएगा ही आएगा दोस्तों। एंड बस फिर यूं ही वेट करते रहो, तो बस प्यारी जी गजल का मजा लो।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग, उमंग।
2: आप सभी श्रोताओं का उमंग कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं विमलेश।
3: नमस्कार, मैं हूं अजीत। आइए सुनते हैं आज का सुंदर विचार, जिसे हमें भेजा है कस्बा बराड़ा, जिला अंबाला, हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, विजेंद्र कुमार, जयजान, नूर, नमन, सिमरत, मन्नत, गुरकीरत राहुल और गुरशब्द राहुल जी ने। लिखते हैं,
2: खुद को बेहतर बनाना ही असली प्रतिस्पर्धा है। किसी से भी ईर्ष्या का सीधा मतलब ये है कि हमने सामने वाले व्यक्ति को हमसे ज्यादा श्रेष्ठ मान लिया है।
3: बहुत बहुत सुंदर विचार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है तहसील ठियोग, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश से सूरज चौहान जी का।
2: दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना, भावना, बिंदु, गोलू, कुसुमबाई, बाबू, दिव्यांश और सूरज कुमार ढाकसे जी लिखते हैं,
3: प्रिय अजीत जी और विमलेश जी, आपको हमारा प्यार भरा नमस्कार। हमें आपका उमंग कार्यक्रम बहुत अच्छा लगता है। हम आपका उमंग कार्यक्रम FM और DTH के रेडियो चैनल पर सुनते हैं। आपके उमंग कार्यक्रम में एक से बढ़कर एक जानकारियां सुनने को मिलती हैं, जो हमें बेहद पसंद आती हैं। धन्यवाद।
2: छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, निखिल वर्मा, प्रिंस वर्मा और यशस्वी वर्मा।
3: आप सभी श्रोताओं को हम धन्यवाद प्रस्तुत करते हैं संदेशों को भेजने के लिए। निवेदन है कि इसी प्रकार से हमारे उमंग कार्यक्रम से जुड़े रहिए। आप सबका स्वागत है एक बार फिर से हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए में। आइए अब चलते हैं इसकी अगली कड़ी में। इस सप्ताह श्रोताओं, हम बात कर रहे हैं खनिज पदार्थों की।
2: अब तक हमारी

0: चर्चा का विषय रहा कोयला, सोना और हीरा। तो अजीत जी, आज हमारा क्या विषय रहेगा? श्रोता बड़ी उत्सुकता से जी जानना चाहते हैं।
1: विमलेश जी, आज हमारा विषय बहुत रोचक होने जा रहा है। आज हम एक ऐसे खनिज की बात करेंगे जो पृथ्वी पर सबसे अधिक पाया जाता है, और तो और हम उस पर चलते फिरते भी हैं। अच्छा, चलिए श्रोताओं को दीजिए कुछ हिंट।
0: ठीक है, तो श्रोताओं, उस खनिज का उपयोग हमारे कंप्यूटर, मोबाइल और अनेक इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में भी किया जाता है। ये हमारे शरीर में भी पाया जाता है।
1: और ये कुछ पौधों में भी पाया जाता है, विशेषकर बांस और घास में तो पाया ही जाता है।
0: श्रोताओं, ये हमारे स्मार्टफोन और कंप्यूटर्स में तो होता ही है, इंटरनेट के उपकरणों और अंतरिक्ष के उपग्रहों में भी चिप्स के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। और हाँ, इससे कांच भी बनता है। तो श्रोताओं, आपने समझ लिया होगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं।
1: अगर आप सोच रहे हैं कि वो खनिज पदार्थ सिलिका है, तो आप बिल्कुल सही हैं। आइए अब जानते हैं कि सिलिका क्या है। विमलेश जी, आपसे करते हैं शुरुआत।
0: श्रोताओं, सिलिका सिलिकॉन और ऑक्सीजन से बना एक प्राकृतिक खनिज है। ये पृथ्वी की भूपरपटी में सबसे अधिक पाए जाने वाले खनिज पदार्थों में से एक है। आइए सबसे पहले जानते हैं सिलिका शब्द कहाँ से आया।
1: श्रोताओं, सिलिका शब्द लैटिन भाषा के सिलेक्स शब्द से आया है, जिसका अर्थ है चकमक या कठोर पत्थर। बता दें कि पृथ्वी की सामान्य रेत का अधिकांश भाग सिलिका से ही बना होता है। इसी सिलिका से एक विशेष वैज्ञानिक प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीजन को अलग करके सिलिकॉन बनाया जाता है।
0: और इसी सिलिकॉन से बनते हैं मोबाइल, कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में लगाए जाने वाले चिप्स। सुंदर क्वार्ट्ज क्रिस्टल वास्तव में सिलिकॉन का ही रूप है। अजीत जी, एक प्रश्न मेरे मन में आता है, वो ये है कि क्या जिस रेत या धूल पर हम चलते हैं, क्या वही सिलिका है?
1: विमलेश जी, ऐसा कहना आंशिक रूप से सही है, पर पूरी तरह से नहीं। ये जानना जरूरी है कि साधारण रेत या धूल के कण पूरी तरह से सिलिका नहीं होते। धूल कई प्रकार के कणों का मिश्रण होती है, जैसे मिट्टी, जैविक पदार्थों के अवशेष और कुछ खनिज।
0: बता दें कि सिलिका सबसे अधिक रेगिस्तान और समुद्र की रेत में पाई जाती है, लेकिन अब प्रश्न ये उठता है कि ऐसा क्यों?
1: ऐसा इसलिए कि रेगिस्तान बनते हैं बहुत सारी चट्टानों के टूटने से। इन चट्टानों में खनिज पदार्थों के रूप में सिलिका पहले से ही मौजूद होती है। चट्टानों के टूटने से सिलिका के कण रेत और मिट्टी में फैल जाते हैं। और जहाँ तक समुद्र की बात है, यहाँ सिलिका की मात्रा बहुत अधिक होती है, क्योंकि नदियाँ समुद्र की ओर बढ़ती हुई पहाड़ों और चट्टानों को जब अपने जल प्रवाह से घिसती हैं, तो उन चट्टानों में मौजूद सिलिका के कणों को समुद्र तक ले आती हैं। श्रोताओं, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि समुद्र तट की एक मुट्ठी रेत में मौजूद सिलिका के कणों ने हजारों किलोमीटर की यात्रा की है। तो विमलेश जी, हजारों वर्षों से मनुष्य सिलिका या रेत को देखता आया है
0: जी।
1: लेकिन ये विचार कैसे आया कि ये इतना महत्वपूर्ण है?
0: इसकी कहानी बड़ी रोचक है। 1824 में स्वीडन के रसायन शास्त्री जॉन जेकब वर्जिलियास ने पहली बार सिलिका से ऑक्सीजन को अलग करके सिलिकॉन की खोज की। लेकिन प्राचीन काल से ही मिस्र और चीन के लोगों ने इसके द्वारा कांच और आभूषण बनाने शुरू कर दिए थे, क्योंकि ये बहुत चमकदार होता है। 1906 में पहली बार इससे पहला इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बनाया गया।
1: फिर धीरे धीरे शोध होते गए और आज ये मानव सभ्यता का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। आज हम इसके बिना सौंदर्य प्रसाधनों, चिकित्सकीय उपकरणों, उद्योगों, कंप्यूटर, मोबाइल फोन्स, इंटरनेट, सौर उपकरणों और उपग्रहों की कल्पना तक नहीं कर सकते।
0: तो श्रोताओं, ये थी आज की जानकारी सिलिका खनिज के बारे में। अब आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से।
1: तो हमारा आज का प्रश्न है, सिलिका और सिलिकॉन में क्या फर्क है? आप हमारे IVRS नंबर पर यानी 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी CIT NCERT को फॉलो जरूर कीजिए। आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा पहला कार्यक्रम है, कैसे जानते हैं हम अपना अतीत।
0: इस कार्यक्रम में विशेष रूप से इतिहास के विभिन्न स्रोतों के बारे में विस्तार से बताया गया है और संदेश दिया गया है कि हमारी ऐतिहासिक विरासत महान है।
2: दोस्तों नमस्कार, एक नजर अतीत की ओर श्रृंखला में आपका स्वागत है। ये जानने के लिए कि कल क्या हुआ था या आज क्या हो रहा है, हम रेडियो सुन सकते हैं, टेलीविजन देख सकते हैं या फिर अखबार पढ़ सकते हैं, लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था ये कैसे जाना जा सकता है?
3: है ना साथियों, अच्छा सवाल। यही सवाल निधि और आदिका के मन में भी था। वे छुट्टियों में अपनी नानी के घर गई हुई थी। हुआ यूं कि एक दिन वे समाचार पत्र पढ़ रही थीं। अचानक उनकी निगाह समाचार पत्र के

0: एक अंश पर पड़ी जहाँ छपा था,
1: लगभग 2000 साल पहले। वे सोचने लगी,
2: भला ये कोई कैसे जान सकता है कि 2000 साल पहले क्या हुआ था।
3: हाँ, 2000 साल पहले।
4: नानी माँ।
5: हाँ निधि।
3: ओ नानी माँ, कहाँ हो?
5: अरे यही हूँ, आ जाओ निधि, आओ आधिका बेटी।
3: अरे ये क्या सारे बक्से खोल रखे हैं, क्या कर रही हो?
5: हाँ हाँ बताती हूँ, जल्दी क्या है।
3: कितने ढेर सारे कपड़े हैं नानी माँ, ये तो बहुत पुराने हैं ना?
5: हाँ बेटी, बहुत पुराने हैं, तुमसे और तुम्हारी मम्मी से भी पुराने। और पता है निधि, आधिका, जानती हैं आप ये कपड़े हमने कब पहने थे?
3: नहीं पता, बताओ ना रानी माँ।
5: अरे ये कपड़े तो हमारी शादी के हैं।
3: नाना नानी के शादी के कपड़े? भाई वाह, नानी पहले और आज के कपड़े कितने अलग अलग दिखते हैं, है ना?
5: हाँ हाँ निधि, समय के साथ साथ सारी चीजें बदल जाती हैं।
2: नानी एक बात मेरे मन में भी आ रही है, और वो ये कि बहुत पुराने बातों को कैसे जाना जा सकता है।
5: अरे बिटिया, ये बताने के लिए तो हमारे पंकज से बढ़िया और कोई नहीं हो सकता।
3: हाँ हाँ, मामा जी से पूछेंगे।
5: हाँ बिटिया, वो तो पुरातत्व वेत्ता है ना?
3: मामा जी।
6: अरे निधि, ओ आधिका, कैसी कट रही है तुम्हारी छुट्टियाँ?
2: बहुत अच्छी तरह मामा जी, आज सुबह हम समाचार पत्र पढ़ रहे थे।
6: ये तो बहुत अच्छी बात है
3: जी, उसमें छपा था लगभग 2000 साल पहले, ये लेख किसी सभ्यता के बारे में था मामा जी। भला ये कोई कैसे जान सकता है कि 2000 साल पहले क्या हुआ था।
6: अच्छा अच्छा, तो ये बात है, आओ आओ यहाँ बैठो। अरे बैठो बैठो, मैं तुम्हें कुछ तस्वीरें दिखाता हूँ, जरा इसे देखो, बता सकती हो कि ये क्या है?
2: ये किसी खुदरी सी शीट की तस्वीर है, इसमें कुछ लिखा गया है, शायद गोदकर।
6: शाबाश निधि, तुमने बिल्कुल ठीक पहचाना। ये खुरदरी शीट दरअसल एक पेड़ की छाल है जिसे भूर्ज वृक्ष कहा जाता है।
3: अच्छा, भूर्ज वृक्ष।
6: हाँ, भूर्ज वृक्ष हिमालय क्षेत्र में मिलता है। इसकी छाल पर या ताड़ के पत्तों पर उन दिनों लोग हाथ से लिखते थे। हाथ से लिखी होने के कारण ये पांडुलिपि कही जाती है।
2: पांडुलिपि? ये हमें कहाँ मिली है
6: निधि? ये पांडुलिपियाँ ज्यादातर प्राचीन मंदिरों और विहारों से खुदाई में प्राप्त हुई हैं। तुम्हें पता है, कुछ पुरानी गुफाओं में भी मिली हैं।
2: अच्छा।
6: और बेटी मैं तुम्हें बताता हूँ, इन पांडुलिपियों में उस समय की धार्मिक परंपराओं, राजाओं के जीवन, दवाइयों, कला और विज्ञान की जानकारी हमें मिलती है। हमें कई नाटक और कविताएं भी मिलती हैं।
3: ये किस भाषा में है?
6: बहुत अच्छा सवाल पूछा है बेटी तुमने, ये ज्यादातर संस्कृत, तमिल और प्राकृत भाषा में है। उन दिनों प्राकृत भाषा का इस्तेमाल आम लोग करते थे।
3: मामा जी अब आगे भी बताइए ना।
6: हाँ हाँ बताता हूँ, अरे धैर्य रखो। अतीत या पुराने समय के बारे में हमें पांडुलिपियों से तो पता चलता ही है, लेकिन हमें बहुत सारी जानकारियाँ अभिलेखों और शिलालेखों से भी मिलती हैं।
3: अच्छा।
6: अभिलेख को अंग्रेजी में इंस्क्रिप्शन कहते हैं। इंस्क्रिप्शन शब्द से ही इंस्क्राइब निकला है, जिसका मतलब है लिखना, खोद कर लिखना या उत्कीर्ण करना, इसको उकेरना भी कहते हैं।
3: अच्छा।
6: और हाँ, अतीत को जानने के लिए हम अभिलेखों का भी अध्ययन करते हैं। ऐसे अभिलेख हमें पत्थर या धातु पर खोद कर लिखे हुए मिलते हैं। लगभग 2250 वर्ष पुराने पत्थर पर लिखा अभिलेख या शिलालेख हमें वर्तमान अफगानिस्तान के कंधार से मिला है।
2: अच्छा।
6: ये सम्राट अशोक के आदेश पर लिखा गया है।

0: पत्थर पर लिखने की कला को एपिग्राफी भी कहते हैं और शिलालेख को
1: एपिग्राफ।
0: शाबाश निधि।
1: मामा जी, अभिलेख और शिलालेख में क्या फर्क है?
0: देखो, अभिलेख को किसी भी कठोर वस्तु पर लिखा जा सकता है, मतलब ये कोई धातु भी हो सकती है। ये अभिलेख हमें पकी मिट्टी, सिक्के, तांबे और चांदी पर भी लिखे मिले हैं। लेकिन शिला का मतलब होता है पत्थर। ये लेख पत्थरों पर ही लिखे जाते हैं।
1: मामा जी, आपने शिलालेख की बात की, ऐसे पत्थर पर हमें क्या लिखा हुआ मिलता है?
0: ऐसे पत्थर पर कभी कभी राजा लोग अपने आदेशों को खुदवाते या उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सकें, पढ़ सकें और उसका पालन कर सकें।
2: मामा जी, मैंने सुना है कि भूविज्ञानियों के अध्ययन से भी हमें अपने अतीत के बारे में पता चलता है।
0: आदिका, बिल्कुल ठीक सुना है तुमने। भूविज्ञानी मिट्टी के नमूनों, पुराने पत्थरों, पहाड़ों और महासागरों का अध्ययन करते हैं और पता लगाते हैं कि पहले पृथ्वी कैसी थी और आज क्या उसका स्वरूप कुछ बदला है।
2: ओह, कितना रोचक है ये सब जानना।
0: हाँ आदिका, रोचक तो है ही। तो दोस्तों, हमारा समय अब समाप्त होता है। इस वायदे के साथ कि एक नजर अतीत की ओर, श्रृंखला में आपसे फिर भेंट होगी। अब आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।
3: तो साथियों, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम। अब आपके लिए कुछ करने को, तो चलिए बनाते हैं अभिलेख। तो सबसे पहले आप मुलायम मिट्टी या क्ले लीजिए, फिर उसे हाथों से एक पट्टी की तरह बना लीजिए और उसे गोल या चौकोर जैसा कोई आकार दीजिए। अब सतह को किसी सपाट चीज से चिकना कर दीजिए। तो अभिलेख के लिए अब आपकी पट्टी तैयार है। इस मुलायम मिट्टी पर लिखने के लिए आप पेंसिल या किसी नुकीली लकड़ी का प्रयोग कर सकते हैं। अब इस मुलायम मिट्टी पर अपनी मातृभाषा के कुछ अक्षर या शब्द लिखिए या कोई चित्र बनाइए। मिट्टी को सुखा लीजिए और फिर विद्यालय में अपने मित्रों और शिक्षकों को दिखाइए और इसके बाद इसे सहेज कर रख लीजिए। हो गया ना तैयार आपका अभिलेख?
4: आशा है श्रोता मित्रों, आपको ये कार्यक्रम जरूर पसंद आया होगा। श्रोताओं, भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम 1857 का सिपाही विद्रोह माना जाता है, लेकिन सच ये है कि इससे पहले भी बहुत से लोगों ने स्वतंत्रता के लिए स्थानीय रूप से अपनी आवाजें बुलंद की।
3: इनमें से बहुत सारे जनजातीय या आदिवासी समूह थे जिनमें बिरसा मुंडा, सिद्धो कान्हू इत्यादि बहुत प्रसिद्ध हैं।
4: जी।
3: लेकिन आज श्रोताओं, आपको विशेष रूप से हम बताना चाहते हैं कि कई जनजातीय महिलाएं भी रही
4: जिन्होंने स्थानीय रूप से स्वतंत्रता का झंडा बुलंद किया। इनमें आज हम सुनेंगे कार्यक्रम रानी दुर्गावती पर, जो गोंड आदिवासी समुदाय से संबंधित हैं। उनकी वीरता के किस्से आज भी गोंडवाना भूमि यानी आज के छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में गाए और सुनाए जाते हैं।
3: तो आइए सुनते हैं श्रोताओं कार्यक्रम रानी दुर्गावती।
5: हमारे देश के इतिहास में स्त्रियों के त्याग और महानता की अनगिनत कहानियां मिलती हैं। ऐसी कुछ विरल स्त्रियों में से एक है रानी दुर्गावती। दुर्गावती का जन्म मध्य प्रदेश के महोबा नामक स्थान पर सन 1524 में हुआ था। उसके पिता कीर्ति सिंह कारंजर के राजा थे। दुर्गावती अभी छोटी ही थी कि उसकी मां का देहांत हो गया। पिता ने उसे बचपन से ही घुड़सवारी और अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा दी और ये देखकर बहुत खुश होते कि उनकी बेटी राजनीति और शासन की समस्याओं को सुलझाने में भी उतनी ही कुशल थी जितनी तीर चलाने में। एक बार की बात है,

शाबाश शाबाश मोती, शाबाश, आज तुमने खूब साथ दिया। हाँ, मैं जानती हूँ कि तुम थक गए हो।

0: प्यास भी लग रही है, पर क्या करो, तुम तो शिकार के पीछे इतना तेज दौड़े कि अपने सब साथी पीछे छूट गए। चलो कुछ देर यहीं आराम करते हैं, तब तक बाकी लोग भी आ जाएंगे। ये लो, कुछ लोग तो शायद आ ही पहुंचे। अरे ये क्या, ये तो हमारे साथियों में से कोई नहीं। इसके कपड़ों से तो लगता है कि ये कोई मुगल सरदार है।
1: माशाल्लाह, ऐसी खूबसूरत लड़की और वो भी इस बयाबान जंगल में।
0: आपने मेरा रूप तो देखा, पर शायद ये नहीं देखा कि मेरे हाथ में तीर कमान भी है।
1: जी हाँ देख रहा हूँ, पर सच पूछिए तो आप जैसी हसीन लड़कियों के हाथ में तीर कमान शोभा नहीं देते।
0: बस बस, वहीं खड़े रहो। शायद तुम नहीं जानते कि मैं कालंजर की राजकुमारी दुर्गावती हूँ।
1: अखा, तो आप ही हैं राजकुमारी दुर्गावती। अरे वाह, जैसा सुना था वैसा ही पाया। अरे आपकी सुंदरता और बहादुरी के किस्से तो दूर दूर तक फैले हुए हैं। इस इलाके के सभी राजे रजवाड़े आपको पाने की हसरत रखते हैं। ज़हे नसीब जो आपके दीदार हुए। अब जरा
0: फिर आगे बढ़ रहे हो, क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है? कौन हो तुम?
1: मैं आसिफ खान हूँ, कड़ा का सूबेदार। आपको अपनी मलिका बनाना चाहता हूँ, और आज जब ऐसा सुनहरी मौका हाथ आ ही गया है तो अभी आपको अपने साथ ले जाऊंगा।
0: जरा हाथ तो लगाकर देख आसिफ खान, तूने दुर्गावती का रूप देखा, अब दुर्गा का रूप भी देख।
1: अच्छा वाह, और
0: हाँ तो आसिफ खान, अब जरा अपनी बात दोहराओ। मेरी तलवार तुम्हारा लहू चखने को बेचैन है।
1: मुझे माफ कर दीजिए राजकुमारी जी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, फिर कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा। आप तो मेरी बहन जैसी हैं।
0: ठीक है, पर आइंदा कभी किसी लड़की पर बुरी नजर मत डालना, वरना इस देश की बेटियों को दुर्गा और चंडी बनते देर नहीं लगती।
1: अजी मेरी तौबा, जो अब किसी की तरफ आंख उठाकर भी देखूं।
0: चल बेटा मोती।
1: आज की इस बेइज्जती को मैं कभी नहीं भूलूंगा दुर्गावती। तुमसे आज की हार का बदला ना लिया तो मेरा नाम भी आसिफ खान नहीं।
2: एक बार दलपरचाह ने राजा कीर्ति सिंह को शिकार खेलने के लिए मनियागढ़ के जंगलों में आने का निमंत्रण दिया। शिकार की शौकीन दुर्गावती भी साथ गई। दलपत शाह इस साहसी युवती पर मुग्ध हो गए और उसे अपनी पत्नी बनाने का निश्चय कर लिया। दोनों का विधिवत विवाह हुआ। डेढ़ वर्ष बाद दुर्गावती ने एक पुत्र को जन्म दिया। बालक का नाम वीर नारायण रखा गया। लेकिन दुर्गावती के जीवन का इस सुख शांति का समय अधिक दिन नहीं रहा।
0: आधार सिंह जी, आप स्वर्गीय महाराज के मंत्री ही नहीं थे, आप उनके मित्र और चिंतक भी थे। आप ही बताइए मैं क्या करूं।
3: महारानी, आप स्वयं योग्य हैं, मैं भला आपको क्या सलाह दे सकता हूं। पर हां, इतना अवश्य जानता हूं कि स्वर्गीय महाराज अपने जीवन काल में बराबर राजकाज में आपसे सलाह लेते थे और आपकी राय की कदर करते थे। वे ये कभी पसंद नहीं करते कि आप कार्यों की भांति जीवन से मुंह मोड़ लें।
0: ठीक है आधार सिंह जी, घोषणा करवा दीजिए, कुमार वीर नारायण गोंडवाने के नए राजा हैं और रानी दुर्गावती आज से सिर्फ उनकी

0: ही नहीं समस्त गोन राज्य की माता है।
1: राजमाता की जय, राजमाता की जय हो, राजमाता की जय हो।
2: रानी दुर्गावती ने शासन की बागडोर अपने मजबूत हाथों में संभाल ली। उसने किसानों को अधिक उत्पादन के लिए प्रेरित किया, उद्योगों को प्रोत्साहित किया, पानी की समुचित व्यवस्था के लिए कुएं और तालाब खुदवाए, पुराने कुओं की मरम्मत करवाई। वह राज्य के सभी भागों के अधिकारियों को बुलाकर उनकी समस्याओं के बारे में बातचीत करती और कभी कभी स्वयं भी दौरा करती थी। राजकीय कोष और सेना की रानी स्वयं देखभाल करती थी। उसके कुशल शासन में गोंडवाना एक संपन्न राज्य बन गया। दिल्ली के मुगल बादशाह अकबर ने गोंडवाना पर अधिकार करना चाहा। आसफ खां के नेतृत्व में मुगलों की बड़ी भारी फौज गोंडवाना की ओर चल पड़ी। रानी पहले से सतर्क थी। आक्रमण हुआ। रानी की सेना बहुत बहादुरी से लड़ी। कई मोर्चों पर तो उसकी जीत भी हुई। लेकिन रानी के एक पुराने शत्रु रेवतीगढ़ के राजा सुधार सिंह ने धोखा दिया। सुधार सिंह साधु के वेश में इधर उधर फिरता और जासूसी करता। उसी ने अकबर को गढ़ा पर हमला करने के लिए प्रेरित किया था। इनाम जागीर पाने के लालच में वो इधर की खबर उधर पहुंचाया करता था।
3: अलख निरंजन।
4: साधु बाबा।
3: अब अच्छा,
4: यहाँ कहाँ घुसे चले आ रहे हो? ये रानी दुर्गावती का किला है, साधुओं का जमघट नहीं।
3: अरे वो तो हम भी जानते हैं बच्चा, लेकिन साधु तो रमता राम होते हैं, आज यहाँ कल वहाँ। अभी मुगलों की छावनी से चले आ रहे हैं
4: क्या?
3: हाँ, बाप रे बाप, क्या लश्कर है बच्चा
4: है?
3: हाथी, घोड़े, तोप, बंदूक, बड़ा भारी इंतजाम है।
4: अच्छा,
3: हाँ
4: बहुत बड़ी फौज है।
3: और नहीं तो क्या बच्चा, अरे मुगल लोग जब चूहे के शिकार पर भी निकलते हैं ना, तो शेर के शिकार की तैयारी करके चलते हैं। और फिर यहाँ, अरे यहाँ तो रानी दुर्गावती से मुकाबला है, बड़ी जबरदस्त तैयारी करके निकले हैं बच्चा।
4: तो हमारे यहाँ भी जबरदस्त तैयारी है बाबा।
3: अच्छा,
4: रानी माँ ने रसद, पानी, हथियार सबका ऐसा बंदोबस्त किया है कि मुगल साल भर भी घेरा डाले पड़े रहे तो भी गढ़ में किसी चीज की कमी नहीं होगी।
3: हैं? क्या कहते हो बच्चा, साल भर का इंतजाम है?
4: बिल्कुल है।
3: और भगवान ना करें कोई हारी बीमारी ऐसी हो जाए कि बाहर निकलना जरूरी हो जाए तो?
4: उसका भी इंतजाम है।
3: अरे हटाओ, बाहर मुगल फौज घेरा डाले पड़ी हो तो तुम्हारी रानी भला क्या इंतजाम कर देगी?
4: देखो हैं? तुम्हें बताने में कोई हर्ज नहीं, पर किसी और से ना कहना।
3: नहीं नहीं बच्चा, किसी से नहीं कहेंगे।
4: हाँ, हमारे महल से एक गुप्त सुरंग शहर के बाहर वाले बगीचे तक जाती है।
3: गुप्त सुरंगों का पता तुम्हारे जैसे मामूली सैनिकों को कैसे पता चलेगा? यूं ही डींग मार रहे हो तुम।
4: यूं ही डींग नहीं मारता साधु महाराज, मैं बदन सिंह हूँ, बदन सिंह, रानी माँ का खास सेवक। इतना सा था जब मुझ अनाथ को रानी माँ ने सहारा दिया था।
2: पुरुष वेश में लड़ रही रानी की बहादुरी देखकर मुगलों के छक्के छूट गए। मुगल सैनिक जान बचाकर इधर उधर भागने लगे। दूसरे दिन फिर घमासान युद्ध हुआ। वीर नारायण घायल हो

0: उन्हें रणभूमि से दूर चौरागढ़ भेज दिया गया। रानी हाथी पर बैठकर लड़ रही थी कि तभी
1: क्या हुआ रानी माँ? अरे आपकी कनपटी में तीर लगा है माँ।
2: मेरा ध्यान छोड़ गनू, तू हाथी को संभाल।
1: हाथी को क्या संभालूं रानी माँ, ये तो पहले ही भालों से छिप चुका है। अब तो कुछ देर संभला रह सके तो बड़ी बात है, लेकिन आप कितना खून बह रहा है।
2: ये खून तो वीरांगनाओं का आभूषण है गनू।
3: रानी माँ देर न कीजिए, आप मेरा ये घोड़ा लेकर यहाँ से शीघ्र निकल जाइए। चौरागढ़ में राजा साहब भी हैं, वहीं जाना ठीक रहेगा।
2: अब इसका समय नहीं रहा आधार सिंह जी, मुगल सैनिक चारों ओर से घिरते आ रहे हैं। आसिफ खान से मेरा पुराना बैर है, उसके हाथों अपनी दुर्गत कराने से अच्छा है आप अपने हाथों मेरा अंत कर दें।
3: नहीं नहीं रानी माँ, नहीं, ये पाप मुझसे नहीं हो सकेगा, इसकी आज्ञा मुझे मत दीजिए रानी माँ।
2: अच्छा तो गनू बेटा, ला, तू अपनी कटार मुझे दे।
3: रानी माँ,
4: मेरी कटार से अपने प्राण लेकर तुम मुझे इस तरह पापी नहीं बना सकती माँ। मैं तुम्हारा महावत हूँ, तुम्हारे साथ ही रहूंगा।

0: और श्रोताओ, इसी के साथ अब हमारा आज का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।

यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।

0: आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: मुस्कान सिर्फ चेहरे की नहीं आत्मविश्वास की भी पहचान होती है। नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आपका अपने कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर में और मैं हूं आपकी मेज़बान शिल्पा गुप्ता। एक सवाल जो मैं अपने श्रोताओं से करना चाहूंगी कि हम रोज़ अपने चेहरे की तो खूब देखभाल करते हैं, लेकिन क्या हम अपने दांतों का भी उतना ही ध्यान रखते हैं? अक्सर जवाब होता है नहीं, और फिर छोटी सी लापरवाही, कभी कैविटी, कभी मसूड़ों की बीमारी, तो कभी दांत खोने जैसी समस्या का कारण बन जाती है। लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज आधुनिक डेंटल ट्रीटमेंट और डेंटल इम्प्लांट इन समस्याओं का प्रभावी समाधान बनकर सामने आए हैं। हमारे आज के रेडियो डॉक्टर का विषय है डिफेंडिंग योर स्माइल, यानी अपने दांतों की देखभाल कर हम अपनी मुस्कान बनाए रख सकते हैं, जिस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं दंत विशेषज्ञ डॉक्टर रेखा गुप्ता, प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ प्रोस्थोडोंटिक्स, मौलाना आज़ाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज, न्यू दिल्ली। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। और साथ हैं डॉक्टर हरमीत सिंह, डेंटल स्टाफ सर्जन, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल, न्यू दिल्ली। डॉक्टर साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
2: थैंक यू जी, थैंक यू।
1: दोस्तों, हमारा ये कार्यक्रम फ़ोन इन प्रोग्राम है, जहां आप सीधा जुड़ सकते हैं हमारे एक्सपर्ट से। हमारा फ़ोन नंबर है 2342-1080, 2342-1082। अगर आप

0: दिल्ली से बाहर से फ़ोन कर रहे हैं तो 01 लगाना ना भूलें। आप हमें व्हाट्सएप के माध्यम से मैसेज भी कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9868107070। आप हमारे इस प्रोग्राम को प्रसार भारती के ऐप न्यूज़ ऑन AIR पे भी लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से सुन सकते हैं। तो श्रोताओं, जुड़े रहिए हमारे साथ। आज हम बात करेंगे डिफेंडिंग योर स्माइल पे, यानी मुस्कान को खूबसूरत बनाए रखने के लिए दांतों को कैसे सुरक्षित रखा जाए। तो डॉक्टर हरमीत, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि मौखिक स्वास्थ्य को क्यों इतना इम्पोर्टेंट है और ये बाकी स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित करता है।
1: देखिए, मौखिक स्वास्थ्य जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे कि हम जानते हैं कि ओरल हेल्थ इज़ अ मिरर इमेज ऑफ जनरल हेल्थ, मीन्स अगर मुख स्वस्थ तो जनरल हेल्थ भी स्वस्थ रहेगी। तो इसके लिए आपको, अगर आपके माउथ में कोई भी इन्फेक्शन या ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है तो बाकी जनरल हेल्थ भी ठीक रह सकती है। जैसे कि ये एक गेटवे है, ओरल कैविटी जो है गेटवे है टू द एयर एज वेल एज टू द फूड। सो एनी इन्फेक्शन इन द ओरल कैविटी और क्रोनिक इन्फेक्शन इन द कैविटी, इट कैन इन्फेक्ट द थ्रोट, द लंग्स, इट कैन इन्फेक्शन कैन गो टू द लंग्स और इट कैन गो टू द इंटेस्टाइन आल्सो। सो ओरल कैविटी की जो केयर है बहुत ज़रूरी है। और बहुत सारे साइन एंड सिम्टम्स होते हैं ओरल कैविटी में जो डेंटिस्ट जो है स्पॉट कर सकते हैं कि अगर उसको कोई जनरल बीमारी तो नहीं है, कोई क्रोनिक बीमारी तो नहीं है। जैसे कि अगर किसी को डायबिटीज़ है उसमें ड्राई माउथ हो जाता है, और किसी को ल्यूकीमिया है या HIV/AIDS है उसके साइन एंड सिम्टम्स मुँह के अंदर दिखाई देते हैं। तो इस तरह से ओरल कैविटी जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। और आप जानते ही हैं कि पुराने ज़माने में जब डॉक्टर के पास जाते थे तो वो सबसे पहले किसी को फीवर है, कोई भी बीमारी है, तो मुंह खोल करके टॉर्च से चेक करते थे, तो उससे उस काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है ओरल कैविटी, जिससे हमारी जनरल हेल्थ के बारे में पता चलता है।
0: तो डॉक्टर रेखा, आपसे जानना चाहेंगे कि आमतौर पर ओरल डिजीज़ कौन कौन सी होती हैं।
2: ओरल डिजीज़ बहुत तरह के होते हैं, जो कॉमनली नॉर्मल लैंग्वेज में, जैसे हम पायरिया से अगर शुरू करें, जिसको कि हम, जो मसूड़ों की बीमारी है एक तरह से, जो हड्डी तक भी जा सकती है अगर सही समय पे उसका ट्रीटमेंट ना किया जाए। इसके अलावा दांतों में कीड़ा लगना। तो अगर हम एक मोटे मोटे तौर पे बात करें, देखिए मुंह के अंदर दांत है, हड्डी है, मसूड़े हैं और उसके आसपास हमारे गम सॉफ्ट टिश्यू है, जैसे कि चीक और टंग। तो कोई भी बीमारी जो इससे रिलेटेड है, तो हार्ट टिश्यू को अफेक्ट करने वाली डेंटल केरीज, जैसे मैंने कहा दांतों में कीड़ा लगना, सॉफ्ट टिश्यू यानी मसूड़े को अफेक्ट करने वाला या गम्स को अफेक्ट करने वाला पायरिया या जिंजिवाइटिस या पेडोंटाइटिस जिसको बोलते हैं, जिससे मसूड़ों की सूजन, खून आना, दर्द होना, दांतों का हिलना, हड्डी का गलना, ये सब शुरू हो सकता है। देन कई बार देखा गया है कि जीभ और जो आपके गाल का टिश्यू है, बकल म्यूकोसा, उसके ऊपर कई तरह के इन्फेक्शन हो जाते हैं, खासकर तंबाकू खाने वाले लोग या बीड़ी पीने वाले लोग, उनमें कई तरह के वाइट लीजन्स और इस तरह के प्री कैंसरस लीजन्स भी देखे गए हैं। सो बहुत किस्म की बीमारियां मुंह में देखी जा सकती हैं। और जैसे डॉक्टर हरमीत ने अभी कहा कि कुछ ऐसे भी होते हैं जो खुद से मुँह की बीमारी नहीं है, शरीर में कुछ बीमारियाँ हैं बट जिसके लक्षण मुँह में देख सकते हैं।
0: बातें हम इस पर और भी करेंगे, लेकिन उससे पहले सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

0: मुस्कुराने की वजह तुम हो, इसी मुस्कुराहट को बनाए रखने के लिए दांतों को सुरक्षित रखना बेहद ज़रूरी है। आज हम बात कर रहे हैं डिफेंडिंग योर स्माइल पर, तो डॉक्टर रेखा आपसे जानना चाहेंगे कि किन शुरुआती लक्षणों को देखकर हमें लगता है कि हमें डॉक्टर को कांटेक्ट करना चाहिए, डॉक्टर के पास इमिडिएटली जाना चाहिए, कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं
1: जी कुछ जिनको हम अलार्मिंग सिस्टम कह सकते हैं। सो शुरुआती लक्षण जैसे कि इट कुड बी एज स्मॉल एज मुंह से बदबू आना, या मसूड़ों में ब्रश करते हुए खून आना, या फिर ठंडा गर्म लगना, ये बहुत सारी बीमारियों के शुरुआती लक्षणों में आते हैं। और अगर इन्हें इसी समय पे इस पे ध्यान दिया जाए और ट्रीटमेंट किया जाए तो हम बीमारियों को आगे बढ़ने से रोक सकते हैं। तो कहीं भी किसी तरह की स्वेलिंग हो, खून आ रहा है, दर्द कर रहा है, कहीं आपको सूजन दिख रही है, कहीं काला काला कुछ, मतलब जैसे केरीज अगर नहीं पता लगता कुछ है, तो उसका दिखने में दांत का कलर बदलता हुआ दिख रहा है, कोई दांत हिलना शुरू हो जाता है, मसूड़े फूले हुए या लाल नज़र आते हैं, सो दीज आर सम ऑफ द कॉमन प्रॉब्लम्स, कॉमन सिम्टम्स, अर्ली सिम्टम्स। तो ऐसा कुछ भी आपको अगर अपने मुँह में दिखता है तो आपको डॉक्टर को जाके इमिजिएटली दिखाना चाहिए।
0: एक कॉलर है हमारे साथ लाइन पर। हेलो।
2: हेलो,
0: नमस्कार जी, आपका नाम, आप कहाँ से कॉल कर रहे हैं?
2: हाँ जी, मेरा नाम राजेंद्र है और मैं करमपुरा दिल्ली से ही बोल रहा हूँ।
0: जी बताइए, क्या प्रश्न है आपका?
2: हाँ, सबसे पहले तो एंकर मेंबर दोनों डॉक्टर साहिबान को नमस्कार।
0: नमस्कार।
1: नमस्कार
2: जी, मेरे चार सवाल हैं। पहला सवाल तो मेरा ये है कि जो कई शख्स ऐसे होते हैं उनके मुँह में जो है वो दांतों के बीच में गैप होता है स्पेस, और कई होते हैं उनके बीच में नहीं होता, और किसी के मुंह में 28 दांत होते हैं, किसी के मुंह में 32 दांत होते हैं, तो इसमें मतलब इंसान की शख्स की अपनी कोई प्रॉब्लम होती है कि ये विरासत में माँ बाप की वजह से मिलता है, ऐसा कुछ क्या है, मतलब ये मिथ दूर करें। दूसरा सवाल,

0: मेरा ये है कि आप कह रहे हैं कि टोबैको नहीं खाना चाहिए, स्पेसिफिक शराब नहीं पीनी चाहिए, बीड़ी नहीं पीनी चाहिए, पर जो हमें अच्छे अच्छे गीत सुनने को मिलते हैं, गजलें, कवालियां, या ये गजलें, ये कविताएं, तो जितने शायर होते हैं ये तो बगैर तम्बाकू खाए सिगरेट पिए ये काम करते ही नहीं, तो आप इनको क्या परामर्श देना चाहेंगे? तीसरा सवाल मेरा ये है कि ऑस्ट्रेलिया वाले जो होते हैं वो दांतों की एक्सरसाइज के लिए माउथ की, मुंह की, जबड़े की और बसूड़ों की वो च्युइंगम का इस्तेमाल करते हैं, तो ये कहाँ तक ठीक है? और चौथा सवाल ये है कि ये जो आपका मौलाना अबुल कलाम डेंटल सेंटर है इसका टाइमिंग क्या है, और आप दांत जो रीप्लांट करते हैं उसमें समय पजर क्या था, कितना समय लगता है, और ये है कहाँ पर, ईस्ट दिल्ली, साउथ दिल्ली, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली, तो जरा ये बताएं, प्लीज गाइड करें, बड़ी मेहरबानी होगी।
1: हाँ, बहुत सारे सवाल कर दिए एक ही बार में आपने। तो पहला सवाल जो आपका ये था कि आपके दांतों में गैप है, तो ये डिपेंड करता है एज के हिसाब से। अगर तो छोटे बच्चों में है वो तो नॉर्मल ही होता है दांतों के बीच में गैप। अगर कोई बड़े हैं उनके दांतों के बीच में गैप है तो जनरली मसूड़े कमज़ोर होने की वजह से दांत जो है फ्लेयर कर जाते हैं, तो उसकी वजह से गैप आ जाता है। तो मेन है कि आपको अपने मसूड़ों का केयर करना है, मसूड़ों को टाइट करना है कि जो दांत फ्लेयर हो गए हैं और फ्लेयर ना हो, उसको प्रिवेंट करना है और ज़्यादा हिलने से बचाने के लिए और गैप और ज़्यादा प्रिवेंट करने के लिए। और अगर दांतों के बीच में कुछ कैविटी है इन बिटवीन एरियाज में साइड में से, तो उसकी वजह से भी गैप हो सकता है, तो वो आपको एक चेकअप कराना पड़ेगा अपने डेंटिस्ट के पास जा करके। और अगर कोई एक्सरे की ज़रूरत पड़ेगी तो वो करा करके देखना होगा गैप का कारण क्या है और उसका फिर समाधान क्या होगा। और दूसरा आपने पूछा 28 और 32 दांत, तो देखिए कहीं पहले जो जॉ का साइज़ जो है बड़ा होता था, क्योंकि इंसान जो था वो रॉ फूड खाता था मतलब आवर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एगो। तो अभी क्या है कि अभी सब सॉफ्ट फूड पे आ गए हैं और सब खाना पका करके खाते हैं, तो आप 32 की अब ज़्यादा ज़रूरत रही नहीं है। तो ईयर बाय ईयर जो दांत जो हैं 28 होते जा रहे हैं, और जो बाकी के जो पीछे के दांत हैं अक्लदार जिसको हम कहते हैं, वो तो या तो इम्पैक्टेड रह जाते हैं बोन के अंदर ही और फिर वो प्रॉब्लम करते हैं, और ये एक नॉर्मल है। अगर 28 भी हैं तो कोई ऐसी प्रॉब्लम की बात नहीं है। और मेड्स के टाइमिंग जो है वही है, मॉर्निंग 9 o'clock से OPD स्टार्ट होता है, डेली होता है, आप किसी भी दिन आ सकते हैं वहाँ कर वर्किंग डेज पे।
2: इसमें मैं थोड़ा सा और बताना चाहूँगी कि सैटरडे को, शनिवार को भी खुला होता है अस्पताल, बट हाफ डे होता है, बाकी दिन ये 4 बजे तक चलता है, पर OPD टाइमिंग जनरली 9 से 1 ही होता है और सैटरडे को हाफ डे।
3: अच्छा, तो डॉक्टर साहब, रेखा जैसे कि इन्होंने इम्प्लांट के बारे में भी पूछा था, तो ये डेंटल इम्प्लांट, ब्रिज और डेंचर में क्या अंतर है और किन कंडीशंस में किया जाता है?
2: देखिए, दांतों को लगाने का, आप किसी आदमी का जब दांत निकल जाते हैं तो उसे हम आर्टिफिशियल दांतों से लगाते हैं, जिसे लगाने के अलग अलग तरीके होते हैं। सो कितने दांत निकले हैं, बाकी दांतों का क्या कंडीशन है, डिपेंडिंग अपॉन दैट हमारे पास बहुत से ऑप्शन होते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं डेंचर की बात कहूँ, तो निकालने लगाने वाला डेंचर सबसे पुराने समय से जो चला आ रहा है, जिसको हम 32 ही भी कहते हैं, तो एक दांत से लेके 32 दांत तक हम इससे रिप्लेस कर सकते हैं। ये पेशेंट को हर रोज़ निकालना होता है और लगाना होता है। उसके बाद अगर हम आए ब्रिज या क्राउन की जो हम बात करते हैं, तो अगर किसी का 1, 2 या मैक्सिमम 3 दांत तक निकले हैं तो हम उसको ब्रिज से रिप्लेस कर सकते हैं, जिसमें हम आसपास वाले दांतों से सपोर्ट लेके जो मिसिंग दांत हैं उसे लगाया जाता है और ये मुंह के अंदर फिक्स हो जाता है, पेशेंट को उसे निकालना नहीं पड़ता। तीसरी ऑप्शन आती है इम्प्लांट। सो अब इम्प्लांट जो ट्रीटमेंट है उसमें जब आपका असली दांत निकल गया, सो एक तरह से आप ये कहें कि हम उसका एक कृत्रिम तरीका, एक स्क्रू जैसा होता है टाइटेनियम का, जिसको हड्डी के अंदर लगा देते हैं। इट इज़ एज गुड एज या सिमिलर टू जो आपके दांत की जड़ होती है, उसके ऊपर जब इम्प्लांट हड्डी के साथ जुड़ जाता है तो उसके ऊपर फिर दांत बनाया जाता है। ये इम्प्लांट का जो ट्रीटमेंट है ये सभी दांतों को रिप्लेस करने के लिए भी यूज़ किया जा सकता है, जैसे मैंने 32 की बात कही, और ये एक दांत को रिप्लेस करने के लिए भी यूज़ किया जा सकता है, और इवन इम्प्लांट के साथ भी पूरा फिक्स भी हो सकता है और निकालने वाला दांत भी इम्प्लांट से सपोर्ट लेके बनाया जा सकता है। तो ये सिचुएशन पे, पेशेंट की ज़रूरत पे और बहुत से और फैक्टर्स हैं उन पे डिपेंड करता है कि किस तरह का ट्रीटमेंट पेशेंट के लिए चूज़ किया जाएगा।
3: तो कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जिसमें इम्प्लांट नहीं किया जा सकता, इस पर हम बात करेंगे, लेकिन फिलहाल एक कॉलर है हमारे साथ लाइन पर। हेलो,
4: नमस्कार जी।
3: नमस्कार जी, आपका नाम, आप कहाँ से कॉल कर रहे हैं?
4: नमस्कार जी, मैम को भी नमस्कार।
2: नमस्कार
4: जी, मैं यामिन भाई, रेडियो वाला
3: जी। बताइए, क्या प्रश्न है आपका
4: जी? मैं

0: हो मैम से जानना चाह रहा हूँ, जैसे कि हम पान गुटखा दूध कुछ भी नहीं खाते तब भी दांत पीछे से लाल ही रहते हैं जैसे कुछ लोगों, और एक ये जानना चाह रहा हूँ कि कुछ बच्चों के दांत टूट जाते हैं फिर वो आते ही नहीं है बड़े हो जाते हैं बच्चे, इसका भी क्या कारण है कोई बताए।
1: मैं इसका जवाब देती हूँ, अगर दो ही आपके सवाल हैं तो देखिए, अगर जो पान सुपारी कुछ तंबाकू नहीं खाते फिर भी आपने कहा लाल दांत, सो दांतों का रंग अमूमन लाल नहीं होता, तो कोई ना कोई एक्सटर्नल फैक्टर या कोई ना कोई कारण ज़रूर होगा, जैसे कि कई बार लाल दंत मंजन एक है जो, या तंबाकू वाले पेस्ट कुछ होते हैं जिसे पेशेंट यूज़ करते हैं, सो कई बार वो भी दांतों का डिस्कलरेशन कॉज कर देते हैं। इसके अलावा जब दांत की ऊपरी परत घिसने लगती है तो जो नीचे से परत निकल के आती है वो थोड़ा पीलेपन पे होती है, तो वो भी उस सिचुएशन में भी आपको ऐसा लगता है कि दांतों का रंग बदल गया है। और कुछ हिंदुस्तानी खान पान तरीके ऐसे होते हैं जो बहुत सारी तरह की स्टेनिंग कॉज कर सकते हैं, जैसे हमारे खाने में हल्दी बहुत होता है, चाय कॉफ़ी हम बहुत पीते हैं, तो इवन ये वाली चीज़ें भी दांतों की डिस्कलरेशन कॉज करती है। देन आपने दूसरा सवाल पूछा कि बच्चों के दांत टूटने के बाद नहीं आते, ऐसा हो सकता है कि दूध का दांत था और वो टूटा तो पक्का दांत नहीं आया, तो ये वाली चीज़ एक्सरे से कंफर्म किया जा सकता है क्योंकि इसके कई कारण हैं, कई सिचुएशंस में तो दांत बनता ही नहीं है, पक्का दांत बना ही नहीं तो वो कभी भी नहीं आएगा, बट कई सिचुएशन में ऐसे होता है कि वो हड्डी के अंदर टेढ़ा है या अगल बगल वाला दांत उसको ऊपर आने से रोक रहा है, तो अगर ऐसी सिचुएशन है तो कई बार हम उसे सर्जिकली या ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट से बाहर भी निकाल सकते हैं, इरप्ट करा सकते हैं। तो अगर ऐसा है कि बच्चे का दांत नहीं आया है दूध का दांत टूटने के बाद, तो आपको जाके डॉक्टर से उसकी जाँच करानी चाहिए कि उसका कारण क्या है।
2: जैसे कि कई बार होता है बच्चे खेल रहे हैं, खेलते खेलते दांत टूट गया, या कोई बड़े भी हैं वो बाइक पे जा रहे हैं या कहीं ट्रेवल कर रहे हैं, इंसिडेंट हो गया, दांत टूट गया, तो उसके लिए क्या ट्रीटमेंट है, उसको कैसे ट्रीट किया जा सकता है?
3: देखिए बहुत सारे स्पोर्ट्स भी हैं और एक्सीडेंट में भी हमारे पास ऐसे पेशेंट्स आते हैं जिनका कि दांत या तो टूट जाता है या पूरा का पूरा ही दांत उखड़ के बाहर आ जाता है। तो कोई भी अगर पार्ट आपका दांत का टूट गया है या दांत उखड़ के बाहर आ गया है तो सबसे पहली केयर तो ये करनी है, उसको ट्रांसफ़र करना है उस टूथ को। तो सबसे बेस्ट मीडियम जो है ट्रांसफ़र करने के लिए वो है मिल्क, कोल्ड मिल्क। कोई छोटा सा कप लीजिए, उसमें मिल्क कहीं भी आसपास से लेकर के उसके अंदर स्टोर करके आप नियरेस्ट डेंटिस्ट को आप अप्रोच करिए। तो अगर टूथ बाहर रहता है ओरल कैविटी से तो विदिन 30 मिनट्स उसके जो लिगामेंट हैं वो डिजनरेट होना शुरू कर देते हैं, तो उसके चांसेस ऑफ सर्वाइवल जो हैं बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। तो मिल्क जो है बेस्ट स्टोरेज मीडियम है, हर स्कूल में या कॉलेज में जहाँ भी स्पोर्ट्स खेला जाता है या घर के आसपास तो वहाँ पर मिल्क होता ही है नॉर्मली, तो उसमें स्टोर करके आप नियरेस्ट डेंटिस्ट को विदिन 1 आवर अगर आप रीच करते हैं तो चांसेस हैं कि हम उस टूथ को दोबारा से रीइम्प्लांट करके उसको जो है 10 डेज के लिए वायर से फिक्स कर देते हैं ताकि वो दोबारा से बॉडी उसको एक्सेप्ट कर लेती है। बट ऐसा हम जनरली परमानेंट टीथ में करते हैं, जो डेसिड्यूस टीथ होते हैं जो मिल्क टीथ होते हैं उनको हम रीइम्प्लांट नहीं करते हैं। इसके अलावा जैसे कोई दांत टूट गया है, फ्रैक्चर हो गया है, तो आजकल टेक्निक है कि हम फ्रैक्चर पोर्शन को भी मटेरियल के साथ फिक्स करके और अगर उसमें रूट कैनाल की ज़रूरत पड़ती है, RCT करने की ज़रूरत पड़ती है, एक्सरे कर करके हम देखते हैं, तो वो भी करके उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो तुरंत डेंटिस्ट के पास आना चाहिए।
2: एक कॉलर और हमारे साथ लाइन पर, हेलो।
4: नमस्ते मैम।
2: नमस्ते, आपका नाम, आप कहाँ से कॉल कर रहे हैं?
4: नमस्कार डॉक्टर साहब, मैं यूपी गाजियाबाद से उमेश बोल रहा हूँ।
2: जी बताइए उमेश जी, क्या प्रश्न है आपका?
4: मेरा डॉक्टर साहब से ये प्रश्न है कि ब्रश करते समय कभी कभी मसूड़े में सूजन आ जाती है, तो डॉक्टर साहब एक दो खुराक देते चली जाती है, क्या इससे अलग भी कोई और टेस्ट करवाना चाहिए कि अंदर से क्या बीमारी है, ये पूछना चाह रहा था।
1: क्या आप अपना सवाल एक बार रिपीट करेंगे? आपने कहा मसूड़े में सूजन आ जाती है, उसके बाद आपने क्या कहा?
4: ब्रश करने पर कभी कभी सूजन आ जाती है, ठीक है, तो डेंटल डॉक्टर के पास जाते हैं तो एक दो खुराक दे देते हैं और सही हो जाती है।
1: ओके ओके।
4: इससे आगे क्या कौन सा टेस्ट करवाना चाहिए जिससे पता पड़े कि क्यों हो जाती है?
1: देखिए अगर आपको एक ही मसूड़े पे बार बार सूजन आ रही है एक ही जगह पे, तो फिर इसका मतलब उसमें कोई ना कोई तरह का इन्फेक्शन है जो बार बार मसूड़े की सूजन कॉज कर रहा है। कई बार मसूड़े के अंदर या हड्डी के अंदर पस पड़ जाता है जिसको हम एब्सेस बोलते हैं। जो आपने कहा कि ब्रश करते हुए, तो वो कई बार तो ब्रश करते हुए अगर मान लीजिए ब्रश जोर से लग गया या ऐसा हुआ तो उससे भी हो सकता है, इसलिए मैंने कहा कि अगर एक ही मसूड़े पे बार बार आ रहा है और सूजन दिख रही है, बड़ी सूजन दिख रही है जो दवा देने से ठीक हो जाती है, इन ऑल प्रोबेबिलिटी आपको एंटीबायोटिक दिया गया होगा तो उससे वो थोड़ा सा ठीक हो जाता है पर वो पूरी तरह नहीं जाएगा।

0: जब तक कि उसका जो कारण है वो नहीं जाना जाएगा और उसको नहीं हटाया जाएगा। तो उस दांत में इन्फेक्शन है, इसका मतलब या तो मसूड़े में या नीचे हड्डी में। तो आपको डॉक्टर के पास जाके सबसे पहले उसकी क्लिनिकली जांच करानी चाहिए और एक छोटा एक्सरे कराना चाहिए जिस मसूड़े के आसपास वो सूजन आती है उस एरिया का, सो दैट हमें उसका कारण पता चल सके और अकॉर्डिंगली उसका ट्रीटमेंट किया जा सके।
1: एक मैसेज है हमारे पास, ये लिखते हैं, गुड आफ्टरनून डॉक्टर जी, मोहम्मद इम्तियाज़, जवाहर कैंप, कीर्ति नगर, न्यू दिल्ली। मेरी एज 40 है और मैं किसी भी तरह का स्मोकिंग, पान मसाला नहीं करता, मगर पिछले 3 महीने से राइट साइड लास्ट के नीचे वाले टीथ में हल्का दर्द और हल्का काला है सेंटर में हो रहा है, और लास्ट के चारों टीथ की सफाई में दिक्कत हो रही है, तो कैसे हाइजीन करूँ प्लीज़ बताएं। 2 बार टीथ की सफाई भी करवा चुका हूँ हॉस्पिटल में।
2: देखिए, अगर आपके दांत के ऊपर स्टेन्स हैं, वो डार्क हो रहे हैं, तो हो सकता है कि वो एक कैविटी की शुरुआत हो, कैविटी हो रहा हो आपके दांत में, तो उसका चेकअप कराना होगा। अगर उसमें कैविटी है तो उसको क्लीन करके उस कैविटी को उसके अंदर फिलिंग मटेरियल या परमानेंट रिस्टोरेशन उसके अंदर करना होगा। और अगर मुंह खोलने में अगर आपको दिक्कत हो रही है तो आपको चेकअप कराना चाहिए, कहीं उसमें विजडम टूथ तो नहीं है जो इम्पेक्टेड है, जो बार बार वहाँ पर इन्फेक्शन कॉज कर रहा है, तो आपको चेक नियरेस्ट डेंटिस्ट के पास जा करके चेकअप कराइए और आप उसका समाधान कराइए।
1: एक और मैसेज हमारे पास ही लिखते हैं, एंकर मैम और डॉक्टर गुप्ता, डॉक्टर सिंह को गुड आफ्टरनून। जहाँ तक मिसिंग दांत लगाने की बात है तो ये काफ़ी महंगा है, तो इसकी एक बार इसकी कितनी कॉस्ट है, क्या इसको आम आदमी अफोर्ड कर सकता है, और इसको कितना पेनफुल है ये ट्रीटमेंट, ये बताएं। नरदेव सिंह चौहान, कोटद्वार, उत्तराखंड।
0: देव जी, मैंने थोड़ी देर पहले अभी अलग अलग तरीके बताए थे दांत को लगाने के, तो ऐसा नहीं है कि सारे ट्रीटमेंट महंगे होते हैं। अफोर्डेबल अगर हम बात करें तो बहुत से ऐसे हैं इलाज जो काफ़ी अफोर्डेबल हैं, और ज़्यादातर सरकारी अस्पतालों में वो या तो फ्री या बिल्कुल बहुत ही कम चार्जेस के साथ वो ट्रीटमेंट किया जाता है, तो आप बिल्कुल उसे अफोर्ड कर सकते हैं। अब सबसे महंगा जो अगर हम बात करें, शायद आप वही पूछना चाह रहे, डेंटल इम्प्लांट की कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा होती है क्योंकि उसे बनाने का तरीका, उसका मटेरियल जो है वो कॉस्टली है। सो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि दांत निकला है तो हमें इम्प्लांट ही लगाना है, और भी बहुत सारे तरीके उसे लगाने के जो इक्वली अच्छे हैं और आपको खाने में, बोलने में, और आपकी जो भी दांत मिसिंग होने के कारण प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन कितने दांत मिसिंग है तो ही हम बता सकते हैं कि कितना खर्चा होगा और कौन सा ट्रीटमेंट आपके लिए बेस्ट है।
1: जैसे कि हम पहले बात कर रहे थे कि डेंटल इम्प्लांट किन कंडीशंस में नहीं किया जा सकता, तो उसके बारे में हमें बताएं।
0: जी, आजकल बिकॉज इंटरनेट का ज़माना है तो ज़्यादातर मरीज़ हमारे पास इस उम्मीद के साथ आते हैं कि हमें इम्प्लांट लगा दिया जाए। सो अभी अभी जैसे मैंने हरदेव जी को कहा कि आपका पर्पस इम्प्लांट लगाना नहीं है, आपका पर्पस या डेंटिस्ट का पर्पस दांत लगाना है जो मिसिंग है। अब या मैं उसे इम्प्लांट की मदद से लगाऊँ, बाकी दांतों की मदद से लगाऊँ, कि मसूड़ों की मदद से लगाऊँ, राइट? सो बहुत सी ऐसी सिचुएशन है जिसमें इम्प्लांट नहीं किया जा सकता। सबसे पहला तो हड्डी, जहाँ से दांत निकला है, इम्प्लांट डालने के लिए हमें एक हेल्दी बोन जो कि वॉल्यूम और हाइट दोनों चीज़ों में अच्छी हो, मतलब एक अच्छी क्वांटिटी की हड्डी होना चाहिए जो उस स्क्रू को या इम्प्लांट को रिसीव कर सके। तो अगर हड्डी ही नहीं है, घिस चुकी है या हाइट में छोटा है, या कई बार होते हैं बहुत से नर्व्स वहाँ पे हैं जो उस एरिया में पास है तो इसलिए हम, या साइनस है, ऐसे कुछ स्ट्रक्चर्स है, ब्लड वेसल्स हैं, तो जिसके कारण वहाँ इम्प्लांट नहीं डाला जा सकता। और इसके अलावा दूसरा कारण होता है सिस्टमिक डिजीज़, जैसे कि किसी को अगर मान लीजिए शुगर है, ब्लड शुगर जो अनकंट्रोल्ड है, या किसी और तरह की बीमारियां हैं, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, सो इन सिचुएशंस में, बहुत सी ऐसी और सिचुएशन है जो सबका नाम मैं नहीं ले रही, उस सिचुएशन में हम डेंटल इम्प्लांट ट्रीटमेंट अवॉइड करते हैं। एक और प्रॉब्लम कॉमन, जैसे ब्लीडिंग प्रॉब्लम्स, कई लोग ऐसी दवाइयाँ लेते हैं जिसके कारण ब्लीडिंग ज़्यादा होती है, ब्लड थिनर्स होते हैं जो बहुत कॉमन है बहुत सी बीमारियों में, तो ऐसे पेशेंट्स में हमें बहुत सोच समझ के इम्प्लांट का ट्रीटमेंट करना होता है।
1: बातें हम इस पर और भी करेंगे, लेकिन उससे पहले सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: कट जाता है मुस्कुराते हुए, बस अपनों का साथ ज़रूरी है। आज रेडियो डॉक्टर में हम बात करें डिफेंडिंग योर स्माइल, कि अपनी मुस्कान को कैसे बनाए रखें और अपने कैसे दांतों को सुरक्षित रखें। तो डॉक्टर रेखा, हम जैसे कि बात कर रहे थे डेंटल इम्प्लांट पर, तो ये तो आपने हमें बताया कि कब करा सकते हैं, कैसे करा सकते हैं। अगर कोई डेंटल इम्प्लांट नहीं करा सकते कुछ कंडीशंस में, तो उनके लिए क्या ऑप्शन है?
1: उनके लिए डेंचर्स, जो कन्वेंशनल निकालने लगाने वाले डेंचर, वो लगाए जा सकते हैं, जो सबसे सिंपल प्रोसीजर है। और अगर कुछ ही दांत मिसिंग है तो हम क्राउन एंड ब्रिज की हेल्प से, जिसमें आसपास वाले दांतों से सपोर्ट लेके हम दांत लगाते हैं, वो भी किया जा सकता है। एक चीज़ मैं यहाँ और मेंशन करूँगी, जैसे कई बार होता है कि पेशेंट्स के 3-4 दांत बचे हैं, ज़्यादातर निकल चुके हैं, तो ऐसी कंडीशन में एक ऑप्शन होती है जिसको हम आजकल नेचुरल इम्प्लांट, में अपने पेशेंट्स को बोलती हूँ कि ये आपके नेचुरल इम्प्लांट्स हैं, अगर वो दांत हेल्दी हैं तो उनको हम बचा सकते हैं, और उसके ऊपर डेंचर लग जाता है जिसको कि ओवर डेंचर बोलते हैं। तो ये कुछ एक ऑप्शंस हैं जो इम्प्लांट के बिना भी की जा सकती है।
0: एक मैसेज हमारे पास, ये लिखते हैं, एक दिन में कितनी बार ब्रश करना अच्छा होता है टीथ की हेल्थ के लिए? मोहित काम्बोज, विलेज जोधा बंस, सहारनपुर, यूपी। जी डॉक्टर हरमीत बताइए।
2: हाँ जी मोहित जी, ब्रश जो है दिन में 2 बार करें, रूल ऑफ 2 बोलते हैं इसको, ब्रश दिन में 2 बार करना चाहिए और 2 मिनट के लिए करना चाहिए, और हर साल 2 बार ही डेंटिस्ट के पास विजिट करना चाहिए। ये तो रूल ऑफ 2 है। और ब्रश करने के लिए अलग अलग टेक्निक होती है, वो हम एज, पेशेंट की एज देख करके और उसका जनरल कंडीशन देख करके बताते हैं किस किस तरह से ब्रश टेक्निक है, बट जनरली हम मॉडिफाइड बास टेक्निक जनरली हम एडवोकेट करते हैं कि पेशेंट्स को इसमें क्या है, ब्रश के ब्रिसल्स जो हैं 45 डिग्री एंगल्स पे रखना होता है गम्स पे, और उसको वाइब्रेटरी मोशन से स्वीप मोशन के साथ डाउन मूव करके उसको क्लीन करना होता है टीथ के सर्फेसिस को। आप वैसे भी इसको गूगल पे सर्च करके मॉडिफाइड बास टेक्निक आप सर्च कर सकते हो, आपको वीडियोस मिल जाएंगे किस तरह से करना चाहिए। और छोटे बच्चों में जनरली हम उसको चार्टर टेक्निक बोलते हैं, उसमें जो है सर्कुलर मोशन के साथ बच्चे को टीथ को क्लीन करना चाहिए। और रही टूथपेस्ट के बाद, टूथपेस्ट जो है फ्लोरीडेटेड होना चाहिए, फ्लोराइड जो है बहुत इंपॉर्टेंट है टीथ के एनेमल की सेफ्टी के लिए, जो एनेमल जो है हाइड्रोक्सी एपेटाइट से बना होता है, और जो फ्लोराइड जब हम यूज़ करते हैं वो हाइड्रोक्सी एपेटाइट को फ्लोरो एपेटाइट में कन्वर्ट करता है, विच इज़ मोर स्ट्रॉन्गर देन नेचुरल एनेमल। तो इसलिए जो है हमेशा फ्लोराइड वाला टूथपेस्ट यूज़ करना चाहिए, और उसकी कंसंट्रेशन अलग अलग टूथपेस्ट में अलग अलग होती है। तो जनरली हम जो बच्चे न्यू बॉर्न हैं, नए अभी टीथ आए हैं, नॉर्मली 10 महीने के आसपास छोटे बच्चों में टीथ आ जाते हैं, तो हम जनरली कहते हैं 18 महीने की उम्र तक बच्चे को ब्रश जो है सुपर सॉफ्ट ब्रश करना चाहिए, और बिना टूथपेस्ट के कर सकते हैं। 18 महीने से 6 साल की एज तक के बच्चों को 500 ppm का टूथपेस्ट आता है, 500 ppm जिसके अंदर फ्लोराइड होता है वो यूज़ करना चाहिए, और उसके बाद 6 साल से ऊपर सभी को एडल्ट टूथपेस्ट यूज़ कर सकते हैं। ये है नॉर्मली, अगर कोई ज़्यादा केरीज प्रोन है जिसमें ज़्यादा कैविटीज़ होती हैं तो उसके लिए हम मोर फ्रीक्वेंट या हाई फ्लोराइड कंसंट्रेशन का भी टूथपेस्ट एडवाइस करते हैं, बट वो क्लिनिकली पेशेंट को देखने के बाद ही। और ब्रश करने से एक बात बताऊं मैं, उससे सिर्फ 60% ऑफ द टीथ सर्फेसिस जो हैं क्लीन होते हैं, तो आपको कंप्लीट क्लीनिंग के लिए फ्लॉस करना मस्ट है, फ्लॉस इज मैंडेटरी, तो फ्लॉस करना जरूर कभी ना भूलें, ब्रश करने के साथ साथ फ्लॉस भी करना है, जो इन बिटवीन सर्फेसिस हैं टीथ के तो फ्लॉस से उसको जरूर क्लीन करना है, और रेगुलर माउथ वॉश जो जनरली लोग यूज़ करते हैं वो नहीं यूज़ करना चाहिए जब तक कि डॉक्टर की सलाह ना हो। और दूसरा माउथ वॉश जो इंडिया में मोस्ट पॉपुलर है, वो गर्म पानी में हल्का सा नमक डाल के उससे रिंसेस कर सकते हैं, डेट इज़ द बेस्ट माउथ वॉश फॉर इंडिया।
0: एक कॉलर है हमारे साथ लाइन पर, हेलो।
3: जी मैम नमस्कार।
0: नमस्कार जी, आपका नाम, आप कहाँ से कॉल कर रहे हैं?
3: जी मैम मेरा नाम सोनू पासवान है, मैं दिल्ली आज़ादपुर से बात कर रहा हूँ।
0: जी बताइए क्या प्रश्न है आपका?
3: मैम मैं ये जानना चाहता हूँ, मेरे राइट साइड में दांत के ऊपर वाले दांत के राइट साइड के सेकंड दांत में एक अजीब सा उठा हुआ सा घाव टाइप का है या क्या है नहीं पता, लेकिन उसमें दर्द नहीं होता लेकिन वो उठा हुआ सा है, प्रॉब्लम क्रिएट करता है वो, कभी कभी ब्रश करते हैं तो सही से सफाई नहीं हो पाती उस दांत की, या जो भी कह लें बिल्कुल एक जिसे हम लोग अगर शुद्ध देशी भाषा में कहें तो खोड़ी टाइप का निकला हुआ है, तो वो कैसे ठीक होगा, उसके लिए क्या करना चाहिए?
1: जो

0: आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: हंसते हंसते कट जाए रास्ते, हर तरह से रास्ते

0: जी आपने ये बोला, एक बार बताएं क्या ये दांत के ऊपर है कि मसूड़े के ऊपर है?
1: दांत के ऊपर है।
0: तो ये नॉर्मल है, आप कह रहे कि उसमें दर्द नहीं होता और ये बहुत टाइम से वैसा ही बना हुआ है, ना घटा है ना बड़ा है, उसके आसपास कोई सेंसिटिविटी नहीं है, कोई कैविटी नहीं है। तो ये दांत जब बन रहे होते हैं, इनामल डिपॉजिट हो रहा है, उसके ऊपर मिनरल डिपॉजिट होते हैं, तो वो कई बार अलग अलग शेप में डिपॉजिट होते हैं।
1: नहीं
0: और उस
1: लेकिन मैम ये पहले नहीं था, ये कुछ कुछ ही सालों से, कुछ सालों से ये है, ये अचानक हुआ है। पहले कुछ हल्का सा दबा था दांत पर, फिर अचानक ये धीरे धीरे उठने लगा।
0: दांत खुद से नहीं उठता है जनरली, मगर देखिए दो चीज़ें जो मैं सिर्फ सुन के इमेजिन कर सकती हूँ। एक तो ये कि हो सकता है उसके ऊपर कुछ कैलकुलस डिपॉजिट हो, कई बार वो
1: बिल्कुल
0: इतना हार्ड हो जाता है कि वो दांत का हिस्सा ही लगने लगता है अगर उसको समय पे
1: जी
0: साफ ना कराया जाए। क्योंकि दांत के ऊपर एक बार जब दांत इरप्ट हो गया, बन गया, तो उसके ऊपर कुछ भी उसकी शेप वैसे चेंज होना, गड्ढा हो सकता है पर उठेगा नहीं। तो अगर आपको वो तकलीफ दे रहा है और अभी कुछ टाइम से आपने नोट करना शुरू किया है, तो प्लीज़ एक बार किसी भी डेंटिस्ट के पास जाके उसकी जांच कराएं। पर जहाँ तक मुझे आपके सिम्टम से समझ आ रहा है, कुछ घबराने वाला तो नहीं होगा, बिकॉज़ कोई दर्द नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट फिर भी एक बार आप उसे जाके ज़रूर से दिखाएं।
1: नहीं, लेकिन कई बार ठंडा पानी या कोई भी गर्म चीज हल्की फुल्की लग जाती है ना, तो
0: हाँ
1: उसमें
0: जी,
1: थोड़ा लगता है।
0: हाँ तो फिर आप दिखा लीजिए। क्योंकि उठने का कारण, अगर देखिए ठंडा गर्म जैसे आपने कहा लगता है, तो वो ना कई बार दांतों में कीड़ा जिसमें लगा होता है उसमें ठंडा गर्म लगना शुरू हो जाता है, या दांत ऊपर से कई बार घिस जाते हैं जिसके बहुत से कारण होते हैं। तो ऊपरी परत जो सख्त परत होती है जिसको इनामल कहते हैं, उसके घिसने के बाद भी ठंडा गर्म लगना शुरू हो जाता है। बट जो आप क्लिनिकल अपियरेंस बता रहे हैं वो आप उल्टी बता रहे हैं, इन सब चीज़ों में कम होगा दांत, बढ़ेगा नहीं। सो अगर ये बढ़ रहा है कोई भी एक हिस्सा, सो मेरे को लगता है क्वाइट पॉसिबल कि वो टार्टर डिपॉजिट या कैलकुलस डिपॉजिट हो सकता है।
1: मैंने एक प्राइवेट डॉक्टर को दिखाया था इस चीज के लिए, तो उन्होंने बोला कि इसमें मसाला भरा नहीं जा सकता, अगर इसमें मसाला भरा जाएगा तो दर्द होगा, आप इसको बस नॉर्मली सफाई करते रहें, यह अपने आप ठीक हो जाएगा, या फिर अगर आपको, अगर मुझसे वो नहीं लग रहा है, तो आप किसी अच्छे डॉक्टर को और दिखा
0: आप
1: सकते
0: किसी
1: हैं।
0: और को ज़रूर से दिखा लें। मसाला हम हर दांत में भर सकते हैं, पर सिर्फ इतना होता है कि जब दांत में जो केरीज है वो गहरी होती है, पल्प तक चली जाती है, तो फिर सिंपल मसाला भरने से उसमें दर्द बढ़ सकता है। ऐसी सिचुएशन में कई बार रूट कैनाल कराना पड़ता है और उसके बाद मसाला भरा जाता है। मसाला जो मसूड़े के बीच में जगह बन जाती है, उस जगह पे हम नहीं भरते कभी भी, वो हम मना करते हैं कि उस स्पेस को हम मसाला भर के ख़त्म नहीं कर सकते।
2: एक मैसेज है हमारे पास, जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे ब्रशिंग टेक्निक पे, तो उन्होंने लिखा है, यह है ज्योति का, ये लिखते हैं, क्या कभी कभी एडल्ट टूथपेस्ट यूज़ कर सकते हैं बच्चे? मेरी बेटी 2.5 साल की है।
3: नहीं, 2.5 साल के बच्चे में जनरली जो है हम किड्स टूथपेस्ट एडवाइस करते हैं, जिसमें 500 से 550 PPM फ्लोराइड होता है, और बच्चों में तभी हम एडवाइस करते हैं एडल्ट टूथपेस्ट, अगर उसमें बहुत ज़्यादा कैविटीज़ हैं, बहुत ज़्यादा केरीज प्रोन है, और वो भी पेरेंट्स की सुपरविजन में एडल्ट टूथपेस्ट यूज़ करना है और उसको इमिजिएटली स्पिट करना होता है, बट अपने आप आपको एडल्ट टूथपेस्ट बच्चे को नहीं देना चाहिए।
0: मैं इसमें थोड़ा सा कुछ और एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि देखिए बच्चे और अडल्ट का अलग अलग क्यों होता है टूथपेस्ट, क्योंकि बच्चे कई बार उसको थूक नहीं पाते, स्वेलो कर लेते हैं। तो जैसे डॉक्टर हरमीत ने कहा, अगर फ्लोराइड कंटेंट ज़्यादा है और बच्चा उसे स्वेलो कर लेता है, ठीक से थूक नहीं पा रहा, तो वो फिर उसको कुछ शारीरिक प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। बट अगर आपका टूथपेस्ट उसमें फ्लोराइड नहीं है, नॉर्मल है, जैसे बड़े लोग भी कई बार बबल गम पेस्ट कोलगेट के या बहुत सारे कंपनीज के आते हैं जिसमें अलग अलग फ्लेवर वाले, बट अगर उसमें फ्लोराइड या कोई मेडिकेशन नहीं है और आपका बच्चा 2.5 साल का है और अच्छे से थूक सकता है, स्वेलो नहीं कर रहा है, तो आप छोटा अमाउंट, बहुत छोटा, जैसे हम जिसे कहते हैं पी शेप वाला, मतलब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी नहीं यूज़ करना, छोटा सा उसको दे सकते हैं।
2: एक और मैसेज है हमारे पास, ये लिखते हैं, डॉक्टर नमस्ते सर, मेरा सवाल ये है कि बच्चों के दांत जो बाहर की तरफ आ जाते हैं सर, इसका कारण क्या है और इससे कैसे बचें? और एक सवाल ये है कि मेरे दांत में कभी कभी ठंडा पानी लगता है, ऐसा क्यों और इसका क्या उपाय है बताएं प्लीज़। आसिफ सैफी फ्रॉम मेरठ।
0: देखिए बच्चों के दांत बाहर आने में, बच्चे की एज के बारे में अगर हम बात करें, क्योंकि दांत बाहर आने के बहुत से कारण होते हैं। अगर बच्चा छोटा है, कि जब दूध का दांत टूटा और पक्का दांत आया, तो कई बार ऐसा लगता है कि दांत बाहर आ गए, क्योंकि दूध

0: के दांत छोटे होते हैं साइज में, और जो आपके परमानेंट टीथ होते हैं वो बड़े होते हैं, तो उसमें फर्क नजर आने लगता है। ठीक है, एक कारण ये हो सकता है। एक है कि दांत इरप्ट होने के बाद धीरे धीरे बाहर आने शुरू हो गए, तो वो कई बार कुछ हैबिट्स के कारण भी ऐसा हो जाता है, जैसे कि कई लोगों को, जिसे हम टंग थ्रस्टिंग कहते हैं, कि जीभ से दांतों को बाहर पुश करने की आदत होती है, या कई बार लोग बच्चे मुंह से जो सांस लेते हैं, माउथ ब्रीदर्स, तो उसमें कई बार दांतों की पोजीशन चेंज हो जाती है। तीसरा सबसे कॉमन कारण है अगर पेरोडोंटल प्रॉब्लम, जो मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि छोटे बच्चों में इतना जल्दी नहीं होगा, बट अगर मान लीजिए सफाई न रखी जाए, मसूड़े की प्रॉब्लम होके वो बढ़ती जाती है, हड्डी घिसने लगती है, तो उस सिचुएशन में दांत अपनी जगह से हिल के थोड़ा सा अपनी पोजीशन चेंज कर लेते हैं या बाहर की तरफ आने लगते हैं। तो ये कुछ कारण हैं। और कई बार जब दूध से, मैंने कहा दूध के दांत से पक्के दांत पे जाते हैं, सो कई बार देखा गया कि दूध का दांत नहीं टूटता और पक्का दांत आना शुरू हो जाता है, तो ऐसी सिचुएशन में वो पक्का दांत कहीं से भी आ सकता है, और ज़्यादातर वो बाहर की तरफ निकल के आता है। तो कभी भी ऐसा अगर देखें, इसकी प्रिवेंशन की अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर सिचुएशन की, तो आपको ध्यान रखना होगा जब आपके बच्चे के दूध के दांत टूट रहे हैं, तो देखिए अगर पक्के दांत नज़र आना शुरू हो गया और दूध का दांत वहीं पड़ा है, तो कई बार हमें उसे डॉक्टर के पास ले जाके दूध के दांत को निकलवाना पड़ता है, ताकि पक्का दांत अपनी सही जगह पर आ सके, बाहर की तरफ ना आए।
1: एक कॉलर है हमारे साथ लाइन पर। हेलो।
2: हाँ जी मैम।
1: नमस्कार जी, आपका नाम, आप कहाँ से कॉल कर रहे हैं?
2: नमस्कार मैम, और रविंद्र भट्ट दिल्ली से बोल रहा था, नरेना से।
1: अच्छा जी, बताइए क्या प्रश्न है आपका?
2: प्रश्न ये है मैम कि जैसे 4-5 सालों से मैं खाना चबाते समय दोनों साइड के चौबर से गाल के मसूड़े कट जा, गाल के मतलब मांस कट जाते थे। हेलो।
1: हाँ जी बताइए।
2: तो मैंने दांत को घिसवा दिया, दांत घिसवाने के बाद थोड़ा सा नुकीला हो गया, तो गाल में रगड़ पड़ता है खाना चबाते समय अंदर साइड में, तो लालिमा सा बना हुआ, उससे कोई दिक्कत नहीं?
3: हाँ जी जरूर दिक्कत है उसके साथ। अगर आपका चीक बाइट बोलते हैं इसको, कि अगर आपके लास्ट वाले टीथ जो हैं, जनरली ये विजडम टीथ जो होते हैं अक्लदार, उसके साथ एसोसिएटेड होता है, और आपके चीक को बाइट करता है, तो उसकी वजह से अगर उसमें अल्सर बन जाता है, और कोई भी अल्सर जो है 2 हफ्ते से ज़्यादा है, 2 से 3 हफ्ते, तो उसका जो है बायोप्सी होना मस्ट होता है, ये गाइडलाइंस हैं। तो आपको तुरंत नियर बाय डॉक्टर के पास जाना चाहिए, और अगर वहाँ पर कुछ रेडनेस या अल्सर बन रहा है तो उसका चेकअप कराइए, और अगर वो रिपीटेडली टूथ ट्रोमा कॉज कर रहा है और विजडम टीथ हैं, तो ऐसे केस में हम एक्सरे करा कर के साधारण सा तो उस टूथ को रिमूव भी करते हैं। वेस्टिजियल जो विजडम टीथ होते हैं वो वेस्टिजियल होते हैं, मतलब एक्स्ट्रा होते हैं, उसकी हमारे को ज़रूरत भी कई बार नहीं होती, बाकी वो आपको क्लिनिकली देखकर ही बता सकते हैं कि इसका कारण क्या है इसका।
2: जी डॉक्टर साहब, मैं एक बार दिखाया था, तो ये बीच बीच में क्या होता है 15-20 दिनों सही हो जाता है, जैसे नेचुरली होता है वैसे हो जाता है, और कभी कभी हार्ड चीज़ खाने की वजह से बाद में ऐसे लालिमा उसकी बन जाती है।
3: हाँ, तो अगर बार बार चीक बाइट हो रहा है आपको, तो आपको इसको चेकअप करा करके ट्रीटमेंट कराना होगा, चाहे और दांत को घिसना हो या दांत को निकालना हो। बाकी अगर अल्सर बना हुआ है चीक के ऊपर, वो एक खतरनाक साइन है।
2: नहीं सर, अभी तो फिलहाल 1-1.5 महीने से तो नॉर्मल है, एकदम सही हो।
3: ठीक है, हाँ तो फिर आप चेकअप कराइए, है ना।
1: डॉक्टर साहब, जैसे कि हम बात करें तो ओरल हाइजीन की, आपने अभी बताया माउथ अल्सर के बारे में, तो ये माउथ अल्सर क्या है और किस तरह के होते हैं और कैसे इनसे प्रिवेंट किया जा सकता है?
3: जनरली अल्सर जो है, मोस्ट कॉमन जो है एप्थस अल्सर होते हैं, वो कॉमनली होते रहते हैं जनरली, और वो उसका मेन कारण होता है स्ट्रेस की वजह से हो जाता है, नींद पूरी ना होने की वजह से एप्थस अल्सर हो जाते हैं, और इसके अलावा कोई डेफिशिएंसीज है, बी कम्प्लेक्स की डेफिशिएंसी, उसके वजह से हो जाता है, तो उसको तो एप्थस अल्सर बोलते हैं। वो नॉर्मली 3-5 डेज में हील हो जाते हैं, तो उसके लिए हम कुछ मेडिकेशंस प्रिस्क्राइब करते हैं, माउथ वाश या जेल, तो उससे पेन रिलीफ हो जाता है, अल्सर हील हो जाते हैं। और इसके अलावा कुछ अल्सर्स होते हैं जो फीवर के साथ एसोसिएटेड होते हैं, जैसे कि हर्पिस इन्फेक्शन, हर्पिस सिंप्लेक्स वायरस इन्फेक्शन होता है, उससे पहले वेसिकल बनता है, फिर उसमें से फ्लूइड निकलता है, वहाँ पर अल्सर बन जाता है, वो फिर इन्फेक्शियस होता है। और इसके अलावा और भी अल्सर होते हैं, जैसे ट्रोमेटिक अल्सर है, कोई शार्प टूथ है, या कोई प्रोस्थेसिस है जो इल फिटिंग है, उसकी वजह से जो है एक अल्सर बन जाता है, जिसको हम ट्रोमेटिक अल्सर बोलते हैं। तो अगर कोई भी, अगर बॉडी में कोई भी अल्सर है मुंह के अंदर, तो अगर 2 से 3 हफ्ते से ज़्यादा है, तो गाइडलाइंस हैं इसके लिए कि उसका बायोप्सी होना मस्ट है, तो उसका बायोप्सी करके रूल आउट करना है कि कहीं वो कैंसर की स्टेज में तो नहीं है।

0: कैंसर की तरफ जा रहा है तो उसका इमीडिएटली ट्रीटमेंट होना चाहिए।
1: जी डॉक्टर साहब, ये तो आपने बताया। एक मैसेज भी हमारे पास आया है, ये लिखते हैं, नमस्ते जी, दांतों के बीच में गैप है, खाना फंसता है, क्या करें?
2: दांतों के बीच में गैप नया आया है या पहले से है ये आपको बताना होगा। देखिए, कुछ जब हम दांत इरप्शन की, अभी जैसे दूध के दांत से पक्के दांत पे जाने की बात कर रहे थे, कई बार क्या होता है, आपका जबड़े का साइज़ बड़ा होता है, दांत का साइज़ छोटा होता है, तो ऐसी सिचुएशन में दांतों के बीच में गैप दिखता है। वो किसी एक जगह भी हो सकता है और मल्टीपल दांतों के बीच भी हो सकता है, तो वो भी ट्रीट किया जा सकता है। और जो आप जैसे कह रहे हैं कि खाना फंसता है, दूसरा कारण उसका है कि अगर कीड़ा लग गया है, दांतों का कांटेक्ट आपस में ब्रेक हो गया, उसके बीच में जगह बन गई और अब वहाँ पे खाना फंस रहा है, तो अब देख के कॉज क्या है, कीड़े के कारण खाना फंस रहा है तो हम फिलिंग कर सकते हैं। और अगर वो नेचुरल गैप था, दांत इरप्शन के साथ ही आया, तो उसके लिए भी हमारे पास ब्रेसिस का ट्रीटमेंट है, ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट, या कई बार कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट की उस दांत के ऊपर दांत के रंग की फिलिंग करके उस गैप को हम भर सकते हैं।
1: एक और मैसेज हमारे पास, ये लिख है रविंद्र पाठक, आशा पाठक फ्रॉम नीदरलैंड, वेरी रिस्पेक्टेड शिल्पा मैम जी एंड डॉक्टर मैम जी, डॉक्टर सर जी, आपको हमारा प्यार भरा नमस्कार जी। नमस्कार।
2: नमस्कार।
1: हमारा प्रश्न है कि मैं आशा डायबिटिक पेशेंट हूँ, क्या इस सिचुएशन में दांतों पर भी कुछ गलत प्रभाव हो सकता है? इस हालत में क्या सावधानी बरतनी चाहिए? वेरी थैंक्स एंड वेरी रिगार्ड्स।
2: देखिए, अगर आप डायबिटिक हैं और वो कंट्रोल में है तो जनरली कोई प्रॉब्लम नहीं होता, पर डायबिटिक पेशेंट में दांतों के ऊपर नहीं पर मसूड़ों के ऊपर और हड्डी के ऊपर ज़रूर फर्क पड़ता है। अगर आपका शुगर कंट्रोल में नहीं रहेगा, शुगर लेवल ब्लड में बहुत ज़्यादा है, तो वो एक कारण बन जाता है, जिसको हम जैसे प्री डिस्पोजिंग फैक्टर कहते हैं, कि एक आम आदमी को जितनी देर में इन्फेक्शन होगा, आपको उससे जल्दी होगा सेम सिचुएशन में। तो मसूड़े सूजना, या अगर कोई भी किसी भी तरह का ट्रॉमा हुआ तो वो देर में भरेगा। हड्डी जल्दी घिसती है, दांत निकलने के बाद डायबिटिक पेशेंट में बोन रिजॉर्प्शन ज़्यादा होता है और फास्ट होता है। तो ये कुछ चेंजेस हैं जो देखे गए हैं डायबिटिक पेशेंट्स में, स्पेशली अगर शुगर अनकंट्रोल्ड है। तो आपको अपना शुगर कंट्रोल करना होगा, खान पान में बदलाव लाना होगा, मसूड़े की मालिश करें, ध्यान रखें कि किसी भी तरह का मुँह में ट्रॉमा ना हो, प्रोस्थेसिस के कारण, शार्प टीथ के कारण या कोई भी और कारण। तो ये कुछ प्रिकॉशंस आप ले सकते हैं अगर आप डायबिटिक हैं। और एक जो प्रॉब्लम और डायबिटिक में देखी गई है, मुंह का सूखना, ड्राइनेस ऑफ माउथ, वो डायबिटिक पेशेंट में, जिसको जीरोस्टोमिया कहते हैं, बहुत कॉमन होता है। सो आपको शायद वाटर इनटेक अपना बढ़ाना पड़े, या एक आर्टिफिशियल सलाइवरी सब्स्टिट्यूट भी आता है, वो भी यूज़ किया जा सकता है अगर आपको ज़्यादा ड्राइनेस हो रही है तो।
1: एक और मैसेज हमारे पास, ये लिखते हैं, मैम मेरी उम्र 71 वर्ष है, मैं दोनों समय खाने के बाद ब्रश करता हूँ, मेरी सभी जाड़ अभी सुरक्षित हैं, लेकिन पिछले एक सप्ताह से दाई तरफ के ऊपर की एक जाड़ के मसूड़े में सूजन है। मैं अब एक सप्ताह से केवल बाई तरफ से ही खाना खा सकता हूँ। खाना खाने के समय दाई तरफ के ऊपर की दाढ़ जब नीचे की दाढ़ से टकराती है तो काफ़ी दर्द होता है। केवल खाना खाने के समय ही दर्द होता है, वैसे नहीं। कृपया बताएं मैं क्या करूं। दिनेश शर्मा, शिमला, राजस्थान, शिमला, झुंझुनू।
0: देखिए, इसमें अगर आपको वहाँ पर स्वेलिंग हो रही है और पेन कर रहा है च्यू करने पे जब आप खाना चबा रहे हैं, तो चांसेस हैं कि वहाँ पर आपको एक इन्फेक्शन हो गया है, जिसको क्रोनिक इन्फेक्शन बोलते हैं, तो जिसकी वजह से आपको रेगुलर पेन नहीं है, बट ऑन च्यूइंग करने पर पेन है। तो इसका तो आपको क्लिनिकली चेकअप करवाना होगा, और अगर ज़रूरत पड़े तो एक एक्सरे करा करके देखना होगा कि इन्फेक्शन का कॉज क्या है। अगर दांत में कहीं साइड से कैविटी है, या गम्स का रिसीट कर गए हैं, फॉरकशन तक अगर गम्स पहुंच गए हैं, तो उसकी वजह से भी इन्फेक्शन और पेन कर सकते हैं। तो आपको इसको चेकअप कराना होगा, और एक्सरे करा करके अगर कैविटी है तो उसका फर्दर ट्रीटमेंट कराना होगा।
1: डॉक्टर रेखा, जैसे कि आज हम बात कर रहे हैं ओरल हाइजीन की, तो डेंटल एंड ओरल डिजीज़ को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं?
2: बहुत साधारण है, लगातार कंसिस्टेंसी, ध्यान दें शुरू से अपने दांतों पे, लापरवाही ना करें। जैसे आप हर रोज़ नहाते हैं, अपने शरीर को साफ रखते हैं, ऐसे ही अपने मुंह को और अपने दांतों को साफ रखें। सो रेगुलर ब्रशिंग, चाइल्डहुड से ही अगर ये आदत डाली जाए, हमने बात किया इस पूरे प्रोग्राम में आज की, बच्चों को भी दांत साफ़ करने चाहिए। सो चाइल्डहुड से ही ये आदत आपको बच्चों में डालनी है। कुछ भी खाने के बाद एक बार कुरला ज़रूर करें। अगर आप किसी ऐसी जगह है जहाँ कुरला करना पॉसिबल नहीं है, तो कम से कम एक घूंट पानी लेके और उससे अच्छे से रिंस करके उसे पी लीजिए।

0: रात को सोने से पहले ब्रश करना बहुत ज़रूरी है ताकि जब आप बिस्तर पे जा रहे हैं तो मुंह में कोई भी खाने का कण बचा ना रहे, क्योंकि वो सबसे कॉमन कारण होता है दांतों में कीड़ा लगने का। देन उसके बाद खान पान की आदतें, जो आजकल की जनरेशन में थोड़ा बदल गई हैं, हम फास्ट फूड पे ज़्यादा रिलाई करते हैं, तो मैं कहूँगी कि हेल्दी फूड खाएँ, फाइब्रस फूड खाएँ, सलाद, फल, इस तरह की चीज़ों को अपने खाने में इंक्लूड करें, बिकॉज ये आपके टीथ और गम की हेल्थ तो इम्प्रूव करता ही है, इसके अलावा इनका कुछ सेल्फ क्लिंजिंग एक्शन होता है कि ये दांतों की खुद से सफाई भी करता है। फास्ट फूड जैसे च्युइंग गम, जैसे कि हम कहें कि टॉफ़ी, चॉकलेट, स्वीट्स एंड स्पेशली कोल्ड ड्रिंक्स, एरेटेड कोल्ड ड्रिंक्स, वो अवॉइड कीजिए, बिकॉज वो बहुत एसिडिक होते हैं और वो दांतों की ऊपरी परत को गला देते हैं। तो अगर खान पान में सुधार और सफाई का ध्यान रखा जाए, और दूसरा, तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट, रेगुलर चेकअप। कई दांतों की बीमारियां ऐसी होती हैं कि जिसमें सिम्टम, जब तक वो डिज़ीज़ बहुत बढ़ नहीं गई तब तक नहीं आता, तो एक रेगुलर चेकअप साल में कम से कम, वैसे हम 6 महीने में रेकमेंड करते हैं कि एक रेगुलर चेकअप करा लीजिए, बट कम से कम साल में एक बार तो ज़रूर ही करा लें, टू मेक श्योर कि कोई किसी तरह की डिज़ीज़ स्टार्ट नहीं हुई है।
1: डॉक्टर हरमीत, जैसे कि कई बार हम कहते हैं कि टीथ वाइटनिंग करा लेनी चाहिए या क्लींजिंग कराते रहना चाहिए, तो उसके लिए आप क्या सलाह देंगे हमारे श्रोताओं को?
2: देखिए, जैसे स्किन के शेड्स अलग अलग होते हैं, उसी तरह से टीथ का कलर्स और शेड्स भी डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। तो कईयों का वाइट होता है, कईयों का येलोइश होता है, कईयों का इन बिटवीन क्रीमिश, अलग अलग से शेड्स होते हैं, तो वो एक नेचुरल शेड्स हैं, तो उसको क्लीनिंग से हम नहीं क्लीन, मतलब और ब्राइट बना सकते, बल्कि अगर उसके ऊपर स्टेन्स हैं, जो एक्सट्रिंसिक स्टेन्स होते हैं, चाहे वो टी कॉफ़ी के स्टेन्स हैं या प्लाक डिपॉजिट्स हो गए हैं, कैलकुलस है, उसकी वजह से स्टेन्स हो गए हैं, तो उसको तो हम प्रोफेशनली स्केलिंग एंड क्लीनिंग करके उसको क्लीन कर सकते हैं। और अगर किसी के इंट्रिंसिक स्टेन्स हैं, जैसे कि किसी को फ्लोराइड स्टेन्स होते हैं, फ्लोराइड बेल्ट काफ़ी है हमारे कंट्री में, हमारे स्टेट्स के आसपास, तो फ्लोरोसिस की वजह से अगर उसमें इंट्रिंसिक स्टेन्स हैं, तो उसके ऊपर कॉस्मेटिक वेनियरिंग एक ऑप्शन होता है कि हम उसको वेनियरिंग करके उस कॉस्मेटिकली उसको टीथ स्माइल डिज़ाइन कर सकते हैं, ताकि स्माइल जो है प्रिजर्व कर सकते हैं पेशेंट के लिए।
1: जैसे कि अब जाने का समय हो गया है, तो जाते जाते डॉक्टर रेखा, आप हमारे श्रोताओं को क्या मैसेज देंगी कि जिससे उनकी स्माइल बरकरार रहे और दांत सुरक्षित रहें?
0: मैं तो एक ही सलाह दूंगी, हम लोगों से मिलते रहें और कोशिश करें कि हमसे रेगुलर चेकअप के लिए मिलने की ज़रूरत पड़े, बाकी किसी प्रॉब्लम के लिए मिलने की ज़रूरत ना पड़े। तो जैसे मैंने अभी 2 मिनट पहले बोला कि रेगुलर सफाई अपने दांतों की रखें, उन्हें उतना इम्पॉर्टेंट समझे जैसे शरीर के किसी और हिस्से को समझते हैं, तो उनकी देखभाल करें, हेल्दी खाएं, स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें।
1: हर मुस्कान अनमोल है। डॉक्टर हरमीत, आप क्या कहेंगे, मैसेज देंगे हमारे श्रोताओं को?
2: जैसे आज का हमारा टॉपिक था डिफेंडिंग योर स्माइल, इसके लिए है प्रिवेंशन इज़ वेरी वेरी चीपर, मीन्स बहुत ही सस्ती है प्रिवेंशन, और ईजियर है और वेरी लेस पेनफुल है, ठीक है। और अगर इस कंपैरिजन हम करें फिलिंग के लिए, आरसीटी के लिए और एक्सट्रैक्शन के लिए, वो जो है बहुत ज़्यादा पेनफुल है, तो इसलिए प्रिवेंशन जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। प्रिवेंशन करें और रेगुलर ब्रशिंग और फ्लॉसिंग करें, और मेरा मैसेज है कीप योर स्माइल ब्राइट एंड कीप योर डिफेंस टाइट।
1: तो श्रोताओं, दांत सिर्फ हमारी मुस्कान नहीं बल्कि हमारे संपूर्ण स्वास्थ्य का भी महत्वपूर्ण हिस्सा है। सही समय पर जांच, उचित इलाज और नियमित देखभाल से हम लंबे समय तक अपने दांतों को स्वस्थ रख सकते हैं। आज कार्यक्रम में हमारे साथ रहे डॉक्टर रेखा गुप्ता, प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ प्रोस्थोडोंटिक्स, मौलाना आज़ाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज, न्यू दिल्ली, और साथ में रहे डॉक्टर हरमीत सिंह, डेंटल स्टाफ सर्जन, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल, न्यू दिल्ली। डॉक्टर साहब, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया।
2: थैंक यू।
1: दोस्तों, उम्मीद है कि इस बातचीत से आपको डेंटल केयर के सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा हमें ज़रूर मेल कीजिएगा। हमारा मेल आई डी है healthairdelhi@gmail.com। इसी तरह स्वास्थ्य से जुड़ी उपयोगी जानकारी के साथ फिर मिलेंगे आपके अपने कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर में। और इसी के साथ मैं शिल्पा गुप्ता आपसे लेती हूँ इजाज़त। स्वस्थ रहें, सजग रहें, मुस्कुराते रहें। नमस्कार।

अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।

0: लो जी अंकल जी आ गया है रेनबो बाजार। अच्छा लगता थानू बाजार नालों पहला तो थानू डॉक्टर ते लेके जाना चाहिए। क्यों जी? नहीं आए ओ एक मिनट, वैसे थानू स्कूटर ते बह के कि सह चढ़ गया?
1: नहीं आए, स्कूटर दी सर्विस कराया कर, तू मार मार सह चढ़ाता।
0: की गल है, मूँह एडा खोल के सह क्यों लैने तुसी? चलो कोई गल नहीं, एक भैन जी आ रहे ने, इन्हां नाल आपां गल करदे हां। हैलो
2: हेलो सर, सत श्री अकाल।
0: हाँ जी सत श्री अकाल जी, की नाम थोड़ा जी?
2: शरण गल कर रही।
0: शरण जी गल कर रहे हैं, बड़े डिसिप्लिन होके गल कर रहे हो, की गल सजा दी थी थानू किसी ने? है जी
2: सर, जो मर्जी कह जाओ, आपां गल सारी गल तो भी इनका ही जानी है।
0: अच्छा जी, अच्छा जी, सीधा कह दो मैनू, अज केमिस्ट्री वाले टीचर दी याद आ गई, कह दो। वो भी जो कहता ही ना, मैनू कुछ नहीं समझ आता हुंदा ही, है ना जी
2: सर? देखो जी सर, एक सब्जेक्ट तो नफरत सी, वो सी ड्राइंग तो।
0: अच्छा जी, ड्राइंग तो नफरत सी की, ओ क्यों जी?
2: ओ बस मेनू पसंद नहीं सी ड्राइंग करनी।
0: अच्छा जी, मेनू भी नहीं पसंद सी की जी। मेनू एक बार कहता जी किसी दी कुड़ी दी फोटो बना दो, ते की होया मेरे को ना मेनू आंदी तां हैगी नहीं, कहंदे कोई इदां दा
2: फोटो बन गई।
0: हां जी, मैं की कीता, अदरक लेता जी, ड्राइंग दे उपर रख्या जी, मुक्का मारता जी, छापा पै गया जी, ते कुड़ी बन गई जी। ते बाद च

0: अटल बॉम्ब सोडा अडवे रॉकेट काय फुल जड़ी से तूने भरे ले पॉकेट अरे वारा बन मेरे जैसा बन ये ले नाना का बॉम्ब जाके उड़ा दे घर
1: फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू

0: हाँ जी हाँ जी हाँ जी दोस्तों, की हाल चाल ने तुसी सुन रहे हो प्रोग्राम हैलो जलंधर विद सोनू एंड बब्बल जी दे नाल। लो जी, मैं इन्हां नूं माइक सौंपदा, तुसी इन्हां नाल गलबात करो। थैंक यू टॉम बजर, और नीचे करो पागल ना हो गए।
1: ओए चुप कर, ऐदा नहीं बोली दा हुंदा काका, उमर तेरी भी वड्डी होनी है।
0: पर ऐदा ही हरकतां तां नहीं ना करूंगा मैं।
1: चल चुप हो, कॉलर नूं फोन ला। हैलो हेलो
2: जी, नमस्कार जी।
1: नमस्कार नमस्कार।

107.7 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी जलंधर ते दोस्तों तुसीं इंजॉय कर रहे हो प्रोग्राम युवाणी ते गल असीं कर रहे हैं कोरियोग्राफर सरोज खान जी बारे ते जिहड़ा तुसीं गीत इंजॉय कर रहे हो ना इस गीत दा एक एक स्टैप उन्होंने कोरियोग्राफ किया है ते जिन्हां ने भी इस गीत नूं सुनिया है देखिया इस मूवी नूं देखिया है ना उन्हां नूं पता होना कि किन्ने मुश्किल स्टैप्स जो कि ऐश्वर्या राय ने हू बहू उन्हां तों सीख के इस गीत विच उतारे ने ते दोस्तों ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਐਕਟਰ ਅਤੇ ਐਕਟ੍ਰੈਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਸਾਨੂੰ ਈਜ਼ੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਉਹ ਫੇਸ ਕਰਦੇ ਹੈ

हाँ जी हाँ जी हाँ जी दोस्तों, सत श्री अकाल जी। कहिंदे ना जदों दिन भर दी ना भज दौड़ तो बाद शाम ढलदी है ना, मन थोड़ा थक्या थक्या लिहा लगता है, बस उदों ही उसे पल 102.7 FM रेनबो ते तुहाडा स्वागत करता है तुहाडा आरजे दोस्त आरजे रमनीश। वेल लव यू जिंदगी। हर रोज़ जिवें कि 6 बजे असीं आउंदे हाँ इस प्रोग्राम नूं लैके, ते कहिंदे ना हारे हौसले उठदे ने ते हंझुआं चों वी मुस्कान उगदी है। इत्थे असीं गल्लां करदे हाँ उस जिंदगी दियां जदों कदे ना जो कदे रुलाउंदी है कदे हसाउंदी है, पर हर हाल च प्यार करन दे लायक है, क्योंकि जिंदगी सवाल नहीं, ये तो वो जवाब है जिन्हों रोज़ जीना पैंदा है। दोस्तों असीं की करदे हाँ कि असीं अपने दुख सुख जित हार साडे नाल जिहड़ियां आपां गल्लां किसे दियां कोई भी वह व्यक्ति होंदे उहदी बारे असीं गल्लां करदे सांझियां करदे हाँ, असीं उहनां नूं लखां लोकां तक पहुँचाउंदे हाँ तां जो कोई होर भी उहदे च हौसला लभ सके। आखिर मोटीवेशन का डोज़ है कि हर शो च ना थानू जिहड़ियां आपां दिल छूण वालियां जिहड़ियां आपां गल्लां करदे ना, डिगना मना नहीं पर डिग के भी पए रहना गुनाह है। उठो लव यू जिंदगी बोलो ते फिर दौड़ लाओ। अजिहे नगमे अजिहे गाने जो असीं सुनदे हाँ जिसनों जिस नाल शो साडा होर पावरफुल बन जाता है। साडे असली हीरो की मैं दो लाइना दसदा कि तुहाडे वर्गे लोगों दियां जिहड़ियां मसाला है। अमृतसर च ना बीबी जीतो 55 साल दे कैंसर नूं हराउण तो बाद ना हुण उह पिंड दियां 50 कुड़ियां नूं मुफ्त सिलाई सिखाउंदे ने। कहिंदे ने मौत नूं करीब तो देख के जिंदगी नाल प्यार हो गया। बठिंडे दी ना टैक्सी ड्राइवर सुखा एक्सीडेंट च ना एक लत गुआ के हर सवारी नूं हस के मिलदा है। उह कहिंदा है उपर वाले ने लत लई मुस्कान तो नहीं लई ना। जलंधर च भी 10वीं फेल विक्रम अज उहदा अपना ढाबा है जिथे 15 गरीब बच्चों नूं रोज़ मुफ्त खाना खवाउंदा है। फेल हो गए नवीं ना पास होने का मतलब समझ आया, वह हस के दसदा है। दोस्तों यही तो है जिंदगी जीना। आप कहने हर चीज़ च ना आप जिंदगी जी सकते हैं कि सानू जरूरी नहीं है कि हाँ कि अज का दिन साडा इदा रह गया तो मतलब ये नहीं कि रोज़ उदा रह जाओगे दिन। दोस्तों कहते ना जिंदगी नू समझ लो, जिंदगी का पाठ पढ़ लो, मज़ा ही आ जाऊगा दोस्तों। क्यों ना मज़ा होगा, मज़ा आऊगा दोस्तों। एक बार जियो के तो देखो क्या बात है जी। दोस्तों प्रोग्राम शुरू हो चुका है लव यू जिंदगी, तो सुन रहे FM बैंड 102.7 ते आकाशवाणी जलंधर दा है रेनबो चैनल है। तो मैं थोड़ा अपना आरजे दोस्त लो जी करदे हां प्रोग्राम दी शुरुआत इस प्यारे जे गाने तो।

दोस्तों तुसीं सुन रहे हो प्रोग्राम लव यू जिंदगी। दोस्तों अज दी गल शुरुआत करदे हां। अज दी कोई भी सिचुएशन होती ना, भावें वह चंगी होवे, वधिया होवे, माड़ी होवे, आपां जिहनूं कहिंदे आ पॉजिटिव नैगेटिव अप्स एंड डाउनस जदों आउंदे आ जिंदगी च, आपां कहिंदे आ व्हाट्स नैक्सट, हुण साडा नैक्सट मूव की होगा। बस दोस्तों अज इस बारे ही आपां गलबात करांगे। साडा टॉपिक अज दा है नैक्सट मूव। नैक्सट मूव ना दो छोटे शब्द पर इन्हां च पूरी जिंदगी का फलसफा लुकया है। शतरंज के खिडारी नूं पुछो, वह कहेगा खेड वह नहीं जितता जो तेज चलता है, खेड वह जितता है जो अगली चाल सोच के चलता है। जिंदगी भी एक शतरंज है, इत्थे हर पल थोड़े सामने एक सवाल खड़ा होंदा है, हुण अगे की जो इस सवाल

0: एक विशेष सूचना। आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चाहवान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल ID jalandhar@prasarbharati.gov.in।
1: दोस्तों तुम सुन रहे हो प्रोग्राम लव यू जिंदगी विद RJ दोस्त रमनीश। दोस्तों गल चल रही सी गल नेक्स्ट मूव ते। अगला पॉइंट पता की है साडा दोस्तों, जागरूकता यानी कि अवेयरनेस नाल बोर्ड पढ़ो। चंगा जिहड़ा चंगा खिडारी ना पहला पूरा बोर्ड पढ़दा है, कित्थे खतरा है, कित्थे मौका है, जिंदगी

दोस्तों तुम सुन रहे हो प्रोग्राम लव यू जिंदगी, ते मैं थोड़ा अपना आरजे दोस्त रमनीश। दोस्तों वेला हो चुका है, बस हुन 6:19 हो चुके ने, 30 सैकेंड हो गए ने, ते कुछ ही चिरा च तुसी सुनोगे प्रादेशिक खबरां।

0: से बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: नमस्कार, ए आकाशवाणी है। हुण तुसी सरबजीत कौर तो प्रादेशिक खबरां सुनो। पहला इस बुलेटिन दियां खास खबरां। भारत ने अज दोहराया कि पाकिस्तान वालों सरहद पार दहशतगर्दी नूं लगातार हमायत देण दे जवाब विच सिंधु जल संधि अजे भी मुलतवी है। पंजाब भाजपा प्रधान केवल सिंह ढिल्लों ने कहा कि सूबा सरकार ने मावां धीआं सत्कार योजना तहत खातियां च घट पैसे पा के पंजाब दीआं औरतां नाल धोखा कीता है। कपूरथला विच स्कूलां दे आले दुआले एनर्जी ड्रिंक्स की विक्री ते मुकम्मल पाबंदी लाउण दे हुक्म जारी किए गए ने। पंजाब स्टेट पावर कारपोरेशन लिमिटेड का कहना है कि सूबे विच बिजली की स्थिति पूरी तरह आम वांग है। ते चंडीगढ़ स्थित मौसम विभाग ने 6 to 9 July तक पंजाब ते हरियाणा के ज़्यादातर हिस्सों के नाल नाल केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ विच गरज चमक नाल भारी मीह का येलो अलर्ट जारी किया है। हुण खबरां विस्थार नाल। भारत ने अज दोहराया कि पाकिस्तान वालों सरहद पार दहशतगर्दी नूं लगातार हमायत देण दे जवाब विच सिंधु जल संधि IWT अजे भी मुलतवी है। अज शाम नवी दिल्ली विच मीडिया नूं जानकारी देंदिया विदेश मंत्रालय दे बुलारे रणधीर जायसवाल ने कहा कि सिंधु जल संधि ते भारत दा रुख स्पष्ट रहा है। उन्हां कहा कि पाकिस्तान नूं सरहद पार दहशतगर्दी तों भरोसेयोग अते स्थाई तौर ते पिछे हटना होगा।
3: India's position on the Indus Waters Treaty.
4: सिंधु जल संधि पर भारत का रुख पहले की तरह स्पष्ट है। पाकिस्तान के लगातार सीमा पार आतंकवाद को मदद देने के जवाब में सिंधु जल संधि को रोक दिया गया था। पाकिस्तान को विश्वसनीय तरीके से सीमा पार आतंकवाद को मदद देना बंद करना पड़ेगा।
2: पंजाब भाजपा प्रधान केवल सिंह ढिल्लों ने कहा कि सूबा सरकार ने मावां धीआं सत्कार योजना तहत जनरल वर्ग नूं सिर्फ 1,000 रुपये प्रति महीना ते पट्टी दर्ज जाता वर्ग नूं 1,500 रुपये प्रति महीने का तबादला करके पंजाब दीआं औरतां नाल धोखा कीता है। उन्हां कहा कि 2021 विच आम आदमी पार्टी दे कन्वीनर वल्लों कीते वादे मुताबिक 51 महीनियां दे कुल 51,000 रुपये की रकम का औरत लाभपात्रियां दे खातियां विच तबादला कीता जाना सी।
5: आम आदमी पार्टी ने 51 महीने हो चुके अज जे 1,000 के हिसाब न 51,000 रुपया देना चाहिए पर 1,000 के हिसाब न 51 देने की थान से हूँ कहते कि अभी 3 महीनों का देवे कि 3 महीने भी जेडे कह रहे हैं वो 3 महीने हूँ तो नहीं भी झूठा। मैं अखबारों राही पढ़िया कि ये लिखा गया कि यह 3 महीने जेडे आने वाले जुलाई अगस्त सितंबर अगे वो क्यों कि एक जुमलेबाजी आ इन्हों लगता कि उदों तक
2: चंडीगढ़ विच एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नूं संबोधन करदिआं श्री ढिल्लों ने कहा कि जिवें ऐलान किया गया सी इह गारंटी पंजाब विच 18 साल तो वध उमर की हर औरत लई सी जिस विच 1,25,00,000 तो वध औरतां शामिल सन पर मान सरकार दावा करदी है कि उन्हां ने सिर्फ 36,00,000 औरतां नूं पैसे ट्रांसफर किए ने। इसका मतलब है कि 99,00,000 तो वध औरतां नूं वादा किए गए 1,000 रुपये की सहायता तो इनकार किया गया है। उन्हां जोर दे के कहा कि भाजपा पंजाब दीआं औरतां लई उदों तक लड़दी रहेगी जदों तक हर वादा किया गया रुपया उन्होंने।

दोस्तों तुम सुन रहे हो प्रोग्राम लव यू जिंदगी, ते मैं थोड़ा अपना आरजे दोस्त रमनीश। दोस्तों नेक्स्ट मूव की गल कर रही सी, तो आप अगली श्रेणी की गल करते हैं कि नैक्सट मूव न ताकतवर बनाउण दे भी तीन सूत्र ने। पहला पता केड़ा है, 2 मिनट का नियम, यानी कि छोटी शुरुआत। किताब लिखनी है, रोज़ 2 मिनट लिखो। जिम जाना है, बस जूते पा के दरवाजे तक जाओ। नैक्सट मूव वड्डा नहीं, अगला होना चाहिए है। छोटी चाल भी थानू खेड च रखती है दोस्तों। उदाहरण वजो ना, लेखक जेके रॉलिंग ने हैरी पॉटर ट्रेन के सफर दौरान कागज़ के टुकड़िया ते लिखनी शुरू की सी। दोस्तों क्या बात है। उस तो बाद आता है दूसरा पॉइंट, फेल फॉरवर्ड, यानी कि डिग के अगे डिगो। क्या बात है, डिग के अगे डिगो। थॉमस एडिसन बल्ब बनाते हुए 1000 बार फेल हुए दोस्तों, सबनों पता है। पत्रकार ने पूछा कि 1000 बार फेल हो के भी किवें लगा। एडिसन हंस के बोले, मैं फेल नहीं होया, मैं 1000 तरीके लब्बे जिन्हां नाल जिहड़ा बल्ब नहीं बनता। तुहाडी हर गलत नैक्सट मूव तुहानू सही चाल दे नेड़े लेके जांदी है दोस्तों। उस तो बाद वाय नू याद रखो, यानी असी क्यों कर रहे हैं, मकसद ना भुलो दोस्तों। जो तो थक जाओ तो याद करो तुसी शुरू क्यों किता सी। मां अपने बच्चे लिए रात रात जागती है क्योंकि ओदा वाय साफ है। तुहाडा वाय भी तुहाडी नैक्सट मूव नू पेट्रोल दिंदा है। उदाहरण वजो ना, दिल्ली दे मैट्रोमैन ई सिद्रन 65 साल की उम्र च दिल्ली मैट्रो का नैक्सट मूव चुकया, क्योंकि वाय ओह देश नू कुछ देना चाहते सन दोस्तों, कुछ देना चाहते सन।

दोस्तों तुम सुन रहे हो प्रोग्राम लव यू जिंदगी, तो मैं थोड़ा अपना आरजे दोस्त रमनीश। दोस्तों अखीरली गल हुण थोड़ी वारी है। दोस्तों जिंदगी थानू हमेशा एक होर चाल चलन का मौका देती है, चाहे तुसी 18 साल दे हो जा 80 दे। कर्नल सैंडर्स ने जिहड़ा अपना कम 65 साल की उम्र च शुरू किया सी, उन्हां दी जिहड़ी नैक्सट मूव ने ना दुनिया का स्वाद बदल दिता। अज जदों तुसी लेख पढ़ के उठोगे ना दोस्तों, या सुन के उठोगे, थोड़े सामने फिर वही सवाल होवेगा कि नैक्सट मूव की है। हो सकता है वह सॉरी बोलना होवे, धन्नवाद कहना होवे, नवा काम शुरू करना होवे, जां बस 5 मिनट सैर करनी होवे। बस याद रखो दोस्तों कि बीती ताही बीमार दे, अगे की सुध ले, जो सिर पर आवे से कहे कबीर सचे। भूतकाल थोड़ी कैद नहीं, सबक है। भविख थोड़ा डर नहीं, मौका है। ते वर्तमान, वर्तमान ही थोड़ा नैक्सट मूव है दोस्तों। ता चलो मोहरा चुको, दुनिया थोड़ी चाल दी।

दोस्तों प्रोग्राम चल रहा लव यू जिंदगी, तो मैं थोड़ा अपना आरजे दोस्त रमनीश, बस कुछ ही समा रह गया इस प्रोग्राम खत्म होने के लिए। पर उस तो पहला दोस्तों जिमें कि आप शुरुआत की थी ना कहानियों तो कि तुसी अपने दुख सुख जित हार साढ़े नाल सांझे कर दियो, असी उन्हां नूं लखां लोकां तक पहुँचाने हैं ता जो कोई होर भी उहदे च हौसला लभ सके। जिहड़ा हर शो च तुहानूं जिहड़ियां मिलणगियां, जिहड़ियां दिल छूण वालियां जिहड़ियां लाइनां, डिगणा मना है पर डिग के भी पए रहना गुनाह है। उठो लव यू जिंदगी बोलो ते फिर दौड़ लाओ दोस्तों, क्या बात है। तो बस दोस्तों अज का सफर ना इत्थे मुकदा है। जिंदगी दे इस रेडियो ते कई स्टेशन आउणगे, कदे सुख दुख वाले कदे सुख वाले, पर ट्यूनिंग अपने हाथ रखियो दोस्तों। याद रखियो जे अज हनेरा है ना तो कल सवेरा भी थोड़ा है। जिसने कोशिश दा बुआ खड़काया रब ने उन्हें कदी खाली नहीं मोड़िया। अपना ख्याल रखियो दोस्तों, अपने का ख्याल रखियो ते सोण तो पहला ना दिलों एक बार जरूर कहना लव यू जिंदगी। दोस्तों मैं थोड़ा अपना अर्जे दोस्त रमनीश, बस बस इसी तरीके ना प्यार देंदे रहो ते अपनी जिंदगी नू प्यार करते रहो। दोस्तों अखीर में यही कहूँगा कि जिंदगी बहुत खूबसूरत है, इस जियो तो कदों भी दुख सुख आए दुख आए तो हमेशा कहो लव यू जिंदगी। वैल अज का सफर सिर्फ इन्ना ही, तो तुम सुन रहे FM 102.7 ते आखिरी पेशकारी साढ़े वालों, क्या बात।

0: जी हाँ, इस डायलॉग तो शायद सारियां नूं पता लग गया है कि भई केना बारे अज असी अज गल करन जा रहे हैं। जी हाँ, बॉलीवुड दे राजकुमार राजकुमार जानी मिलो दशा मेरे तो पहले रमनीश ज्यादा वधिया कर लैंदा। चलो खैर रमनीश, ते रमनीश थोड़ा या जानी कर सकदा
1: जानी।
0: आ क्या बात है, सो रमनीश जा ही रहा सीगा, मैं कहा क्यों ना एक एक वधिया जे कलाकार कोलों अज दे कलाकार जिन्हां नूं असीं अज श्रद्धांजलि देण जा रहे हैं, अज उन्हां दी 30th डैथ एनिवर्सरी है। राजकुमार जिन्हां ने इन्नियां सारियां मूवीज़ कीतियां, पैट्रियोटिक कीतियां, रोमांटिक कीतियां, पर एक उन्हां दा विलन वाला या एक ना एक जिहड़ा वखरा जिहा एटीट्यूड कि बस मैं जो कहता वह उदा ही होना, पर तुहानूं हैरान हो जाएगा तुसीं एक गल सुन के कि यह एटीट्यूड सिर्फ फिल्मां विच नहीं सी। जी हाँ, उन्हां दी पर्सनल लाइफ दे विच भी वह इदां दे ही सी। चलो बहुत सारी गल्लां करांगे अज असीं राजकुमार साहब बारे, पर सब तो पहला शुरुआत करते हैं उन्हां दी सब तो ज़्यादा सक्सैसफुल मूवी मदर इंडिया दे सक्सैसफुल गीत मतवाला जिया डोले।

0: यानी हम वो हैं जो आंखों से आंखें मिला लेते हैं।
1: जी हाँ दोस्तों, प्रोग्राम तुसी एंजॉय कर रहे हो फिल्मी दुनिया, एंड फिल्मी दुनिया दे विच असी राजकुमार साहब बारे गल करांगे। बाकी उन्हां दा सिर्फ एक सिंगल डायलॉग जानी और लोगों ने पता लग जाना है स्क्रीन ते राजकुमार साहब आए हैं। वो एक फनकार सी, एक ऐसे कलाकार सी जिन्हां दी आवाज़ दे विच गर्ज, अखां दे विच अंगार सी। जी हाँ, वो वैसे शरीरक तौर पर अखा तो दूर हो गए, पर अज भी तुसी उन्होंने याद करो ना, तो मैं पक्का यकीन मानता वा कि तुसी अगर उन्होंने बहुत सारिया फिल्मा देखी हुई ना, तो तुहाडे कन्नां दे विच उन्हां दी आवाज़ अपने आप आ जाएगी कि जानी, क्योंकि नैचुरली अगर किसी नूं याद करते हैं तो उन्होंने आवाज़, उन्होंने डायलॉग, उन्होंने चीज़ा जो भी सी उन्होंने देखा होंगे, वो अचानक अपने दिमाग के जहन के आ जाता है। सो अज का दिन, क्योंकि अज 3 जुलाई है।

जी दोस्तों, एंजॉय करें प्रोग्राम फिल्मी दुनिया 102.7 मेगाहर्ट से FM रेनबो ते, जिसका नाम एंजॉय कर रहे हो तुसी फिल्मी दुनिया। एंड मैं तुहाडा दोस्त मोहित रूबल, एंड अज जिस सितारे वसी गल कर रहे हैं वह है राजकुमार साहब। सो राजकुमार साहब के जो गीत ने, हर एक गीत की ना गलबात जी है ना, वो बिल्कुल जी एक वक्री जी है। जिमें कि हूँ मैं जी अगली मूवी की गल कर जा रहा, मूवी है हीर रांझा। तो हीर रांझे दे गाने जिहड़े ने ना, वह मतलब बहुत बहुत ज़्यादा मैं कहांगा कि ब्रिलियंट सीगे, है ना। जिमें कि हीर रांझे दा गाना सीगा कि ये दुनिया ये महफिल, ऐ एक ऐसी इतिहासिक फिल्म सी जिहदे विच डायलॉग दी गल होवे या फिर म्यूजिक दी गल होवे या फिर एक्टिंग या कदी कदी चुप भी रहना पैंदा सी ना, तो हर एक चीज़ जिहड़ी है वह बहुत ज़्यादा सोहनी परोई गई सी। एंड उस ही सोहने ढंग दे नाल जिहड़ी है वह राजकुमार साहब ने बहुत वधिया इसनूं कीता सीगा। चलो हुण आपां थोड़ा अगे वधदे हां कि राजकुमार साहब की पहली फिल्म कि सी। राजकुमार साहब ने पहली फिल्म सी दौलत, जो कि 1949 दे विच सी, उहदा ऑडिशन दिता सीगा पर वह रद्द कर दिता गया। पर फिर भी वो हिम्मत नहीं हारी, तो 3 साल बाद 1952 दे विच रंगीली नाम की एक फिल्म आई, जो कि उन्होंने फिल्मी दुनिया विच उस दे नाल कदम रखिया। तो वह पल से जो कुलभूषण पंडित की थान राजकुमार ने जन्म लिया। सो क्या बात है, एक बहुत मैं कहांगा कि उन्हां दी एंट्री भी ना एक फिल्मां दे वांग ही हुई है, क्योंकि फिल्मां दे विच जिवें हीरो दिखांदे ने कि कोई चीज़ हुई है तो वह हार मान जांदा है,

0: ऐसे ही जग में।
1: क्या बात है, वाकई कितनी खूबसूरत आवाज ते खूबसूरत गीत एंड खूबसूरत एक्टर एंड बहुत ही खूबसूरत फिल्म सी आ। तो दोस्तों असी इंजॉय कर रहे हैं जी प्रोग्राम फिल्मी दुनिया दे विच राजकुमार साहब दीआं गल्लां, क्योंकि अज उन्हां दी डैथ एनिवर्सरी है। तो बहुत सारी फिल्मां कीतीआं, अगे एक फिल्म आ जांदी है पाकीज़ा 1972 दे विच, कमाल अमरोही दी ऐ मास्टरपीस फिल्म, मीना कुमारी जी दी अखीरली फिल्म। राजकुमार साहब दी भूमिका लई पहलां धर्मिंदर, राजिंदर कुमार ते सुनील दत्त दा नाम जिहड़ा सोचा गया, पर फिल्म दे डायरैक्टर ने कहा कि सलीम दा किरदार जिहड़ा ना ਉਹ ਸਿਰਫ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਐਂਡ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਲਟ ਕਲਾਸਿਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗਿਣੀ ਗਈ।

0: गुलाबी रंग देना दुपट्टा मेरा जिसने गुलाबी।
1: हाँ क्या बात है जी, एक एक गीत जिहड़ा है ना राजकुमार साहब का, वो वाकई लगता है कि हाँ इस फिल्म दे विच राजकुमार साहब की कुछ कुछ है, कुछ खास गल है। सो कली राजकुमार ना थोड़े जे लगते सीगे कि हाँ मैं सुपरस्टिशियस गल्लां कुछ ऐसा वहम दे विच भी, वहम कह लो या वैसे अपना गुड लक चाम भी तुसी मान सकते हैं कि जो तो वक्त फिल्म आई ना, वक्त फिल्म तो बाद राजकुमार साहब ने ना हमेशा ही चिट्टे बूट जिहड़े ने पाउणे शुरू कर दिते। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਦੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੋਣਾ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਨਾਬ ਇੱਥੇ ਨਾ ਚਿੱਟੇ ਬੂਟ ਨਾ ਸੋਹਣੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇ, ਇਹ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਓ, ਕਾਲੇ ਪਾ ਲਓ, ਮਰੂਨ ਪਾ ਲਓ, ਕੁਛ ਪਾ ਲਓ, ਤਾਂ ਕੋ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿਣਾ
2: ਜਾਨੀ ਤੁਮ ਕਿਸੇ ਔਰ ਕੋ ਲੈ ਲਓ, ਚਿੱਟੇ ਮਤਲਬ ਸਫੇਦ ਸ਼ੂਜ਼ ਹਮ ਡਾਲੇਂਗੇ ਹੀ
1: ਅਤੇ ਲਾ ਲਓ ਹਿਸਾਬ।

क्या बात है, एडा खूबसूरत गीत की भुल जाता कि गीत जिहड़े ने छोटे लाने होंदे ने इस प्रोग्राम दे विच, क्योंकि गीत बहुत प्यारा। सो बहुत सारी गल्लां असीं कीतियां राजकुमार साहब दियां, ते कुछ ऐसियां गल्लां ने जो बंदा सोचता कि है अगर इदा ना होंदा तो होर की होना सी। जिवें कि बॉलीवुड एक होर एक आइकॉनिक मूवी जिहड़ी है मेरा नाम जोकर, उहदे विच भी कहा जाता कि राजकुमार नूं जिहड़ा है राजकपूर साहब ने अप्रोच किया सी, पर उन्होंने मना कर दिता। ते चलो, पर सोचो अगर वह भी ये होंगे तो किन्ने वधिया लगने सीगे। खैर, एक जिहड़ी मूवी सी हीर रांझा, जिहदे बारे मैं स्टार्टिंग दे विच जिक्र किया सीगा। हीर रांझा मूवी अगर शायद लोगों नहीं पता, मूवी जिहड़ी है 1970 दे विच आती है। एंड इस मूवी की खास गल है कि इस मूवी दे विच डायलॉग नहीं है। जी हाँ, इस मूवी दे विच डायलॉग नहीं है। हर एक जिहड़ा डायलॉग है या कोई गलबात है वह एक काव्य रूप दे विच, यानी कि शायरी दे विच, यानी कि कविता दे विच, यानी कि एक ट्यून दे विच है वो कही जाती है, सुनी जाती है, समझाई जाती है। सो कहा जाता है कि उस वेले डायरेक्टर की पहली

जी बल्ले रेनबो तेज छावा छावा छावा नहीं शावा, शावा रेनबो जी समा चुके रात दे 8:24 जिंदगी जिंदाबाद जो सर प्रोग्राम तुम इंजॉय करो जिसका नाम है जी पब्लिक मंच एंड पब्लिक मंच के जनाब आप एक वधिया जी सोहनी जी डूंगी जी टेलीफोनिक कॉल जी एक इंटरव्यू जी कर चुके हैं हूँ इंतजार कर रहे हैं।

एक दोस्त दी दोबारा कॉल मिल चुकी है, उन्होंने दोबारा कॉल कर दें। हेलो हेलो सर, अपना रेडियो साइड पे कर लो प्लीज़।

0: सीना से
1: यूं मुलाकात होगी फिर क्या हो। अरे ये गाना बहुत अच्छा है, मैं लगाना चाहता हूँ ये गाना। नरगुड़ा छत्तीसगढ़ से महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मण देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी ट्विंकल, डिंपल मीनाक्षी, निशा तुलसी और दिशा गोस्वामी। चलिए ऐसा है, हम ना पहला गीत जो हम ढूंढ चुके हैं पानी दरंग, पहले वो सुनेंगे फिर आपका भी लगा ही लेंगे।

भाई देखो ऐसा है, मुझे नहीं पता है कि कोठे पे बैठ के अखियां मिलांदे कि नहीं मिलांदे, पर मुझे इतना पता है कि कोठे पे बैठ के ना ठंडी ठंडी हवा लेते लेते रेडियो जरूर सुन रहे होंगे मेरे दोस्त, है ना जी। जी हाँ दोस्तों, प्रोग्राम एंजॉय कर रहे हो जी, दिल चाहता है। मेरा नाम मोहित त्रिबल, प्रोग्राम आप जो एंजॉय कर रहे हो 101.7 FM वर्ल्ड ऑफ है। आपका नाम क्या है, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं, फटाफट हमें भेज दीजिए हमारे व्हाट्सएप पर 9855-1017। ओके तो आगे बढ़ते हैं। बहुत लोग मैसेज कर दिया है, अरे बाबू दिल चाहता है फिल्म बरसात व लता मंगेशकर बरसात, बरसात में हमसे मिले तुम, और फरमाइश भेजी है गाँव हांडीखेड़ा जिला सिरसा से राधे श्याम शर्मा, इंदिरा शर्मा। अगर हम नमस्कार जी, हार्दिक अभिनंदन, बेशुमार मोहब्बतें और दुआएं, और ये फरमाइश हमें भेजी है और ये मैसेज हमें भेजा है चंडीगढ़ सतीश नेचा और विमला नेचा जी ने, फरमाइश है आओ तुम्हें चांद पे ले जाए, इतना ईजी है क्या। अगले मस्ते सुप्रेम नमस्कार, हार्दिक अभिनंदन, गीत आप जो मेरे मीत ना होते, और फरमाइश भेजी है हमें गांव नाईवला जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से वेद मिड्ढा अलका मिड्ढा, तह दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अगले मस्ते प्रोग्राम दिल चाहता है प्यार पर सारे को प्यार भरे नमस्कार, मूवी भरोसा गीत वो दिल कहाँ से लाऊं, गाँव नथाणा पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर जसी सीता और गीता, और किसी भी सॉन्ग में हमें शामिल करें, खुश रहो आबाद रहो, बहुत बहुत शुक्रिया। अगला मैसेज नमस्कार जी, ये मैसेज भेजा है हमें जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गुगनेजा, पूनम गुगनेजा, विशाल प्रिया, दिशानी और निमिता आहूजा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। अगला मैसेज यह है पटेल नगर मलोट से डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप आरजू और गुड्डू, और इन्होंने हमें भेजा है मूवी नीलकमल का तुझको पुकारे मेरा प्यार, ये गाना मैं प्ले कर चुका हूँ 7 बजे के प्रोग्राम में, बहुत बहुत शुक्रिया फिर भी इस गाने की फरमाइश करने के लिए। अगला मैसेज आया है फिल्म जब जब फूल के लिए, नाना करते प्यार तुम इसे कर बैठे, करना था इकरार तुम इसे प्यार, हाँ तो कर बैठे कर बैठे कर बैठे, ठहर से गाओ। अच्छा मुझे लगा अंताक्षरी चल रही है। ये मैसेज भेजा है रजाक मोहम्मद, समीम बेगम और इमरान खान, इरफान खान, लिखा है शुक्रिया जी।

0: एक अजनबी।
1: जी हाँ दोस्तों, अजनबी नहीं, मैं हूँ आपका अपना मोहित रुबल। आगे बढ़ते हैं जनाब। आगे हमें मैसेज मिला है फिल्म गंगा जमुना सरस्वती से। गील के बोल, चुड़िया खनके की, खनकने वाले आ गए, गोविंदपुरा सीकर, राजस्थान से दाता सिंह शेखावत, संगीता कंवर, तुषार सिंह और रिंकी शेखावत। थैंक यू जी। अगला मैसेज, आदरणीय प्रसारक जी, दुआओं में हमेशा याद रखना, फिल्म मेरा गांव मेरा देश, गीत कुछ कहता है ये सावन, अनारकली बाजार, जगराओ पंजाब से, सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, भाव्या गाव्या मल्होत्रा, भाई सुच्चा सिंह पाठक, विनोद पुरी, खुश रहो, खुशियां बांटो जी। बहुत बहुत शुक्रिया, आपको भी खुशियाँ मुबारक। अगला मैसेज, दिल चाहता है गाँव फ्रांसिस, जिला हिसार से राजकुमार जुड्डी, प्रमोद कुमार, पुष्पेंद्र कुमार जुड्डी, कोई भी गीत। अगला मैसेज, फिल्म तकदीर गीत, आइए बहार को हम बांट ले, जिंदगी के प्यार को हम बांट ले, भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिंपा, कपिल छिंपा, ईशान छिंपा, पूजा परिहार, मैसेज जरूर शामिल करें, इस बात के लिए आप सभी निश्चित हो जाएं, मैसेज जरूर पढ़ा जाता है। नरेश कुमार, पोलतेपुरा, पोल परिवार, विलेज संगवाल, जलंधर, फिल्म ब्लैकमेल दा गीत, पल पल दिल के पास तुम रहते हो। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। अगला मैसेज, सब प्रेम नमस्कार, फिल्म राज बोल आपके प्यार में हम सवरने लगे, पसंद करता दत्तरंगी, भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरामणि वर्मा और पासमणि वर्मा।

पुष्पेंद्र मणि वर्मा, नौखेलाल वर्मा। अगला मैसेज हमारे पास पहुंचा है, बहुत लंबा मैसेज कर रहा है। प्रेम पूर्वक नमस्कार, ग्राम पंचायत कालीगांव जाफराबाद से श्री सुधाकर राजी यादव, डॉक्टर प्रशांत राजी यादव कुमार, संचित वायाल कुमार, प्रथमेश देशमुख कुमार, सर्वत देशमुख कुमारी, प्रणाली देशमुख कुमारी, सानवी देशमुख कुमारी, कल्पना देशमुख, और फरमाइश की है इन्होंने देशमुख और वायाल और समस्त राजी यादव परिवार। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। अगला मैसेज आया है, आदरणीय जी किसी भी गीत में शामिल करें, शुक्रिया जी। मजनू का टिल्ला से कमल बलूजा, मधु बलूजा, सागर बलूजा, उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक, माही मलिक। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। अगला मैसेज, गांव खमंडिया सूरतगढ़, जगदीश ढुकिया, प्रमीला ढुकिया, ज्योति शिवम ढुकिया, सरिता सचिन, अमन्ना तमन्ना, साइना विष्णु ढुकिया, धोती ईवा धरनिया, नमस्कार जी। फिल्म कन्यादान, बोल लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में आवाज। फिल्म का नाम कन्यादान है ये, लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के।

जी दोस्तों, खत नहीं, हमें लोग लिख रहे हैं व्हाट्सएप पर प्यारे प्यारे मैसेजेस, जिनको मैं प्रोग्राम में ले रहा हूं और उनकी फरमाइशें जो हैं मैं पूरी करने की कोशिश कर रहा हूं। आइए अब आगे बढ़ते हैं और आगे पढ़ते हैं बहुत सारे दोस्तों के मैसेजेस। अगला मैसेज आया है करणवीर हाउस पुचो कैंचिया बठिंडा पंजाब से। नमस्कार प्रेम सिंह जोड़ा, मजीत को जोड़ा, करणवीर, करण, दपिंदर, वरिंदर, कुलदीप, सिमू, एकम, दमन, अभिजोत, और लिखा है किसी भी गीत में शामिल करें। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। आगे हमें मैसेज आया है और लिखा है जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिकैस्ट्रो, रोजी डिकैस्ट्रो, पर्ल डिकैस्ट्रो, विलिस डिकैस्ट्रो। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। और अगला मैसेज आया है सुखवीर सिंह, कोमलप्रीत कौर, रोशनदीप सिंह, पिंज छाजली, जिला संगरूर, एनी सॉन्ग। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, आपका एनी सॉन्ग मुबारक। दिल चाहता है कार्य

पेश करता को प्यार भरा नमस्कार। फिल्म नीलकमल, आवाज मोहम्मद रफी, गीत के बोल बाबुल की दुआएं लेती जा। सादुल शहर राजस्थान से, राजकुमार रिवार्ड, चंद्रकला रिवार्ड। ये जो आपने फरमाइश की है कि बाबू की दुआएं लेती जा, आजकल की जो लड़की है शी बिकम बैडी और वो ऑर्डर कर लेगी ऑनलाइन से दुआएं भी, आजकल तो क्या ही चल रहा है। ओके सो अगला मैसेज आया है पिंड खीरावली जिला फाजिलका दीपक के श्रोता सुभाष गुदारा, बिमला गुदारा, इंदु पार्वती, हिमांशु गुदारा, सत श्रीकाल जी। प्रोग्राम दिल चाहता है लाइव सुन रहे हैं, सारे काम छड़ के सुन रहे हैं, बड़ा मजा आ रहा है। ओके अगला मैसेज आया जी कृष्णा कुमार दिल्ली तो सुखविंदर सिंह जोड़ा, फिल्म कभी कभी, गायक किशोर, लता मंगेशकर, तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती। अरे बाबू, अगला मैसेज आदरणीय प्रसारक जी नमस्कार, आप हमारी फरमाइश किसी भी गीत में शामिल करें, आपका तहे दिल से शुक्रिया। ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साहब राही, महराज हाँ, आज़ाद नगर लक्ष्य हरिद्वार से। ठीक है जी, अगला मैसेज आया है हमारे पास कस्बा बराड़ जिला अम्बाला से, रवि कुमार राहुल, रंजोत को, रंजीत को, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका मन्नत, गुरकीरत राहुल, गुरशब सिंह राहुल, फिल्म आशा और आवाज़ मोहम्मद रफ़ी, वो जाने हम सड़क के लोगों से महलों वाले क्यों जलते हैं। अगला मैसेज लिखा है थैंक यू सो मच, अरे अरे अगर मैं, सत श्रीकाल सारे पंजाबियों ने, फिल्म रोकी का गीत सुना दियो जी, क्या यही प्यार है, काला कंबोज, रजनी बाला कंबोज, सीरत कंबोज, जपजी कंबोज, से गुरफतेह सिंह कंबोज, पिंड मोण के हठार, जिला फिरोजपुर। ठीक है जी, आपां ना जे गाना लगा देते हैं, ठीक है जी, गाना आपां लगा देते हैं। रोकी फिल्म का गाना कौन सा है, क्या यही प्यार है। देखो ऐसा है, वैसे तो यू मस्ट नो है ना वेदर इट्स लव और नॉट, बाकी ठीक है अगर नहीं भी समझ आता है कभी कभी तो क्या कर सकते हैं। ये गाना मिल क्यों नहीं रहा मुझे, आ देखे जरा क्या यही प्यार है, मिल गया।

0: जी हाँ दोस्तों, प्रोग्राम में जो गाना लोगों ने पूछा कि क्या यही प्यार है, हाँ मैं बता रहा हूँ यही प्यार है। इतने सारे लोग जो हमें मैसेज भेजते हैं, इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं। कम किया कीजिए, एक दो दिन छोड़ के किया कीजिए, रोज़ नहीं करते इतने मैसेज, ठीक है।
1: ओके जी, प्रोग्राम दे विच अगला मैसेज साडे कोल पहुंचे, लिखा है गाने के बोल मस्ती भरा है समा, फिल्म परवरिश आवाज मन्ना डे और लता मंगेशकर पुरानी फिल्म परवरिश, मिर्जापुर कुरुक्षेत्र से यशपाल धीमान, श्रीमती कृष्णा धीमान, राहुल धीमान, कोमल धीमान, शुभम धीमान और प्रियंका धीमान, आंचल कुंज परवीन धीमान, चिराग रजत, राजेश धीमान सर जी, प्यार भरे नमस्कार, सत श्रीकाल। दिल चाहता है प्रोग्राम एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है, इसकी हमें बेसब्री से इंतजार रहता है और जब आप इसे पेश करते हो तो बड़ा आनंद आता है। एक सुबह वाला दिल अपना पंजाबी, वेरी गुड मॉर्निंग प्रोग्राम, बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच आप सभी का प्रोग्राम में हमें इतनी अच्छी बातें बोलने का। लिखा है बाबुल की दुआएं लेते जा फिल्म नीलकमल, सारे एक ही गाना सुनना चाहते हैं क्या? सुभाष चंद्र बस गिदड़ बहा से। अगले मैसेज सत श्रीकाल, सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश, तो यशमत यशु और सोम्या सिंह और अविरल सिंह, लिखा है कोई भी गीत जड़ा है सुनाता जावे। ठीक है जी, कोई भी गीत ला देंगे अपना। अगला मैसेज सुप्रेम नमस्कार, हार्दिक अभिनंदन, किसी भी गीत में शामिल करे गांव खोखरा वाली, विनोद बरासा, विशाल बरासा, विकास बरासा, रोशनी बरासा, शगुन बरासा। ओके जी, जरा सा जरा सा। अगला मैसेज है आदरणीय प्रसारक महोदय जी, प्यार भरे नमस्कार, फिल्म आदमी और इंसान, स्वर ये और नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से, पीएस नहावकर, निर्मला नहावकर, विशाल नहावकर, मलकपुर से नारायण इंगले, सोपान ताइडे और आशीष मुहेरकर। ओके जी, अगला मैसेज और आया है एफएम रेनबो, दिल चाहता है पेश कर रहे हरीश सर को। हरीश नहीं हूँ मैं हूँ मोहित, ठीक है। भाई को फौजी लिखा है, हम फौजी भाइयों की तरफ से राम राम, अरे अरे अरे जय श्री राम जी। राजेश, नरेंद्र, प्रमोद, कुलदीप, प्रवीण, अरुणाचल प्रदेश से, हम सब की फरमाइश है यारी जट दी मूवी का कोई गाना ला दो। ठीक है जनाब, यारी जट दी हुणे हुणे आपां आ गया जी, गाना लिखा है गुड़ नालो इसक मिठा। ठीक है जी, इंजॉय करो सारे मेरे फौजी वीरो, बहुत बहुत शुक्रिया एंड जय हिंद।

जी दोस्तों एंजॉय कर रहे हैं प्रोग्राम दिल चाहता है और दिल चाहता है में हम आगे बढ़ चुके हैं। आगे मैसेज आया है, किसी भी फरमाइश में शामिल करें, अनुग्रहित करें। सूरत के राजस्थान से भूपेंद्र मिशन, परमजोत मिशन और बेबी जानविका, थैंक यू जी। अगला मैसेज आया है, पेंड बनवाला, हनवंता, फाजिल का, विनोद, मायल, सीमा, लक्षिता, यशिका, माता विद्या।

जी दोस्तों, एंजॉय कर रहे प्रोग्राम दिल चाहता है और दिल चाहता है में हम आगे बढ़ चुके हैं। आगे मैसेज आया है, किसी भी फरमाइश में शामिल करें, अनुग्रहित करें। सूरत के राजस्थान से भूपेंद्र, मिशन परमजोत मिशन और बेबी जानविका, थैंक यू जी। अगला मैसेज आया है पेंड बनवाला, हनवंता, फाजिलका, विनोद, मायल, सीमा, लक्षिता, यशिका, माता विद्या देवी, सारा मायल परिवार, कोई भी गीत, थैंक यू सो मच जी। अगला मैसेज आया, नमस्कार जी, फिल्म हम आपके हैं कौन गीत पहला पहला प्यार गीत, एसपी बाला सुब्रमण्यम, फरमाइश करता गांव कलाना राजस्थान से, विक्रम कड़वासरा, सचिन कड़वासरा, सतीश कड़वासरा, योगेश कड़वासरा और युद्धव कड़वासरा, ठीक है जी, थैंक यू सो मच। और फिल्म का नाम क्या था, हम आपके हैं कौन, हम आपके, अरे यार टाइप ही नहीं हो रहा, ओके जी, हम आपके हैं कौन, ये तो नहीं मिला मेरे को, चलो मिल गया, पहला पहला प्यारी है, थैंक यू जी। अगला मैसेज आया पदमपुर जिला श्री गंगानगर राजस्थान से, मेहर रोड़ा, ममता रोड़ा, कीर्ति रोड़ा, भूमिका रोड़ा और मूवी नागिन, तेरा इश्क मुझ पे हुआ ही असर। अगला मैसेज, फिल्म सावन को आने दो, गीत टाइटल सॉन्ग, गांव कलमंडी खुर्द जिला झालावाड़ राजस्थान से, अनूप सिंह नथावत और समस्त परिवार, ठीक है जी, थैंक यू सो मच। अगला मैसेज है एनी सॉन्ग पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से, अनिल मोहन, उषा मोहन, टीलू नायक, मधु नायक, धन्यवाद। अगला मैसेज, प्रेम प्रोग्राम दिल चाहता है अमरगढ़ जिला श्री गंगानगर तो, कुलवंत मान, लखविंदर कौर मान, खुशप्रीत कौर मान, गुरनूर मान, कुलविंदर कौर, हरविंदर मान, कोई भी फिल्मी गीत प्रोग्राम लाइव सुन रहे हैं जी, बहुत बढ़िया लग रहा है, थैंक यू ये। आदरणीय जी आदाब, फरमाइश करता रघुवी नगर दिल्ली से, दिलावर खान, हसीना बानो, एलिया नायाब और लड्डू, कृपा फिल्म साथी ये मधुर गीत सुनाने का कष्ट करें, मेरा प्यार भी तू और मेरा मेरी बहार भी तू, ओके थैंक यू। अगला मैसेज, चौटाला हरियाणा से, दारा पंडित, संजय शर्मा, प्रियंका शर्मा, गाने के बोल, नजराना भेजो, किसी भेजा किसी ने प्यार का आवाज़, किशोर दा, फिल्म देश परदेश, ओके जी। अगला मैसेज, नमस्कार, वडिंगखेड़ा पंजाब तो, मिंटू टॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा, कोई भी गीत सुना दियो जी, ओके जी, लिखा प्लीज़। आदरणीय मेज़बान जी नमस्कार जी, कोई भी गीत सुना दीजिए, थैंक्स जी। आदर्श जी आदर्श नगर मलोट पंजाब से, राम शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैडी शर्मा, सौरभ शर्मा, साइना शर्मा, निवान शर्मा, सत श्री अकाल, सांगरी जिला जट शहर, अल्ताफ हुजरे, सैफुल्ला और सबाहत, किर्त हुजरे, रेहान शेख, अरे क्या बात है, थैंक यू जी। अगला मैसेज, फिल्म सरगम स्वर, मोहम्मद रफ़ी, ऋषि कपूर, बो राम जी की निकली सवारी और कोटवा नारायणपुर बाबा पुट्टी बलिया से, ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय, दुबैया नवाद दिला गाजीपुर से, प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय, प्राण चेल राय, आइए एंजॉय करते हैं ये गाना जो हमारे दोस्त ने भेजा है।

FM Rainbow channel. Very, very nice program of Akashvani. I love Akashvani station. Akashvani program, my favorite song line, Teri Chunariya from Hello Brother. Aray, bahut arse ke baad ye farmaish jo hai hamare paas pahunchi hai. Aray, gaana kyun nahi mil raha? Hello Brother. Okay, let me find once again. Nahi aa raha gaana. Teri Chunariya Dil le gayi. ओके मिला मुझे गाना कि नहीं मिला तेरी चुनरिया. अरे गाना नहीं मिला रे. नहीं गाना ये मैं भी सुनना चाहता था. खैर कोई गल नहीं जनाब. सम अदर टाइम डेडिकेटेड स्पेशली यू एंड ऑल आरजेस ऑल स्टाफ मेंबर्स ऑफ आकाशवाणी परिवार. माय फ्रेंड्स आर मीनल रमेश अमल बिमल रखिविल नारायण शिवा दुर्गेश विक्रम स्वरजीत भाईकोन अविनाश अंकित महाराज प्रेमजीत हारमोनी देवशीष अंजलि ज्योंता हितेंद्र दास असम से. ओके जी थैंक यू जी. गीत कोई भी सुनीत कुमार सोपती नीतू सोपती साहिल सोपती नेहा ऋतिक राहुल मेगानंद सारा सोपती परिवार शाहकोट जिला जलंधर. ठीक है जी थैंक यू सो मच. अगला मैसेज. नमस्कार जी प्लीज प्ले सॉन्ग जिसका मुझे था इंतजार. ये लगा देते हैं गाना क्योंकि काफी देर से गाना नहीं लगा है और मुझे इंतजार होने लगा है. जिसका मुझे था इंतजार. अरे ऐसा है अगर भाई फिल्म लिखी है इन्होंने डॉन. अगर डॉन का नहीं है तो मैं कोई भी गाना लगा दूंगा. आ रहा हूँ पलट के ये जरा दिल थाम दो. अब कोई भी लगेगा ठीक है. अरे दीवानों मुझे पहचानो. अब ये एंजॉय करो. यो

ये जो लाइन है कि यारों का मैं वो यार हूं, वो मेरे लिए लिखी गई थी। ओके अगला प्रोग्राम, सॉरी अगला मैसेज जो आया है, अपने पसंद का कोई भी गीत में शामिल करें। गोल्डन रेडियो श्रोता संघ, राज पैलेस मऊनाथ भजन उत्तर प्रदेश से, राजेश कुमार वर्मा, पृथ्वी वर्मा, कार्तिक आर्य वर्मा, शिव मंदिर हकीकतपुरा मऊ से, मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी स्वर्णकार, आर्यन कृष्णा और पीहू स्वर्णकार, आपका धन्यवाद, आप सभी का धन्यवाद जी। नमस्कार जी, सर मैं सुषमा धालीवाल जंदर से, सर चाहत

मूवी का सॉन्ग सुना दीजिए। दर्द जब हद से गुजर जाए तो गा लेते हैं, मिंटू चंदेल साहब का मैसेज आया है, वीपीए कोटरे थान सिंह चलंदर, मिंटू चंदेल जी पसंद तुहाडी गीत हमारा, थैंक यू जी मिंटू जी। अगले मसीह कोई भी गीत राम सिंहपुर जिला श्री गंगानगर राजस्थान से, अशोक बब्बर, पवन राजेश, अजय, राहुल व मनु बब्बर। सुप्रेम नमस्ते, किस गीत में शामिल करे बाबू, नजदीक बस स्टैंड बुर्ज हनुमानगढ़ फाजिलका से, रमन वर्मा, अमर वर्मा, दिव्यांश, डॉक्टर मदन लाल वर्मा रे। अगले मसीह वीर जी नमस्कार, अरे यार बड़ा लंबा मैसेज, वीर जी नमस्कार, फिल्म हम एक दूसरे से करते हैं प्यार, परीक्षित, रेहान, एकता, गुड्डू, अनीता, विकास कश्यप, बॉबी राजपूत, कस्तूरबा, निकंद्र, केंट, FM रेनबो, नरजी का तड़का, दिल से दिल तक। अरे वाह वाह वाह वाह। अगला मैसेज आया है हमारे पास, नमस्कार आरजे जी, आपको कोई भी गीत, धनौरी तेलीवाला से, निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया, आयान बाबू, आपका अति कृपा धन्यवाद होंगे। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। अगला मैसेज है हमारे पास, गांव खारिया ढाणी जिला सिरसा हरियाणा से, सतवीर सिंह बिचारनिया, देवेंद्र, राजपाल, अभिषेक, योगेश, पूजा, आरजू, नव्या बिचारनिया, फिल्म आज का अर्जुन गीत, गोरी है कलाई तू ला दे मुझे, हरी हरी चूड़िया अपना बना ले मुझे, वालमा हो, हा। आवाज शबीर कुमार, लता मंगेशकर। ठीक है जी, अगला मैसेज आया है हमारे पास, लिखा है त्रिदेव मूवी द सॉन्ग मैं तेरी मोहब्बत में, त्रिदेव, ओके जी, त्रिदेव, TRIDEV, मैं तेरी मोहब्बत में, मोहम्मद अजीज और सादना सरगम। ये रही फरमाइश, फरमाइश पे जी हमें डॉक्टर आशु गुप्ता जी ने और तेजस भाई ने।

बरसे हैं और 6 के बाद रेगुलर बरसेंगे। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम दिल चाहता है में। हमारे पास मैसेज है, नमस्कार जी, फिल्म कालीचरण गायिका लता मंगेशकर गीत जा रे जा हर जाए, जा रे जाओ हर जाए। अच्छा, ये तो हमारा मतलब है, अच्छा गाना है ये, है ना, कालीचरण। ओके कालीचरण, ओके कालीचरण। जा रे जा यो हर जाए, ये गाना सुनेंगे। सुनाने के लिए हमें भेजा है मोहाली पंजाब से बबन मल्होत्रा, ओम प्रकाश मल्होत्रा, धन्यवाद। होस्ट जी नमस्कार, प्रोग्राम लाइव सुन रहे हैं, प्लीज किसी भी गीत में हमें शामिल कीजिए, शुक्रिया। पेशक मुंबई शहर के छोटी बलिया तू, अहमद बाई फूल वाले, सदफ आरजू, जूही इकबाल, आमना नसरीन, आसमा परी और इमरान अहमद फूल वाले, शामिल कीजिए, शुक्रिया जी। बहुत बहुत शुक्रिया जी हमें मैसेज भेजने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर मैसेज आया, पिंड चंजेड़ी, तहसील खरड़, जिला SAS नगर, तो लियाकत अली, निशा शाहीन, यासमीन रहमान वाली वालों, सारी आकाशवाणी परिवार को प्यार में सत श्रीकाल। सानू तुसी कोई भी गीत सुना दियो, धन्यवाद जी। अगर मैसेज सत श्रीकाल दिल चाहता है विच हरीश जी, अरे तुसी मैनू हरीश जी दे नाल मतलब धोखा खा रहे हो, हरीश भाजी दी ड्यूटी नहीं है, पर हरीश भाई नूं मैसेज भेज दंगा मैं। माय नेम इज MOHIT मोहित। बलविंदर सरा, गुणतास, रसनदीप, मनिंदर सरा, पिंड मोरजंड, सिखा, हनुमानगढ़, फिल्म नूरी की दे बोल, चुरी चुरी कोई आए। ठीक है, फिलहाल मैं प्ले करने जा रहा हूँ कालीचरण का गीत, एंड उस तो बाद मैं 100 दे 100 मैसेज रीड कर चुके हैं, एंड अगर कोई होर मैसेज कर सकता है करके दिखाओ, मैं रीड करांगा, गाने फरमाइश पूरी करांगा। व्हाट्सएप के नंबर सानू मैसेज भेज सकते हो 98 55 10 10 27।

लिखा है साया भी जब साथ छोड़ जाए तो ऐसी है तन्हाई। ते ठीक है जी, थैंक यू सो मच। मिंटू चंदेल जी हंस के मैसेज ही करके सानू भेज रहे ने। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। सो लो जी, प्रोग्राम दा आखरी की तुहाडे सारेयां दे रेडियो सेट ते। थैंक यू सो मच फॉर सेंडिंग ब्यूटीफुल मैसेज टू मेक दिस प्रोग्राम मोर ब्यूटीफुल। थैंक यू सो मच। साइनिंग ऑफ, दिस इज मोहित रूबल फ्रॉम दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम। सी यू नेक्स्ट प्रोग्राम, दैट इज ऑन 10 PM, शामी गजल।

हाँ ये खता हुई थी कि हम उठ के चल दिए। हाँ ये खता हुई थी कि हम उठ के चल दिए। तुमने भी तो पलट के पुकारा नहीं हमें। जी दोस्तों, इंजॉय कर रहे हो प्रोग्राम शामी गजल अपने दोस्त मोहित रूपल दे नाल। हुण असीं अगे वधदे हां ते अगे एक बड़ी ही खूबसूरत गज़ल तुहाडा ते मेरा इंतज़ार कर रही है। आओ इसका आनंद माणदे हां।

हमको खबर है शहर में उसके संगे मलामत मिलते हैं। हमको खबर है शहर में उसके संगे मलामत मिलते हैं, फिर भी उसके शहर में जाना कितना अच्छा लगता है। जो शायरी किसी गज़ल दी मैं रीड करने की कोशिश की थी है ताबीश मेहंदी साहब दी। आओ प्रोग्राम में अगे बढ़ते हैं, एक बड़ी ही खूबसूरत गज़ल इंजॉय करते हैं।

ये जिंदगी है अपनी, कभी खुश कभी उदास, इस कश्मकश से मुझको खुदाया रिहाई दे। एफएम रेनबो ते तुसी इंजॉय करे प्रोग्राम एक प्यार का नगमा है।

जी दोस्तों, एंजॉय कर सी प्रोग्राम एक प्यार का नगमा है। फिलहाल राधे दास रात दे 11 बजे जा रहे हैं। सो मैनू इत्थे तुसीं दो इजाज़त, दोबारा फिर मिलेंगे किसी होर प्रोग्राम दे विच। बाय, टेक केयर। FM बैंड 102.7 MHz से सी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। इस वेले रात दे पूरे 11 बज चुके ने ते साडी अज दे सभा दे सारे ही प्रोग्राम हुण इत्थे खत्म हुंदे ने। दोबारा फिर मिलेंगे कल सवेरे 5:55 ते नवे दोस्त नवे प्रोग्राम दे नाल। तद तक लई सानू दो इजाज़त। शबा खैर, जय हिंद।